FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 14 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:59 होने ही वाले हैं। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ

एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर

0: साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1800-3157008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण में हमारी सभा के शेष रहे प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे चिंतन भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन पाएंगे 6:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे कार्यक्रम गीत बाहर में समय रहेगा 6:45। 7:20 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार होंगे कविता कृष्णमूर्ति। नमस्कार चूरू। जी हाँ श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:30 पर।

आठ बजे साथियों आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। 8:30 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। 9 बजे समय रहेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार का, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। देशगान आप सुन पाएंगे 9:10 पर।

9:15 पर आप सुनेंगे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में कहानी चंदा। कहानीकार होंगे राजेंद्र सिंह शेखावत। 9:30 पर आप सुनेंगे बच्चों के लिए पसंदीदा कार्यक्रम बाल विहार। विविध भारती के कार्यक्रम के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र। समय रहेगा 10:00। कार्यक्रम विवरण सुनेंगे 11:00। 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं की फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू। सूत्रधार होंगे कुंज बिहारी बिरमी वाला। तकनीकी सहयोग गुलझारी लाल मीणा का और प्रस्तुति विनोद कुमार हल्किया की। संयोजक होंगे कमलेश मीणा।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुर बहार आप सुनेंगे 12 बजे। माटी के स्वर कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कलाकार श्रीमती छोटू देवी और पार्टी की गाई हुई लोक रचनाएं। समय रहेगा 12:30। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 1 बजे, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। महिला जगत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 1:05 पर। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले, पहले मिड डे न्यूज और उसके बाद 2:15 पर दोपहर समाचार।

पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम तराने नए पुराने शाम 5 बजे। युववाणी कार्यक्रम के साथ ही हमारी दूसरी सभा का आगाज होगा। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। खेती और गृहस्थी आप सुन पाएंगे 7 बजे। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9। 9:15 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 10 बजे समय रहेगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का। इसका रिले आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे पहले हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए चिंतन।

साथियों, मनुष्य का जीवन एक कोरे कागज की तरह है। इस कागज पर ज्ञान की स्याही से जो रंग भरे जाते हैं वही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और इस रंग को भरने का सबसे सशक्त माध्यम है शिक्षा।

शिक्षा केवल किताबों को पढ़ लेना नहीं है, यह केवल कोई डिग्री हासिल करना या आजीविका कमाना भी नहीं है। साथियों, शिक्षा तो आत्मबोध का मार्ग है। यह हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर चेतना का दीपक जलाती है।

आज के इस आधुनिक दौर में हम अक्सर शिक्षा का मूल्यांकन केवल अंकों, श्रेणियों और प्रतियोगिताओं से करने लगे हैं, पर क्या यही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? जरा चिंतन कीजिए। वास्तविक शिक्षा वही है जो हमें एक संवेदनशील इंसान बनाए, जो हमारे भीतर करुणा, दया और विवेक को जागृत करे।

शिक्षा हमें भेड़ चाल से हटकर सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। साथ ही हम बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन का बल बढ़े और बुद्धि का विकास हो। साथ ही हम बात करें, शिक्षा केवल एक व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलती, यह पूरे समाज की कुरीतियों, अंधविश्वास और भेदभाव के बंधनों से मुक्त करती है। जब एक बच्चा शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियां जागरूक हो जाती हैं।

श्रोताओं, आज हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो नवीन तकनीक और विज्ञान को तो अपनाए लेकिन हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भी पीछे ना छोड़े। हमें ज्ञान के साथ साथ कौशल की भी आवश्यकता है, पर इन सब से ऊपर है संस्कार। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ते अर्थ

अर्थात विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाए, संकीर्ण सोच से मुक्ति, घृणा और ईर्ष्या से मुक्ति। साथियों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रज्ञा का विकास करना है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी अपना मानसिक संतुलन न खोए। यही शिक्षा हमें वैश्विक नागरिक बनाती है।

आइए आज इस चिंतन की घड़ी में हम सब एक साथ संकल्प लें, हम शिक्षा को केवल एक व्यवसाय या मजबूरी न बनने दें। हम अपने बच्चों को रटने की मशीन बनाने की बजाय सोचने और समझने की आज़ादी दें, उन्हें ज्ञान से प्रेम करना सिखाएं। क्योंकि जब देश का हर नागरिक शिक्षित और विचारशील होगा, तभी हम एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। कलम की ताकत दुनिया की हर भौतिक ताकत से बड़ी है, इस ताकत को पहचानिए। अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में आज आपको सुनवा रहे हैं रवि देव की आरती।

नरेंद्र चंचल और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना, और इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

जरा सी आहट होती है। जी हाँ श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में हकीकत फिल्म का गीत। गीतकार कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जो है फिल्म सरस्वती चंद्र से है। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ है और इंदिवर की शब्द रचना। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

हंसते जख्म। इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, कैफी आज़मी की शब्द रचना और मदन मोहन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे हंसते जख्म फिल्म का गीत। अब आपको सुनवा रहे हैं सफर फिल्म का गीत, आवाज है किशोर कुमार की। शब्द रचना इंदिवर आर, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवा रहे हैं राजकुमार फिल्म का गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने संगीत दिया है।
1: जान को जाते हुए देखा है वो देखो।

किशोर कुमार की आवाज में सुनिए प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम याराना, अनजान की शब्द रचना और राजेश रोशन का संगीत।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम कस्मे वादे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कस्मे वादे फिल्म का गीत। गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार आरडी बर्मन। और इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस गान। कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति, संगीत है सतीश भाटिया का, कड़ी है 406।

काक भुशुंड के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज गरुड़ कृतकृत्य हुए, बोले, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर मुझे परम सुख और शांति प्रदान की है। आपके इस उपकार के लिए मैं सदा सर्वदा आपका ऋणी रहूंगा। आप पूर्ण काम हैं, श्री राम के अनुरागी हैं। इस जगत में आप जैसा बड़भागी और कौन होगा? संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब का अस्तित्व परोपकार के लिए होता है। कवियों ने कहा है कि संत हृदय नवनीत के समान होता है, किंतु मैं कहता हूं कि उन्होंने कदाचित पूर्ण सत्य नहीं कहा, क्योंकि मक्खन तो अपने ही ताप से पिघल जाता है, जबकि संतों का हृदय तो दूसरों का दुख देखकर पिघलता है। पार्वती को काकभुशुंडी गरुड़ संवाद का ये प्रसंग सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, गरुड़ ने बार बार अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर काकभुशुंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया जिसे अपने कानों से सुनने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनते हैं, उनके सभी पाप धुल जाते हैं। धन्य है वो देश जहां गंगा प्रवाहमान है। धन्य है वो स्त्री जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। धन्य है वो राजा जो न्यायप्रिय होता है। और धन्य है वो द्विज जो अपने धर्म पर अडिग रहता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, कलाकार कविता कृष्णमूर्ति और संगीत सतीश भाटिया का था। कड़ी थी 406। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

कार्यक्रम नमस्कार चूरू सुनने वाले सभी श्रोताओं, स्वीकार करें चंद्र प्रकाश बेदी का स्नेहिल अभिवादन प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है 14 जून, यानी हर साल 14 जून को पूरी दुनिया में एक विशेष दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। जी हाँ, यह खास दिन नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने इंसानी खून के मुख्य ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी।

और साथियों, क्या आप जानते हैं इस साल यानी 2026 की ग्लोबल थीम क्या है? इस बार की थीम बहुत ही प्यारी है, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। यानी हम बात करें इंसानियत की एक बूंद रक्त दें और जीवन बचाएं। जी हाँ साथियों, साइंस ने आज कितनी तरक्की कर ली है, हम चांद और मंगल पर पहुंच गए हैं, लेकिन इंसान के खून का कोई दूसरा विकल्प आज तक वैज्ञानिक भी नहीं बना पाए। जब भी किसी को खून की जरूरत होती है तो वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान की रगों से ही आ सकता है। आपकी रगों में बहती इंसानियत की यही एक बूंद किसी की बुझती हुई सांसों को जिंदगी दे सकती है। तो चलिए आज इस खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जो हमें जिंदगी की कीमत से समझाता है।

दोस्तों, अक्सर लोग रक्तदान करने से कतराते हैं। कुछ को सुई से डर लगता है तो कुछ को लगता है कि खून देने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी। पर सच तो यह है कि हमारे शरीर में कुदरत ने एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है। आप जितना खून दान करते हैं, आपका शरीर कुछ ही दिनों में उतना नया और फ्रेश खून दोबारा बना लेता है। एक बार रक्त दान करके देखिए दोस्तों, जो सुकून किसी की जान बचाकर मिलता है वो दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत से भी नहीं मिल सकता। खून का रिश्ता सिर्फ परिवार से ही नहीं होता, जब अनजान को खून मिले तो उससे भी बड़ा कोई धर्म नहीं होता।

साथियों, हम तो सभी युवाओं और सेहतमंद दोस्तों से बस यही अपील करेंगे कि आज अपने नज़दीकी ब्लड बैंक या किसी भी ब्लड डोनेशन कैंप में जाएं, डॉक्टर से अपनी सेहत चेक कराएं और अगर आप फिट हैं तो बिना डरे रक्तदान करें। इस साल की थीम को सच करके दिखाएं, अपनी इंसानियत की एक बूंद से किसी का जीवन बचाएं। अगर आज आप ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं तो आप भी ध्यान रखें कि आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। स्वस्थ अगर आप हैं तो कोई दिक्कत किसी भी तरीके की आपको नहीं होती है। तो जो हम आज बात कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस की, तो श्रोताओं, कईयों के मन में ये भी विचार आते होंगे कि ब्लड डोनेट कौन कर सकता है। तो साथियों, बता देते हैं कुछ बहुत ही आसान और ज़रूरी बातें जो जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन रक्तदान कर सकता है। पहली शर्त है आपकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल के बीच होनी चाहिए, और दूसरी शर्त आपका वजन कम से कम 45 से 50 किलो या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी शर्त, आपके खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कम से कम 12.5 होना चाहिए, और ये डॉक्टर खुद चेक कर लेते हैं। आपको कोई बड़ी बीमारी जैसे एड्स, हेपेटाइटिस या कैंसर नहीं होना चाहिए। साथ ही पिछले 3-4 दिनों में आपने कोई भारी एंटीबायोटिक दवा न ली हो। तो भाइयों, आप समझ लीजिए कि इस तरह से आप अपने ब्लड डोनेट करके दूसरों का जीवन भी बचा सकते हैं।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक

0: सपना है और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
3: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू कार्यक्रम और मैं आज आपका साथी चंद्र प्रकाश बेदी। साथियों, आज मौसम में एक अजीब सा सुकून है ना? लेकिन क्या हमारे मन के अंदर भी ऐसा ही सुकून है? कई बार हम अपने ही ख्यालों में, जो ख्यालों की दुनिया है उसमें इतने खो जाते हैं कि हमारे सामने जो है हमारी असलियत, हमारी रियलिटी, उससे आंखें चुराने लगते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं बहुत ही गहरे लेकिन जरूरी विषय पर, वास्तविकता को स्वीकार करने में पीछे ना हटे। जी हाँ, सच कहूँ तो सच्चाई से भागना बहुत आसान है। काश ऐसा होता, काश मैंने वो किया होता। इन शब्दों के पीछे छुपना हमें पल भर की राहत तो देता है, लेकिन जिंदगी की असली उड़ान तब शुरू होती है जब हम आईने के सामने खड़े होकर अपनी सच्चाई को, अपनी परिस्थितियों को पूरी ईमानदारी से अपना लेते हैं। चाहे वो कोई टूटी हुई उम्मीद हो, करियर में मिला कोई फेलियर हो, या कोई ऐसा सच जिसे मानना दिल को तकलीफ दे रहा हो। याद रखिए, सच्चाई को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि यह तो एक नई और मजबूत शुरुआत की पहली सीढ़ी है। इसी गहरी सोच के साथ हम आपको बात करते हैं और सुनवाते हैं सदाबहार गीत, जो जिंदगी की इसी हकीकत और उसके अनसुलझे सवालों को बड़ी खूबसूरती से बयां करता है।

0: कभी तो हंसाए।
1: जी हाँ दोस्तों, लाइफ में रियलिटी चेक बहुत ज़रूरी है। अगर आज हमारे पास पैसे कम हैं तो मान लीजिए, अगर आज हम किसी चीज़ में कमज़ोर हैं तो उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप सच को मान लेते हैं तो आपका दिमाग बहानों की जगह समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। जी हाँ श्रोताओं, हम जो हैं इसी गहरी बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम अक्सर उस दुनिया में जीते हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन उस दुनिया से डरते हैं जो असल में है। हमें अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी आज की मुश्किल परिस्थितियों को स्वीकार करने से हम साथियों भागते हैं, पर सच तो है जब हम सच को स्वीकार नहीं करेंगे तब हम उसे बदल कैसे पाएंगे। वास्तविकता को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि लाइफ की सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए साथियों, आज इस सच्चाई से आंखें मिलाते हैं और बिना पीछे हटे आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना बेहद जरूरी है। साथियों, अपनी वास्तविकता से बिल्कुल मत डरिए, उसे गले लगाइए और कहिए, हाँ आज ये मेरी सच्चाई है, लेकिन कल मैं इसे अपनी मेहनत से बदल दूंगा। पीछे हटना कायरों का काम है और आप सब जो सिकंदर हैं साथियों, तो ये बात आप साथ दिमाग में रखिए हमेशा कि मंजिल आपके सामने है, आपको बस मेहनत करते रहना है। मुस्कुराते रहिए, सच का सामना करते रहिए, आप जिंदगी में आगे जरूर बढ़ेंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।

वेलकम बैक साथियों। साथियों, आज हम एक ऐसे बहुत ही ज़रूरी और फायदेमंद सरकारी योजना के बारे में बात करेंगे। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। यह योजना शहर में रहने वाले उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है जिन्हें काम की तलाश है। इस बेहतरीन योजना को अच्छे से समझने के लिए इसकी कुछ मुख्य बातों पर हम जरूर नज़र डालेंगे। इस योजना में क्या है, ये जो योजना है शहरों में रहने वाले गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को रोजगार देती है। जैसे गांवों में मनरेगा योजना काम करती है, वैसे ही यह शहर के लिए बनाई गई है। साथियों, क्या कुछ इसमें फ़ायदा है उसके बारे में बता देते हैं। हर पात्र परिवार को साल में कम से कम 100 से 125 दिन का गारंटीशुदा रोजगार मिलता है। काम मांगने के लिए 15 दिनों के अंदर सरकार आपको आपके घर के पास ही काम देती है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है। इसका लाभ कौन ले सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। आप उस राज्य के शहरी क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। आपकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होने चाहिए। आपके पास एक वैध जॉब कार्ड होना जरूरी है। और अब आपको बता दें किस तरह के काम इसमें दिए जाते हैं। पार्कों और सड़कों की साफ सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना और पर्यावरण को बचाना, जल संरक्षण और पुरानी बावड़ियों तालाबों को सुधारना, दीवारों पर सुंदर पेंटिंग और शहर को सजाने का काम। और इसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। आप अपने नज़दीकी ई मित्र पर या शहरी निकाय के दफ्तर जा सकते हैं। इसके लिए आपको जन आधार कार्ड और बैंक खाते की जानकारी की जरूरत होती है। पंजीयन बिल्कुल मुफ्त होता है और तुरंत जॉब कार्ड मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई जानने वाला शहर में रहता है, उसे काम की जरूरत है, तो आज ही इस योजना का लाभ उठाएं, आत्मनिर्भर बने और अपने शहर को सुंदर बनाने में अपना योगदान दीजिए। सुनते रहिए हमारा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी चूरू।

0: अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का रिले किया जाएगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: उससे शॉपिंग हो जाए
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंगहम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
5: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इको सिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो

परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि

0: सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने

0: 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा

0: Pakistan by 7 wickets in rain-affected first one-day international cricket at Dharamshala. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin their campaign against arch-rivals Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। वाचन स्वर हैं मनीष भारद्वाज के।
2: श्रोताओं नमस्कार। सत्य के प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये उस पुस्तक का नाम है, ये उस महान कथा का नाम है जिसने न केवल पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया, बल्कि इस महान आत्मकथा ने लोगों को जीवन जीना सिखाया, सत्य के साथ जीवन को जीने का तरीका बताया। हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ में से उद्धृत अंशों को निरंतर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के इस अंक में हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रपिता के साथ रोलेट एक्ट को लेकर क्या धर्म

श्रोताओं, हमारे बापू ने लिखा है, मित्रों ने सलाह दी कि माथेरान जाने से मेरा शरीर शीघ्र ही पुष्ट होगा, अतएव मैं माथेरान गया, किंतु वहां का पानी भारी था, इसलिए मेरे जैसे रोगी के लिए वहां रहना कठिन हो गया। पेचिश के कारण गुदा द्वार इतना नाजुक हो गया था कि साधारण स्पर्श भी मुझसे सहा नहीं जाता था और उसमें दरारें पड़ गई थीं, जिससे मल त्याग के समय बहुत कष्ट होता था। इस कारण मुझे कुछ भी खाते हुए डर लग रहा था। एक हफ्ते में माथेरान से वापस लौटा। मेरी तबीयत की हिफाजत का जिम्मा शंकर लाला बैंकर ने अपने हाथ में ले लिया था। उन्होंने डॉक्टर दलाल से सलाह लेने का आग्रह किया। डॉक्टर दलाल आए। उनकी तत्काल निर्णय करने की शक्ति ने मुझे मुग्ध कर दिया। वे बोले, जब तक आप दूध न लेंगे, मैं आपके शरीर को फिर से हष्टपुष्ट ना बना सकूंगा। उसे पुष्ट बनाने के लिए आपको दूध लेना चाहिए और लोहे तथा आर्सेनिक की पिचकारी लेनी चाहिए। यदि आप इतना करें तो आपके शरीर को पुनः पुष्ट करने की गारंटी मैं देता हूं। मैंने जवाब दिया, पिचकारी लगाइए, लेकिन मैं दूध नहीं लूंगा। डॉक्टर ने पूछा, दूध के संबंध में आपकी प्रतिज्ञा है क्या? यह जानकर कि गाय भैंस पर फूके की क्रिया की जाती है, मुझे दूध से नफरत हो गई है, और यह सदा से मैं मानता रहा हूं कि दूध मनुष्य का आहार नहीं है, इसलिए मैंने दूध छोड़ दिया है। यह सुनकर कस्तूरबा, जो खटिया के पास ही खड़ी थी, बोल उठी, तब तो आप बकरी का दूध ले सकते हैं। डॉक्टर बीच में बोले, आप बकरी का दूध लें तो मेरा काम बन जाए। सत्याग्रह की लड़ाई में मैं थोड़ा विनम्र हुआ, क्योंकि सत्याग्रह की लड़ाई के मोह ने मेरे अंदर जीने का लोभ पैदा कर दिया और मैंने प्रतिज्ञा के अक्षर से पालन को लेकर उसकी आत्मा का हनन किया। यद्यपि दूध की प्रतिज्ञा लेते समय मेरे सामने गाय भैंस ही थी, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूध मात्र की मानी जानी चाहिए, और जब तक मैं पशु के दूध मात्र को मनुष्य के आहार के रूप में निषिद्ध मानता हूँ, तब तक मुझे उसे लेने का अधिकार नहीं था। इस बात के जानते हुए भी मैं बकरी का दूध लेने को तैयार हो गया। सत्य के पुजारी ने सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जीने की इच्छा रखकर अपने सत्य को लांछित किया। मेरे इस कार्य का डंक अभी तक मिटा नहीं है और बकरी का दूध छोड़ने के विषय में मेरा चिंतन तो चल ही रहा है। बकरी का दूध पीते समय मैं रोज दुख का अनुभव कर

सकता हूँ, किंतु सेवा करने का महासूक्ष्म मोह जो मेरे पीछे पड़ा है मुझे छोड़ता नहीं। अहिंसा की दृष्टि से आहार के अपने प्रयोग मुझे प्रिय हैं, उससे मुझे आनंद प्राप्त होता है, वह मेरा विनोद है। परंतु बकरी का दूध मुझे आज इस दृष्टि से नहीं अखरता, वह अखरता है सत्य की दृष्टि से। मुझे ऐसा भास होता है कि मैं अहिंसा को जितना पहचान सका हूँ, सत्य को उससे अधिक पहचानता हूँ। मेरा अनुभव यह है कि अगर मैं सत्य को छोड़ दूँ तो अहिंसा की भारी गुत्थियाँ मैं कभी नहीं सुलझा सकूँगा। सत्य के पालन का अर्थ है लिए हुए व्रत की शरीर और आत्मा से रक्षा, शब्दार्थ और भावार्थ से पालन। मुझे हर दिन यह बात खटकती रहती है कि मैंने दूध के बारे में व्रत की आत्मा का भावार्थ से हनन किया है। यह जानते हुए भी मैं यह नहीं जान सका कि अपने व्रत के प्रति मेरा धर्म क्या है, अथवा कहिए कि मुझे उसे पालने की हिम्मत नहीं है। दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि शंका के मूल में श्रद्धा का अभाव रहता है। हे ईश्वर, तू मुझे श्रद्धा दे।

बकरी का दूध शुरू करने के कुछ दिन बाद डॉक्टर दलाल ने गुदा द्वार की दरारों का ऑपरेशन किया और वह बहुत सफल हुआ। बिछोना छोड़कर उठने की कुछ आशा बंद रही थी और अखबार वगैरह पढ़ने लगा ही था कि इतने में रोलेट कमेटी की रिपोर्ट मेरे हाथ में आई। उसकी सिफारिशें पढ़कर मैं चौंका। भाई उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर ने चाहा कि कोई निश्चित कदम उठाना चाहिए। फिर एक आध महीने मैं अहमदाबाद गया। वल्लभ भाई प्राय प्रतिदिन मुझे देखने आते थे। मैंने उनसे बात की और सुझाया कि इस विषय में हमें कुछ करना चाहिए। क्या किया जा सकता है? इसके उत्तर में मैंने कहा, यदि थोड़े लोग भी इस संबंध में प्रतिज्ञा करने के लिए तैयार हो जाएं और कमेटी की सिफारिश के अनुसार कानून बने तो हमें सत्याग्रह शुरू कर देना चाहिए। यदि मैं बिछोने पर तो अकेला भी इससे जूझता और यह आशा रखता कि दूसरे लोग बाद में आ मिलेंगे, किंतु अपनी लाचार स्थिति में अकेले जूझने की मुझमें बिल्कुल शक्ति नहीं है। इस बातचीत के परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे लोगों की एक छोटी सी सभा बुलाने का निश्चय हुआ जो मेरे संपर्क में ठीक ठीक आ चुके थे। मुझे तो यह स्पष्ट प्रतीत हुआ कि प्राप्त प्रमाणों के आधार पर रोलेट कमेटी ने जो कानून बनाने की सिफारिश की है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे यह भी इतना ही स्पष्ट प्रतीत हुआ कि स्वाभिमान की रक्षा करने वाली कोई भी जनता ऐसे कानून को स्वीकार नहीं कर सकती। वह सभा हुई, उसमें मुश्किल से कोई 20 लोगों को न्योता गया था। जहां तक मुझे याद है उसमें कुछ कम ही लोग परिचित थे जो उसमें शामिल हुए। प्रतिज्ञा पत्र तैयार हुआ और मुझे याद है कि जितने लोग हाजिर थे उन सब ने उस पर हस्ताक्षर किए। उस समय मैं कोई अखबार नहीं निकालता था, पर समय समय पर अखबारों में लिखा अवश्य करता था। उसी तरह लिखना शुरू किया और शंकरलाल बैंकर ने जोर शोर से आंदोलन चलाया। इस अवसर पर उनकी काम करने की शक्ति और संगठन करने की शक्ति का मुझे खूब अनुभव हुआ। कोई भी चलती हुई संस्था सत्याग्रह जैसे शस्त्र को स्वयं उठा ले, इसे मैंने असंभव माना था। इस कारण सत्याग्रह सभा की स्थापना हुई। उसके मुख्य सदस्यों के नाम बंबई में लिखे गए। इसका केंद्र बंबई में रखा गया। प्रतिज्ञा पत्रों पर खूब हस्ताक्षर होने लगे। खेड़ा की लड़ाई की तरह पत्रिकाएं निकाली और जगह जगह सभाएं हुई। मैं इस सभा का सभापति बना था। मैंने देखा कि शिक्षित समाज और मेरे बीच बहुत मेल नहीं बैठ सकता। सभा मेरे गुजराती भाषा के उपयोग के आग्रह ने और मेरे कुछ दूसरे तरीकों ने उन्हें परेशानी में डाल दिया। फिर भी बहुतों ने मेरी पद्धति को निभाने की उदारता दिखाई। यह मुझे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन मैंने शुरू में ही देख लिया कि यह सभा लंबे समय तक टिक नहीं सकेगी। इसके अलावा सत्य और अहिंसा पर मैं जोर देता था, लेकिन यह बात कुछ लोगों को अप्रिय मालूम हुई। लेकिन फिर भी शुरू के कुछ दिनों में यह नया काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार रोलेट एक्ट के दौरान उन्हें धर्म संकट महसूस हुआ। आगे की कड़ियों में हम फिर से इस महान पुस्तक में से कुछ उद्धृत अंशों की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, वाचन स्वर मनीष भारद्वाज के थे। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देश गान।

नमस्कार साथियों, आकाशवाणी पर आज हम आपका स्वागत करते हैं। और आज आपको बताया 14 जून है, आज पूरा विश्व रक्तदाता दिवस मना रहा है। दोस्तों, रक्तदान सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, यह किसी डूबती हुई जिंदगी को बचाने का एक खूबसूरत जरिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि रक्तदाता असल जिंदगी के सुपर हीरो होते हैं। हमारा जो आज हम बात कर रहे हैं इसी बारे में कि रक्तदान बेहद ज़रूरी हो जाता है। अक्सर हमारे बहुत से साथी ये सोचते हैं कि क्या वे खून दे सकते हैं, क्या वे इसके लिए फिट हैं। तो आज आपको बताते हैं कि रक्तदान के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं। आपकी उम्र 18 से 65 साल के बीच होनी चाहिए, वज़न 45 किलोग्राम या उससे ज़्यादा होना चाहिए। और हीमोग्लोबिन की बात करें तो आपके खून में हीमोग्लोबिन का स्तर कम से कम 12.5 होना चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो आपको कोई गंभीर बीमारी, सर्दी खांसी या बुखार नहीं होने चाहिए। साथ ही अगर आपने पहले रक्तदान किया है तो पुरुष 3 महीने बाद और महिलाएं 4 महीने बाद दोबारा खून दे सकती हैं।

जितना ज़रूरी यह जानना है कि खून कौन दे सकता है, उतना ही ज़रूरी यह जानना भी है कि किन्हें रक्तदान करने से बचना चाहिए। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताएं ब्लड डोनेट नहीं कर सकती। अगर आपने हाल ही में कोई बड़ा टैटू बनवाया है या कोई एंटीबायोटिक दवा ली है तो कुछ समय के लिए आप रुकें। साथ ही जिन लोगों को गंभीर बीमारियां हैं जैसे दिल की बीमारी, कैंसर, डायबिटीज जो यानी इंसुलिन पर हैं, या किडनी के मरीजों को रक्तदान नहीं करना चाहिए। साथ ही संक्रामक रोग के व्यक्ति जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी या सी से पीड़ित व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथियों, बहुत से लोग डरते हैं कि खून देने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उलट है। रक्तदान करने से ही आपके शरीर को भी बहुत फायदे हैं। क्या वो फायदे हैं, जरा उनसे

हो जाते हैं, उन फायदों के बारे में जानकारी लेते हैं। रक्तदान के बाद शरीर तेजी से नया और साफ खून बनाता है, साथ ही इससे शरीर में आयन की मात्रा सही रहती है, जो दिल के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही रक्तदान से पहले आपकी खून की जांच मुफ्त में हो जाती है। और इससे भी बड़ी बात साथियों को है ये कि किसी की जान बचाने की जो खुशी मिलती है वो अनमोल है। ये जो मानसिक संतुष्टि है वो बहुत ही शानदार रहती है। तो डर को पीछे छोड़िए, आपके शरीर का कुछ मिलीलीटर खून किसी माँ का लाल, किसी का भाई या किसी का सुहाग बचा सकता है। याद रखिए, रक्तदान महादान है। आज इस विश्व रक्तदाता दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम नियमित रूप से रक्तदान करेंगे।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026 आज और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट। आज 5 संभागों में आंधी और बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय शिक्षण संस्थानों को वैश्विक निवेशकों और बाजार से जोड़ने वाले शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम भारत इनोवेट्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने भी श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीस में रह रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के साथ प्रवासियों के संबंध मजबूत बने हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। उन्होंने कहा कि टिकाऊ कृषि नवाचार और अनुसंधान से ही भारत विकसित बनेगा। श्री बिरला ने ये बात कल नई दिल्ली में कृषि विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में कही। ये सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। श्री बिरला ने कहा कि कृषि के पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक से जोड़कर भारत दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि देश की संस्कृति सभ्यता और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है और विकसित भारत में भी इसका महत्व बना रहेगा। श्री बिरला ने शिक्षकों वैज्ञानिकों अनुसंधानकर्ताओं नीति निर्माताओं और किसानों से आत्मनिर्भर कृषि मॉडल तैयार करने के लिए मिलकर काम करने की अपील भी की। असम के जोरहाट में वायुसेना विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले 5 जवानों में राजस्थान के अग्निवीर खेमाराम कुमावत भी शामिल हैं। उनका आज नागौर के पैतृक गांव पांचोता में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। खेमाराम साल 2022 में अग्निवीर के रूप में भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए थे और देश सेवा का सपना पूरा कर रहे थे। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में भी शिविर लगाया गया है जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आमजन को जागरूक कर रक्तदान के महत्व की जानकारी दी जा रही है। पाली CMHO ने बताया कि राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में रक्तदान शिविर लगाया गया है जिसमें रक्तदाताओं के ब्लड ग्रुप की निशुल्क जांच भी की जा रही है। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं जिनमें रक्तदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
1: हिंडौन उपखंड रक्तदान की मजबूत परंपरा के लिए पहचान बना चुका है। जहां प्रतिवर्ष 1000 यूनिट से अधिक रक्त का संग्रह किया जाता है, यहां से एकत्रित रक्त का उपयोग जयपुर करौली सहित विभिन्न ब्लड बैंकों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों के उपचार में किया जाता है। सामाजिक संगठनों युवाओं और स्वयंसेवी रक्तदाताओं की सक्रिय भागीदारी से जिले में रक्तदान के प्रति जागरूकता लगातार बढ़ी है। विश्व रक्तदाता दिवस पर जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में रक्तदान

0: रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है, जहां अधिकाधिक लोगों से रक्तदान कर जीवन बचाने के इस महादान में सहभागी बनने की अपील की गई है। बांकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया जा रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक चलेगी। इस बार परीक्षा की नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है। परीक्षा के मुख्य समन्वयक और वीएमओयू के कुलगुरु प्रोफेसर बीएल वर्मा ने बताया कि 1,26,600 परीक्षार्थियों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही एंट्री दी जा रही है। परीक्षा निगरानी के लिए जयपुर के क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया है। परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर से की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया कैंपेन चलाया जाएगा। 5 वर्ष तक के बच्चों को दस्त रोग से सुरक्षित रखने और बाल मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये अभियान आयोजित किया जाएगा। हनुमानगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की गई है और वहाँ ORS कॉर्नर बनाए गए हैं।
2: जिसमें इस बार की हमारी टीम है डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS से रखें अपना ध्यान। इस कैंपेन के दौरान हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी आशा एएनएम घर घर जाकर जागरूकता भी करेंगे, हाथ धोने की तकनीक, सफाई किस तरीके से रखें, और साथ में हमारा ORS और जिंक वितरित भी किया जाएगा। हमारे सभी संस्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। इसका मूल उद्देश्य है कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जो डायरिया से जिनको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उनकी रोकथाम और डायरिया के लिए जागरूक।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमेरिका और इसराइल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। वे कल पंजाब के लुधियाना में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्र सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में बढ़ोतरी का अधिक प्रभाव नहीं पड़े।
3: प्रधानमंत्री जी ये नहीं चाहते थे कि बढ़ते दामों में हमारे आम नागरिक जो है, हमारे बहन भाई, उन पे बोझ पड़े। और अभी हमने जब पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया तो कितना बढ़ा टोटल? पहले 3 रुपए कम हुआ था, उसको मैं एक तरफ छोड़ता हूँ, 7 रुपए और 60 पैसे। और हमने एक एनालिसिस किया विश्व भर में, जापान के अलावा भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे कम प्राइस इंक्रीज हुई है पेट्रोल और डीजल की।
1: और अब मौसम। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, साथ ही प्री मानसून गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कल राज्य के कई जिलों में आंधी और बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हुआ है। दिन के पारे में सबसे अधिक 9.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट पिलानी में दर्ज की गई। 40.8 डिग्री सेल्सियस के साथ जैसलमेर सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रात का पारा भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। सीकर में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां पारा 7.7 डिग्री सेल्सियस लुढ़क कर 19.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जोधपुर संभाग में आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। यहां 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ तेज बरसात हो सकती है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। टूर्नामेंट के मैच इंग्लैंड और वेल्स में खेले जा रहे हैं। फाइनल मैच अगले महीने की 5 तारीख को लॉर्ड्स में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही पूरा होगा। राज्य में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट PTET 2026

आज और प्रदेश में मौसम के बदलाव से ज्यादातर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में गिरावट आज पांच संभागों में आंधी और बारिश की संभावना इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा नमस्कार

अभी श्रोता सुन रहे थे समूह सुरों में देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए साहित्य सुगंध का कार्यक्रम में राजस्थानी कहानी चंदा। कहानीकार हैं राजेंद्र सिंह

0: शेखावत।
1: कहानी रो शीर्षक है चंदा। चंद्र कौर रा दादो सा कई बार न्योलखी ग्राम पंचायत रा सरपंच रिया। नानो सा नाने रे में सरपंच हा, बारा माँ र पापा बहुत ही नेक हा, बै घना सेवा भावी हा। चंद्र रा बाबो सा अर दो काको सा सांचा मानिस्ता आदमी हा, सह सगे रिया करता हा। इन खातर चंद्र कंवर ने बहुत अच्छा संस्कार मिल्या। चंद्र कंवर ने कोई चांद तो कोई चंदा कया करतो हो। चंद्र 16 साल री हुई ही के घर आला वर्री ढूंढ खोज शुरू कर दी। इन सिखाटी रे खेड़ी गांव में राजेंद्र नाम रो एक लड़को हो, वो खाता पीता घर रो हो और कॉलेज में पढ़िया करतो हो। वो कॉलेज री टीम में कबड्डी रो जोर को खिलाड़ी हो। राजेंद्र ने सगड़ा प्यारू राजू राजू कया करता हा। राजू रा पापा एक ही भाई हा, वह सरकारी नौकरी में हा। उना के काको सा जका ने दाता कहता कोई औलाद को नहीं। ई खातर बे राजू ने आपके कन राख्या करता हा। राजू कोई कोई कैडो काम को निठाया करतो हो। राजू बाने छोटिया दादो सा कया करतो हो। छोटिया दादी सा जका को नाम सूरज हो, बस सूरज दादा रो स्वभाव की करड़ो हो। छोटिया दादो सा एक ब्याह में न्योलखी गया हा। बठई पंडित जी महाराज बाऊ रामा सामा करी पंडित जी बेगा सा आप आला ठाकरा के घर गया और बोलिया के ख्याली आरा ठाकर साहब आयड़ा ही। बारो पोतो अपनी चंदा के जोड़ पे रो है, चूको ही ना। पंडित जी ठाकर साहब ने लेके दाता के कन्ने आया, रिश्तेरी बात करी। दाता मान गया, ठाकर साहब ढील करिया बिना ही कामल और आरती आली थाली मंगा के दाता के तिलक कर दियो। कामल उड़ाई आत्म नकदी दिया, लुगया गीत गिर दिया और गुड़ बांट दियो। दाता पाछा खेड़ी आ गया, बा राजूरी सगाई की बात कोई नहीं कोनी बताई। कामल लको दी 2-3 दिना फिर सूरज दादा कामल देखी। जद वह दाता ने पूछो, वह बोलिया के है वो राजूड़े का दादो सा आ कामल क्यों लकोई थे। कण दी ही बोलो क्यों को नहीं। दाता उड़े सी बोलिया राजूड़े री सगाई कर दी। सूरज दादा देखता ही रह गया, वो की करियो थे की करी बताओ तो सरी। दाता बोलिया न्योलखी का ठाकरा री पोती है। सूरज दादा कई देर तो रोड़ा करया, फिर बोलिया ठीक है अब कर दी तो कर दी, ब्यारी तैयारी करो। थोड़ा दिना फिर न्योलखियारा आया, राजू के तिलक कर गया। अगली साल मारो ब्याह कर दियो। 2 साल फिर सूरज दादा बीमार हो गया, बे माचो ही पकड़ लियो। चंद्रबारी अच्छी सेवा करती, बे रोड़ा सुनबो करती और काम करती जाती। वह कहती के बूढ़ा माई थो सेवा तो मैं ही करूंगी। गांवरी लुगाया बात करती के आ बीननी है, जित करे और कोई होती तो कदेश की नारी हो जाती। कोई कोनी सुना आजकल है, आ तो भले गरारी है, माँ बाप संस्कार दिया है। पूरा 12 साल सूरज दादारी सेवा करण रो सौभाग्य चंद्र ने मिल्यो। इ बीच राजू और चंद्र रे एक बाई और 2 भाया हो गया। एक दिन सूरज दादा देवलोक गमन हो गया, चंद्र रो जस आसपास के गांव में फैल गयो। थोड़ा दिना फिर बड़ा दादा ही बीमार हो गया, चंद्र बारी सेवा करण में ही कोई कमी कौन छोड़ी। वे दादा कहता कि मैं तन्ने कह दियो तू मेरी सेवा करे। चंद्र बोली कि थे थारो पोतो दे रखियो है न, और के दे हा। आ बात सुन के वह बहुत राजी होता, वह आशीष देता कि तेरा टबर नौकरी लागसी और सुख पासी। गांव री लुगाया कहती कि बीनणी तू की माटी की बनेड़ी है। एक दिन वह दादा ही सरगवासी हो गया। लुगाया बोली कि चंद्र ने सेवा तो बहुत करीबी रूप

0: फल मिलसी मिलसी। टाबरिया दाता ने चाह पानी टेम पर जीवाण रो काम भाज भाज करता, कदे चंद्र आप जिमा देती, दाता रू जिसो रहो। एक दिन वे बोलिया के राजू ने कह के जमीन आपके नाम करवा ले, टेम को समय को के भरोसो को नहीं कद के उजावे। इन बीच गंगा जी जाने की बा दाता सोची के देख के तवा के सूरज की दादा हा मने के कर के आए। बैठे गंगा जी गया तो देखो और आया जो बहुत बहुत राजी हा के भूत चोखो काम करके आया थे। दाता कई बार कहो जद राजू गोद नामो करवा लियो। थोड़ा दिन फिर दाता बीमार हो गया, बारो घूमनो फिरनो बंद हो गयो। चंद्र कौनो बारी सेवा करण लाग गई। आया है बने जानो है दाता भी एक दिन चला गया। चंद्र ने सेवा रो फल मिल गयो, बेटी रो ब्याह कर दियो, बहुत अच्छो घर अर बर मिल्यो, बेटी सुख पावे। छोटो बेटो वकील बन गयो अर बडोड़ो पुलिस की नौकरी लाग गयो। राजू कोई कह कान मोकान जावे जद लोग एक ही चर्चा करे कह राजू री भू जिसी सेवा कणी कौन करी, कोई कर सके ना करी। चंद्र सेवा आपके मायतारी करी पण वाह वाई सो गांव करे। चंद्र कंवर राजू बैठे हा, चंद्र कंवर री आंखिया में पानी टप टप आ रो हो। राजू बोलो भगवान से काम अच्छा करसी, थे रो ना, आपा कोई बुरो तो करियो कोनी कोई को। चंद्र बोली के वकील के खातर की करो। राजू बोलो थ्यास रखो थे, थ्यास रखो सो सी भगवान सगड़ो भलो करसी, आपा कोई को माड़ो कोन करियो, न कोई को माड़ो सोचो, न आपा कदे करा। अब देखो सेवा करी बी को फल अपा ने मिल्यो है, और ओ रहे वकील जको तो सदा ही कहतो के दो लेस्यू दो लेस्यू दो लेस्यू। अब देखो दो लेसी तो दूसरी भी दिराशा करसा, ते चिंता ना करो भगवान भली करसी। सगले गांव में चंद्र कंवर री वाह वाह हो रही है, नानेरे में पीर में सासरा में आसपास के गांव के मायने आज ताणी लोग है जका बातां करे के बीजनी हुए तो इसी हुए, बीजनी हुए तो इसी हुए। ऐसे काम संस्कार आ रहा हुए तो संस्कार देना चाहिए, माता पिता का मानना चाहिए कैडा, और समाज में देश में परिवार में नाम होसी, चोखो काम चालसी, भगवान भली करसी।
1: अभी आप सुन रहे थे साहित्य सुगंध कार्यक्रम में राजस्थानी कहानी चंदा। कहानीकार थे राजेंद्र सिंह शेखावत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए समूह सुरों में देशगान।

अभी आप सुन रहे थे समूह सुरोमी देशगान। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल विहार।

नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों का स्वागत है उनके अपने कार्यक्रम बाल विहार में। और दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी दीदी लीला, तो स्वीकार करें मेरा नमस्कार। कहा जाता है बच्चों कि बच्चे जो होते हैं, आप बच्चे मन के सच्चे होते हैं, और मन के सच्चे होते हैं इसलिए आप इस धरती पर फरिश्ते से कम नहीं होते हैं। और आप सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमको भी आपकी चिंता रहती है, और आपके जो माता पिता हैं वो भी आपकी खूब चिंता करते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे कारण होते हैं जिसमें आपको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए अलर्ट रहना होता है। विशेषकर बहुत छोटे बच्चे या थोड़े, जैसे आप बड़े हो जाते हैं, समझने लग जाते हैं, थोड़ा वो स्कूल जाने लग जाते हैं, तो विशेषकर आपकी चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है? तो सबसे पहले तो जैसे पेरेंट्स होते हैं, हम होते हैं, आपको बहुत मजबूत बनाते हैं और इसके लिए हम आपको शिक्षा भी देते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों में, नन्हे दोस्तों को हम देखते हैं कि वो एक छुई मुई की तरह होते हैं, और हर बात में, छोटी छोटी बात में वो पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं। पूछना अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ कोई घटना घटित ना हो इसके लिए आपको भी थोड़ा अवेयर रहना होगा बच्चों। और कभी कभी ये देखा जाता है कि जैसे आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते वक्त या रास्ते में या कोई भी आपको, कोई अजनबी या जान पहचान वाला व्यक्ति भी अगर आपको धीरे से इशारे से बुलाता है या चॉकलेट खाने के लिए कहता है या आपको देने के लिए बोलता है, तो खाने पीने की वस्तुओं का बिल्कुल आपको लालच नहीं करना चाहिए बच्चों। अगर कोई बुला रहा है तो हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपको ना कहने की आदत भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो, कोई अजनबी या हमारा जानकार भी हमारा दुश्मन हो सकता है, इसलिए आपको बच्चों थोड़ा सतर्क रहना होगा। और इसके साथ साथ कभी भी कहीं भी जाने से पहले, अपने दोस्तों के घर जाने से पहले या कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो अपने माता पिता की अनुमति आपको जरूर लेनी चाहिए। उन्हें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं। बिना बताए किसी भी घर के सदस्यों को या माता पिता को आपको कहीं भी नहीं जाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। कोई छोटी छोटी बात हो आपको अपने पेरेंट्स से शेयर जरूर करनी चाहिए। अलावा इसके, किसी अनजान व्यक्ति से, अजनबियों से आपको दूर रहना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई मदद के नाम पर आपको बुलाता है या बहला फुसला कर बुलाता है, तो कोई भी वस्तु न लें, उसके साथ कहीं न जाएं। इसके अलावा बच्चों, आज के समय में सुरक्षित रहने के लिए आपको गुड और बैड टच, अजनबियों से सुरक्षा, स्मार्ट इंटरनेट आदतों का, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। माता पिता सतर्क रहते हैं, आपको आत्मविश्वासी बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी सुरक्षा, आपका जो सतर्क है वो आपके अपने हाथ में है। अलावा इसके, जैसे आप स्कूल जाते हैं या कहीं गए हैं, तो कोई भी अजनबी व्यक्ति आपको लेने के लिए पहुंच जाए बाय चांस, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो माता पिता का भी थोड़ा ड्यूटी बनता है, और माता पिता और बच्चे के बीच एक गुप्त पासवर्ड जरूर होना चाहिए। यदि आपातकालीन स्थिति में आपके पास कोई भी आता है,

तो आप वो कोड बताकर सुरक्षित पहचान अपनी बता सकते हैं। तो वो कोड कुछ भी हो सकता है, कोई शब्द भी हो सकता है, कोई गीत भी हो सकता है, कोई फिल्मी नाम भी हो सकता है, या अपना कोई अच्छा नाम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अलावा इसके आपको अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा इंटरनेट का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप कोई भी व्यक्तिगत जानकारी, फोटो या पासवर्ड किसी भी व्यक्ति को मोबाइल नंबर नहीं बताना चाहिए, किसी अनजान व्यक्ति से ऑनलाइन दोस्तों से सुरक्षित रहना चाहिए, ज़्यादा ऑनलाइन दोस्ती आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। अलावा इसके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी बनना होगा बच्चों, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति, अनजान व्यक्ति या आपके परिवार का जानकार सदस्य भी, जो आपकी जानकारी में आपको लगता है ये मेरे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है, तो इससे दूरी बनाए रखें। अलावा इसके बच्चों, आपको अपने घर का फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, मोबाइल नंबर, घर का पता ज़रूर याद रखना चाहिए, अपना कोड वर्ड ज़रूर याद रखना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बच्चों आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अकेले में ना रहें। स्कूल में भी है तो आप 4-5 बच्चों का ग्रुप बना लें, साथ में रहें, ये जो तरीका है आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। अलावा इसके आप घर जाते हैं तो घर पर जाकर भी आप अपने पेरेंट्स से सारे दिन की जो गतिविधि है स्कूल की वो ज़रूर बताएं, पेरेंट्स से कुछ भी बात छुपाएं नहीं, क्योंकि एक माता पिता होते हैं जो आपकी बातों को धीरज से सुनते हैं और आपको हर बात का सोल्यूशन भी उनसे मिलता है। आमतौर पर पेरेंट्स जो है वो व्यस्त हो जाते हैं बच्चों, लेकिन कोई बात नहीं है, वो आपकी कई बार बात नहीं सुन पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको बताना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपने मन में कोई भी डर बैठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ से डर है तो जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग अगर माता पिता चाहते हैं, आप भी उनसे कह सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: अंतराल के बाद नन्हे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम बाल विहार में। हमें पता है बच्चों कि अब आपको इंतजार है किसी प्यारी कहानी का, क्योंकि आपको हम कहानियाँ बाल विहार के माध्यम से सुनाते हैं, और कहानी जो है वो सीखने का एक बहुत बढ़िया जरिया होती है आप बच्चों के लिए। कहानी के माध्यम से आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। तो लीजिए बच्चों, आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है 4 बातें। बच्चों, एक राजा था और उस राजा के बहुत बड़े महल में एक सुंदर वाटिका भी थी, और उस सुंदर वाटिका में बहुत सारे फलों के पेड़ लगे हुए थे और उसमें बहुत सारी अंगूर की बेलें भी लगी हुई थी। उस अंगूर की बेल के पास रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती थी। और पता है बच्चों, वो आधे पके हुए और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती थी। जो अंगूर बहुत मीठे होते उन्हें वह खा लेती थी। लेकिन उस बगिया की देखरेख के लिए जो माली था वो उसका बहुत ख्याल रखता था बगिया का, और माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वह हाथ नहीं आई। बहुत बार उसे उड़ाने की कोशिश करता, जाल बिछाया, लेकिन वो चिड़िया आना नहीं रुकी। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। कौन सी बात? कि रोज चिड़िया

अपने बगीचे में आ जाती है और वह है फलों का नाश कर रही है, विशेषकर अंगूरों का। यह सुनकर जो राजा था, जिसका नाम भानु प्रताप था, उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि वो भला मीठे अंगूर खा जाती है और खट्टे गिरा देती है। तो राजा ने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान ली थी। राजा वाटिका में छिपकर बैठ गया था। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी से दौड़ते हुए उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने राजा से कहा कि हे राजन, मुझे मत मारिए, क्योंकि मेरे को मारने से आपको भला क्या फायदा होगा। अगर मारना ही है तो कोई बात नहीं, पहले आप मेरी चार बातें जो है वो सुन लीजिए, ये बड़े काम की बातें हैं। राजा ने कहा, अच्छा बताओ। चिड़िया बोली कि राजन, सबसे पहले तो ये जो शिक्षा है मैं आपको दे रही हूँ कि सबसे पहले तो हाथ में आए हुए शत्रु को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो राजा ने कहा, अच्छा दूसरी बात। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर या जिस पर विश्वास न किया जा सके, ऐसी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि बीती हुई बातों पर कभी भी हमें पश्चाताप नहीं करना चाहिए। राजा बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। राजा ने कहा, अब चौथी बात क्या है वो भी बता दो। तो चिड़िया बोली, चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो बोली कि चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी है। तो वो ये बोली कि आप मुझे थोड़ा सा ढीला छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, कुछ सांस लेकर ही मैं आपको बता पाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला छोड़ा, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में दो हीरे हैं। राजा ने कहा कि देखो, तुमने विश्वासघात किया, तुम उड़ कैसे गई। लेकिन जब चिड़िया ने यह बताया तो राजा ये सुनकर पश्चाताप में डूब गया कि इसके पेट में दो हीरे हैं। राजा की हालत देख चिड़िया बोली कि हे राजन, मैंने आपसे पहले ही कहा था, और ये जो बात मैंने बताई है, इन बातों को सुनकर आपको थोड़ा समझ भी जाना चाहिए कि ज्ञान की बात सुनने और पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने की आवश्यकता होती है। आपने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी लेकिन मानी नहीं। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने ये असंभव बात कही कि मेरे पेट में दो हीरे हैं, फिर भी आपने उस बात पर भरोसा कर लिया। आपने आपके हाथ में वे काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछतावा करने लगे। तो राजन, उपदेशों को जीवन में उतारे बगैर उनका कोई मोल नहीं होता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है बच्चों, पक्षी न केवल प्रकृति की एक सुंदर रचना होती है, बल्कि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होती है और पर्यावरण को कीटों और कीड़ों से मुक्त रखने से लेकर ये फूलों के पराग कण तक पक्षी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। और नन्हे दोस्तों, पक्षियों की जो भूमिका होती है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कई रंगों के पंखों से सजे और अलग अलग तरह की आवाज़ निकालने की क्षमता रखने वाले पक्षी न केवल सुंदरता के प्रतीक होते हैं, बल्कि ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इतनी सारी प्रजातियों के साथ उन सभी के बारे में जानने में हमें बहुत समय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे आम पक्षी जिनकी कुछ रोचक जानकारी और अद्भुत तथ्य हम आपको बताते हैं। बच्चों, आपने तोता देखा है। तोता जो होता है वो क्या बोलता है? तोता और जो है वो सारे शब्द बोल सकता है। और पालतू तोते को हम देखते हैं कि वो ज़्यादातर जो है वो सब शब्द जो है वो बोल सकता है और सही बोलता है। तोता जो होता है उसके हरे रंग का फर, लाल चोंच और नकल करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और लोगों के द्वारा पसंद भी की जाती है। और हालांकि ये तोता जो होता है वो न केवल इंसानों की

ही आवाज निकाल सकता है बल्कि यह पक्षियों की और उपकरणों की आवाज भी निकाल सकता है। दुनिया भर की संस्कृतियों में इनके लिए कुछ लोक कथाएं भी प्रचलित हैं, क्योंकि तोते जो है वो मनुष्यों की तरह आवाज निकाल सकते हैं। और शोध से भी पता चलता है कि तोते का जो मस्तिष्क होता है वो अन्य पक्षियों से संरचनात्मक रूप से कुछ अलग होता है। यह ध्वनि सीखने में इसकी मदद करता है। तोता एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों से भोजन और वस्तुओं को उठा सकता है और उसे खाने के लिए अपने मुंह तक ले जा सकता है। तोते की आयु जो होती है वो ठीक ठाक ही होती है, लेकिन कहा जाता है कि अमेजन नाम का जो तोता है वो बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। काकापो एक बड़ा तोता है होता है जो उल्लू जैसा दिखता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। तो ये तोते के बारे में बच्चों आपको हमने जानकारी दी।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल विहार। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का रिले किया जाएगा।

0: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आइए आज सुनते हैं इस गपशप का दूसरा भाग।
1: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
2: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
1: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं। तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हैं, करियर नहीं बना सकते इसमें।
1: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
0: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
1: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी, तो फिर क्या किया आपने?
2: मैं जिंदगी

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया। टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे।

0: बहुत बहुत शुक्रिया अमरकांत जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप कोरियोग्राफी करते थे?
0: हाँ, लेकिन
1: स्कूल में और कॉलेजेस में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है, उसके नुएंसेस अलग होते हैं,
0: एकदम अलग सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं।
0: एब्सोल्युटली,
1: वो तो आप जानते नहीं थे।
0: एब्सोल्युटली,
1: फिर आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया?
0: फिल्मी जो मुझे मिली पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा यू नो कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
1: एक तो और बड़ी फिल्म थी, बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
0: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म फिल्म बन रही है।
1: लेकिन उसके बाद जब वो फिल्म रिलीज हुई होगी और जब उससे टेरेंस का नाम जुड़ा, तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए, वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली

0: आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं। लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया। लोगों को लगा कि मैंने बड़े नाम बड़े फिल्म के साथ जुड़ गया हूं, तो अगर आशुतोष जी ने विश्वास किया है तो इस बच्चे में कुछ ना कुछ होगा। तो मुझे सेकंड फिल्म मिल गई जो झंकार बीट्स थी, वो भी फिट हो गई।
0: झंकार बीट अपने आप में एक अलग फिल्म थी,
1: करेक्ट,
0: जिसमें खास तौर से राहुल देव बर्मन का जिक्र था।
1: हाँ,
0: आरडी बर्मन साहब का। और अगर आप देखें तो राहुल देव बर्मन के हर एक गाने में आज भी वही कशिश है,
1: करेक्ट,
0: वही ताजगी है, जबकि वो उनकी साज से निकले होंगे,
1: करेक्ट।
0: तो उन गानों पर, उस संगीत पर कुछ, उसमें कुछ नयापन लाना,
1: हाँ,
0: और फिर उस पे डांस, वो एक अलग चैलेंज नहीं था आपके लिए?
1: एब्सोल्युटली, क्योंकि धुन जो थी, जो विशाल शेखर पहली फिल्म थी उनकी, और सुजॉय घोष की भी पहली फिल्म थी वो, तो जो धुन बना रहे थे इट वाज मतलब एक वेरिएशन था ऑफ आर डी बर्मन को लेकर और उसके संगीत को समझ कर, वो आज की तारीख में वैसा वाला संगीत बना रहे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे गाने बने उसी टेम्पलेट में, लेकिन एक नया ट्विस्ट देना था, एक नया अंदाज देना था आज की पीढ़ी जिसके साथ जो कनेक्ट कर पाए। तो वो इंस्ट्रक्शन भी सुजॉय ने दिया था कि मुझे थोड़ा पुराना वाला फ्लेवर चाहिए और थोड़ा आज का।
0: उसमें डांस में फिर क्या किया, मैं वही जानना चाहता हूँ आपने।
1: तो डांस में इट वाज नॉट सच अ डांस ओरिएंटेड सॉन्ग, इट वाज मोर अबाउट, इट वाज अ रॉक बैंड, तो वो बैंड है फिल्म में भी, वो लोग सब संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो उनको नाचना नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनको फिल्माया गया था एक रॉक स्टार वाली फील आनी थी। एक रॉक बैंड कैसे आते हैं, उनके बीच में कैसा छोटी छोटी अनबन होती है, और कैसे वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन रात को वो आके गाते हैं और साथ में मिलते हैं, तो वो वाली कहानी थी। तो उस किरदार के हिसाब से मैं बन गया था। आई डिडंट हैव मच ऑफ डांसिंग टू डू, बट पिक्चराइजेशन हैड टू बी डन वेल। एज अ कोरियोग्राफर समटाइम्स हर गाना आपको आर्टिस्ट को नचवाना नहीं पड़ता, सिचुएशन के हिसाब से आपको वो दर्शाया जाना चाहिए ताकि वो अच्छा लगे देखने में, फील करे और वो कैरेक्टर से बाहर ना निकले। ओनली ड्रीम सीक्वेंस जब रिया सेन और शायन मुंशी, वो एक्टर भी थे, उनका एक गाना था जो शान ने गाया था, दिल ने तुमको चुन लिया है तुम भी मुझको चुनो ना चुनो ना, ला ला ला ला ला ला ला ला, बहुत अच्छा प्यारा गाना था। वो गाने में ड्रीम सीक्वेंस में थोड़ा डांसिंग दिखाया गया था, बट मोस्टली इट वॉज मोर ऑफ अ फील का गाना था।

जो एक्चुअल फिल्म में डांस एकदम कहर वाला डांस जो किया वो तीसरी फिल्म में आया नाच, जो अभिषेक बच्चन और अंधरा माली के साथ था और जो इसके डायरेक्टर साहब थे राम गोपाल वर्मा। वो फिल्म हाथ ऐसे आई कि अंधरा माली मेरे शोज देखती थी स्टेज में। मुझे तब भी, मैं फिल्मों में काम करता था लेकिन मुझे स्टेज का बहुत बड़ा लगाव था और मुझे स्टेज पर परफॉर्म करना ज्यादा पसंद था, तो मैं अतरंगी चीजें स्टेज पर ट्राई करता था, एकदम अतरंगी, जो मतलब एकदम लोग बोलते थे क्या कर रहा है तू स्टेज पे, बट कुछ भी जो भी दिमाग में आया करता था, लेकिन उसका कुछ यू नो सर या पैर नहीं था, बट एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट, और मैं वो स्टेज पे दिखाता था। तो उसको वो स्टाइल बहुत पसंद आया अंतर माली को, और उन्हें बोला कि मुझे आपका ये स्टाइल बहुत पसंद है और मैं ये सीखना चाहती हूँ और मैं इसको अपने फिल्म में लेके आना चाहती हूँ। और एक फिल्म लिखी है जो मैंने लिखी है और राम गोपाल वर्मा ने लिखी है, उसका फिल्म का नाम है नाच आपे, कोरियोग्राफर की लाइफ पर ये फिल्म है। और फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि ये फिल्म तो मेरे ऑलमोस्ट मेरे से मिलती जुलती है, बिकॉज इट वॉज अ कोरियोग्राफर हु वॉज नॉट अ वेरी ट्रेडिशनल कोरियोग्राफर, जो हटके है, जो हटके सोचता है। तो उसने वो जो मेरा जो चाल चलन है, जिस तरीके से मैं बैठता था, वो मुझे नोटिस करने लगी अंतरा माली जी, और वो हर एक चीज समझने लगी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, कैसे डांस करता हूँ, कैसे समझाता हूँ। तो वो सब चीज़ें उसने मुझे स्टडी कर दिया और वही चीज़ वो अपने फिल्म में नाच में करवाना चाहती थी। तो जो कंटेम्प्रेरी डांस का जो मैंने तड़का दिया उस गाने में, तो क्रिटिकली मुझे बहुत सारा लोगों ने फ़ोन किया कि ये फिल्म बहुत हटके है, तुमने कुछ और ही कर दिया, कुछ अलग ही दिख रहा है, डांस नहीं पता नहीं क्या, कुछ एक अलग नज़ारा दिख रहा है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्रिएटिवली मैंने कुछ अलग सोचा, मैंने बोला कि जो लोग करते हैं वो नहीं करूंगा मैं, कुछ अलग अलग अलग। तो उसके पीछे मैंने क्रिएटिवली कुछ अलग ही डांस करवाया और वो बहुत दिख कर आया और लोगों को पसंद आया। सो इन माई क्रिएटिव जर्नी आई हैव डन ओनली 10 फिल्म्स, नॉट मच, बट दिस इज वन ऑफ देम दैट काइंड ऑफ यू नो एक अलग, एक पहचान मुझे इस फिल्म से मिली।

0: अच्छा, अभी आपने इसके पहले ये बात कही कि अंतरा माली ने आपको एक स्टेज शो में देखा और फिर और आपने ये बताया कि स्टेज शोज में बड़े अतरंगी से डांस आप करते थे, तो गाने भी अतरंगी चुनते होंगे?
1: बहुत ही
0: इस तरह के क्या, क्योंकि अतरंगी गानों के लिए कुछ खास नाम भी हैं हमारे, जैसे किशोर कुमार साहब हैं, अमित कुमार जी के भी गाने रहे हैं, तो आपके अतरंगी गाने किस तरह के होते थे?
1: वेल, अगर हिंदी गाने तो यूज नहीं करते थे, बिकॉज वी यूज टू यूज यू नो नॉन कॉपीराइटेड म्यूजिक, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, तो हम लोग म्यूजिक क्रिएट करते थे. लेकिन इन्फ्लुएंसेस बहुत सारे थे जो मतलब यू नो देसी फिल्मों से थे. कुछ गाने बहुत ही यू नो दिल को करीब छूने वाले, जो एकदम सोलफुल थे, जैसे ए जिंदगी गले लगा ले. और मुझे गजल्स बहुत पसंद हुआ करते थे, गजल्स जैसे कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, क्योंकि मैं स्टेज पे ना मूड लेके चलता था.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो मेरी कहानियां होती थी, तो मुझे ऐसे वाले मूड वाले गाने बहुत पसंद हुआ करते थे, जहाँ पे एक मूड फील हो जाता है, जो बहुत ही संजीदा, जो बहुत ही जिसमें लिखावट में एक फीलिंग होती है. तो मुझे अर्थ के गाने, सदमा के गाने, या मासूम के गाने, या ऐसे फिल्मों के जहाँ पे बहुत ही मतलब बहुत खूबसूरती से लिखे हुए, जो बहुत ही यू नो सोचकर, या साहिर लुधियान के गाने, सभी मुझे पसंद थे. एक गाना था जो मैं जूझ रहा था लाइफ में, संसार से भागे फिरते हो,
0: चित्रलेखा.
1: चित्रलेखा, करेक्ट सर, मीना कुमारी. तो वो गाना मेरे लिए वॉज अ पिविटल मोमेंट, जब मैंने वो गाना सुना और जो जो उसका अर्थ था, क्योंकि मैं उसी मैं भी लाइफ में जूझ रहा था कि यू नो मटीरियलिज्म इज राइट,

ओके, और इज इट कि सब कुछ त्याग देना, भोग में है या त्यागने में, तो क्या है? सो आई थिंक ऐसे गाने जो मैंने सुना करता था, माइंड कि क्या सोच है, और उसको फिल्मों में दिखाया गया था. सो आई थिंक आई वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाई ऑल ऑफ दीज ग्रेट आर्टिस्ट एंड ग्रेट सॉन्ग्स एंड ग्रेट लिरिसिस्ट. क्योंकि जो म्यूजिक एक तरफ, लेकिन जो अच्छा लिखते हैं उस पर भी अमल करना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ कोरियोग्राफर, बिकॉज उससे कोरियोग्राफी बनती है. तो ये गाने मेरे लिए दिल के बहुत करीब रहे हैं.

0: अभी आपने जो ये बातें की, गजल की बात की, लिरिक्स की बात की, आपने बात की कि कहीं कोरियोग्राफर्स उससे बनते हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा था कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली?
1: नहीं ली।
0: आपने कोरियोग्राफी की अगर बात की जाए तो फिल्मों में ऐसे कोई बहुत
1: असिस्ट भी नहीं,
0: फिल्में भी नहीं की या किसी को असिस्ट भी नहीं,
1: नहीं किया।
0: बावजूद इसके आप वो जो कोरियोग्राफी के लिए जो एक खास चीज होती है जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, देखिए ऐसा एक डांस देख के डांस कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन एक डांस को खुद क्रिएट करना, एक लिरिक्स को डांस में कन्वर्ट करना,
1: करेक्ट,
0: वो एक अलग चीज है जो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट कह सकते हैं जिसको।
1: अंदर से आता है।
0: इसको आपने महसूस कैसे किया? आपने इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर

0: होता है। देखिए गॉड गिफ्ट है लेकिन वो गिफ्ट आप बाहर कैसे निकाल कर आपने की जो प्रोसीजर है वो कैसे सीखी, उसको कैसे समझा आपने?
1: सो कोरियोग्राफी ना दो तरीके से होती है, आप गाने को सुनते हो और गाना आप पर हावी हो जाता है और आपका शरीर उस गाने को सुनकर, उसके कानों के ध्वनि को सुनकर आपका अंग डांस करने लगता है, वो एक तरीका है। लेकिन मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाता ही नहीं हूँ, मैं जो थॉट है जो सोच है उसको लेके चलता हूँ और मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं कि मैं क्या करने वाला हूँ लेकिन मुझे गौर से देखना और याद रखना और मुझे कॉपी करते रहना, क्योंकि मुझे आपको अगर बोलोगे कि अभी वही चीज़ वापस करो तो मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन जो भी निकल रहा है मेरे अंदर से उस पर थोड़ा आप ध्यान देना, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी होंगी कुछ चीज़ें नहीं, तब उतना ध्यान नहीं था कि कैमरा भी लगा सकते हो और आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उस जमाने में मैं अपने असिस्टेंट पर ज़्यादा निर्भर करता था, तो मैं स्टूडियो में जाता था और मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो मैं डांस करता था विदाउट म्यूजिक, और फिर मैं सोच रहा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये कौन से म्यूजिक पे अच्छा लगेगा, फिर मैं म्यूजिक को सुनता था, मतलब कि ये म्यूजिक मुझे इंस्पिरेशन दे रहा है। तो इट वॉज ऑलवेज हाफ हाफ, पहले मैं आगे बढ़ता था अपना कुछ करता था ताकि वो हावी ना हो जाए मुझ पर, और फिर मैं म्यूजिक को सुनता था और फिर उसको कंबाइन करता था, फिर लव्स कभी कभी जो अल्फाज जो है अगर वो अच्छे हैं तो वो कभी कभी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कोरियोग्राफी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली क्रिएटिव लोगों में कि आप एक ही म्यूजिक को सुन के 10 चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इसके लिए आपको एक इंटेलिजेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक समझ चाहिए, वो समझ होता है इट्स कॉल्ड एन आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस, क्योंकि आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप बहुत सारे रूप में इसको दिखा सकते हो लेकिन कौन सा एकदम सही होगा, एकदम स्पष्ट होगा, एकदम सक्षम होगा और सूक्ष्म भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत लिटरल भी कर सकते हो, मतलब जो आप लव्स बोला है वही को आप दिखा रहे हो, तो फिर वो जैसे आप डेफ एंड डम वाला डांस हो गया, फिर वो वाला नहीं होना चाहिए कि एकदम लिटरल आप को ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन क्या आप उसको एक मेटाफोरिक एक मेटाफोरिक रूप में अगर दे सकते हैं तो देन इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो यू हैव टू यूज योर आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप उसी एक म्यूजिक या गाने या शब्द को सही चीजों को जोड़कर उसको बहुत ब्यूटिफुली कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए चाहिए आपको कॉम्पोजिशन टेक्निक, और कोरियोग्राफी कॉम्पोजिशन इज एन आर्ट, मतलब जो गाना जो आप डांस कर रहे हैं उसके उतार चढ़ाव क्या है, अगर आपकी बॉडी झट से एक स्ट्रांग मूवमेंट दे रही है उसके बाद आप फिर से स्ट्रांग मूवमेंट मत कीजिए, एक थोड़ा सॉफ्ट मूवमेंट कीजिए ताकि वो एक लहर की तरह ऊपर नीचे चढ़े, अगर आप एक बहुत बड़ा वाला मूवमेंट कर रहे हैं उसके बाद एक छोटा वाला मूवमेंट कीजिए, अगर आप बहुत ही मतलब अगर आप एक बार मतलब 8 काउंट के लिए सामने होके कैमरा के सामने करें तो कई बार थोड़ा मुड़ के आप थोड़ा डांस की ताकि वो विजुअल थोड़ा बदले। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ विजुअल एंड हाउ यू आर यूजिंग स्पेस, जो स्पेस है आप किस तरीके से यूज करते हैं और आपका अंग किस डायरेक्शन में जा रहा है और वो क्या जो आप कर रहे हो वो मैच कर रहा है म्यूजिक और शब्दों के साथ, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग विधि है जानना कि कैसे करते हैं, और इट्स कॉल्ड द आर्ट ऑफ कॉम्पोजिशन, ये झट से नहीं आता, यू हैव टू वर्क ऑन इट, और फिर जाके आप बहुत ही जब प्रैक्टिस करते हो और बहुत दिमाग लगाते हो कई बार अंदर से आ जाता है और एक सेकंड में वो सही आ जाता है, कभी कभी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर उसको फनल करना पड़ता है, इसको एक एसेंस में मतलब इसको एक रिड्यूस करना पड़ता है,
0: छानना पड़ता है
1: दैट्स द वर्ड आई वाज सर्चिंग फॉर, तो उसको छानना पड़ता है ताकि वो सही मात्रा में ज्यादा ना हो ना कम हो। इसकी जो समझ है ये बहुत फाइन इंटेलिजेंस है।

0: यही मैं चाहता था कि हमारे जो श्रोता है वो इस बात को समझें कि एक कोरियोग्राफी होती क्या है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आपकी फिर अगली फिल्म कौन सी रही? जैसे कि आपने बताया 10 फिल्में रही।
1: हाँ, बहुत सारी दूसरी छोटी छोटी फिल्में आई। मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मुझे 2009 में ही टीवी से इनविटेशन आया ताकि मैं कोरियोग्राफर और जज बनूं, और मुझे ये जो इनविटेशन आया बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ जज नहीं करने वाला था लेकिन मैं कोरियोग्राफ भी करने वाला था, और मुझे मौका चाहिए था कि मैं ऐसे ऐसे डांसर्स के साथ काम करूं जो अब जीजा मेहनत करें और मुझसे कोई सवाल ना करे, और जो मैं क्रिएटिवली दिखाना चाहता हूं वो मौका मिले। क्योंकि जब फिल्मों में जब आप काम करते हो तो
0: लिमिटेशन होती है।
1: आर्टिस्ट कितना कर सकता है, एक दो कट कट कट करके शूट करना पड़ता है। तीसरी बात ये होती है कि गाना का अगर वो किरदार ऐसा है कि वो ज्यादा नहीं नाचता तो तुम जबरदस्ती को नहीं नचवा सकते, और या सिचुएशन में आप यही कर सकते हो तो आप बहुत सारी चीजों से बंध जाते हो। टेलीविजन शो में आपको आप डांस दिखाना है, सिर्फ डांस, लेकिन कहानियां भी दिखानी है क्योंकि कहानियां के माध्यम से अगर सिर्फ डांस हो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन अगर उसमें एक नैरेटिव हो, इसमें एक कहानी हो, इसमें एक इमोशन छुपा हो तो वो बहुत लोगों को पसंद आने लगता है। तो जब मुझे ये मौका मिला मैं बहुत खुश हो गया। बहुत कोरियोग्राफर्स ने डांस इंडिया डांस को रिजेक्ट किया था, इनफैक्ट हम पहले चॉइस नहीं थे फॉर एज कोरियोग्राफर्स, बड़े बड़े लोगों को लिया गया था पहले, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमसे बहुत सीनियर जो लोग थे उनको अप्रोच किया था लेकिन उन्होंने ना कर दिया क्योंकि उनको कोरियोग्राफ करना नहीं था, क्योंकि वो फिल्मों में कोरियोग्राफ अच्छा करते हैं लेकिन स्टेज को कोरियोग्राफ करना मतलब स्टूडेंट्स को एक झटके में विदाउट कट्स, वो एक अलग ही विधि है।
0: टेरेंस, मैं उस पूरी जो टीवी की दुनिया है उसमें हम जाएंगे
1: जरूर,
0: लेकिन उससे पहले कुछ गाने भी हम सुनते चलेंगे।
1: बाहों में चल...

0: एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फिल्मों में जो कोरियोग्राफी होती है, जो डांस होता है, वो कट कट करके होता है।
1: करेक्ट।
0: मान लीजिए कि हम एक एक्टर को जानते हैं कि भाई इसको डांस आता नहीं, लेकिन वो बराबर 7 मिनट तक या 6 मिनट तक पर्दे पर डांस करता हुआ नजर आता है। आप थोड़ा सा समझाएंगे कि एक्चुअली जो फिल्मी कोरियोग्राफी होती है, फिल्मी डांस जब शूट होता है, तो उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी जो टेक्निक होती है, वो किस तरह से कट कट करके जाती है।
1: तो देख लीजिए, समझ लीजिए, आपने एक गाना सुन रहे हैं, गाने में बीट्स होती हैं, ओके, एक एक ताल होता है, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4, वो बीट होता है, रिदम होता है, ताल होता है। जब हम लोग सेट करते हैं तो हम हर बीट को कोरियोग्राफ करना पड़ता है, चाहे वो एकदम शुरू में अगर सिर्फ फ्लूट बज रहा है तो वो भी हमारे लिए कोरियोग्राफी होनी चाहिए, क्या हो रहा है उस पर वो भी सेट करना पड़ता है। तो जब हम शूट करते हैं तो हम पिक्चराइज करते हैं कि ये 4 बीट पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। अब ये है कि चाहे आर्टिस्ट अच्छा डांस करे या ना करे, लेकिन जो फिल्म का जो माध्यम है उसमें हम बहुत ग्लैमराइज करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक एंगल से 4 काउंट लिया, दूसरे एंगल से क्लोजअप मारा, वही चीज, फिर तीसरे एंगल से मूविंग ट्रॉली शॉट लगा दिया। तो जनरली क्या होता है, आर्टिस्ट को सहूलियत मिल जाती है या कन्वीनियंस हो जाता है कि वो सिर्फ 4 स्टेप करें या 8 स्टेप करें और फिर उसके बाद वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उसके बाद कट लगने वाला है, क्योंकि एक दूसरा कट आएगा। मान लो कि आपने 16 काउंट का भी कोरियोग्राफी रख दिया, अनफॉर्चुनेटली मैं कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो प्रथा चली आ रही है 20 साल से कि हम बहुत ही हमारे पास ठहराव नहीं है, हमको सब कुछ ना, अच्छा 2 काउंट ऐसा आ गया, आर्टिस्ट ने पूरा शॉट दिया है डांस का, लेकिन नहीं नहीं ये नहीं जम रहा है, अभी थोड़ा कट करके ये लगाएंगे, अब कट करके वो एंगल लगाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट अगर अच्छा आर्टिस्ट हो, जैसे माधुरी जी हो या ऋतिक हो या गोविंदा जी हो, उनको आपको कट करने की जरूरत नहीं है, वो इतना अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं कि वो एक एंगल से भी बनता है वो शॉट, जरूरी नहीं। लेकिन नहीं, आज की पीढ़ी में सब फट फट फट फट फट, तो एडिटर ज्यादा नाचता है क्योंकि जबरदस्ती के फट फट कट, और फिर वो झामे जो आते हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, लेकिन वो ना वो एकदम जूम इन करके झामे सक सक, फिर वो ब्लो ड्रायर, अननेसेसरी ब्लो ड्रायर, हर गाना सेम टू सेम लगने लगता है। अच्छा काम भी हो रहा है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही जरूर कहूंगा कि एक मोनोटोनस चीजें होने लगती है। अगर वो एक चीज अच्छी भी है तो वही चीज को, अच्छी चीज को 30 गाने में आप देख सकते हैं कि वो सेम टू सेम वही फॉर्मेट वही चीज दिख रही है, इनोवेशन नहीं होता। अगर एक

0: चीज सक्सेस हो जाती है हमारी इंडस्ट्री में, तो फिर सभी लोग बोलते हैं अच्छा वैसा ही गाना करो और इसको भी डुप्लीकेट बनाओ, सिर्फ गाने के लव्स और आर्टिस्ट बदल रहे हैं लेकिन ट्रीटमेंट वही का वही है। सो वही ट्रीटमेंट है कि गाने को फटफट काटो, फिर यू नो झामे करो, फिर क्लोजअप लो, फिर स्टडी कैम लगाओ। लाइक आई फील मास्टर जी, जैसे गणेश मास्टर जी और दूसरे हैं मास्टर जी जो यू नो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, सरोज जी, उनका जो स्टाइल ऑफ ट्रीटमेंट था, लंबे लंबे कट्स, आई थिंक दैट वो सिनेमा वापस आना चाहिए। एंड कुछ कोरियोग्राफर्स कर रहे हैं कुछ हद तक, और आर्टिस्ट को भी पता चल गया है कि नाउ वी शुड ऑल्सो नॉट कीप सच शॉर्ट कट्स। तो फिल्म की बात करें तो बहुत लोग जो अच्छे डांसर नहीं हैं उनको भी हम अच्छा दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत है ओके, तो मैं सिर्फ आपका क्लोजअप ले लूंगा, मैं आपको बोलूंगा कि आप आंखों से खेल लीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही नहीं है, आप बहुत ही ऑड लग रही हैं। कुछ कुछ हैं एक्ट्रेस जिनको डांस नहीं आता और वो मॉडल्स हैं, लंबी हैं, उन्होंने कभी सीखा नहीं है लेकिन अभी उनको करना पड़ रहा है, तो वो जबरदस्ती करते हैं, वो सीख लेते हैं, लगता है वो बहुत स्ट्रेस में डांस कर रहे हैं, वो मजे नहीं ले रहे हैं। कुछ कुछ हैं, ज्यादा नहीं है, आजकल के सभी जो पीढ़ी के जो आर्टिस्ट हैं वो सब सीख कर आते हैं, बट कुछ दो तीन ऐसे रहे हैं मेरे लाइफ में भी कि मुझे लगा कि उनका फुल बॉडी शॉट नहीं लूंगा, और अगर लूंगा तो वाइड लूंगा, भर भर के डांसर, ताकि वो जो गलतियां हैं छिप जाएं और उनको सिर्फ 4 या 5 या 8 काउंट का डांस सिखा के बंद करा दूंगा, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होने लगती है या वो याद करने लगता है कि नेक्स्ट क्या है और वो चेहरे पे दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग कट कट करके लेते हैं, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं चलता है कि ये कटा हुआ है, उनको लगता है कि ये लगातार निरंतर रूप से चला आ रहा है।
1: तो दोस्तों आप समझ गए ये जो कट कट की दुनिया है किस तरह से आपके सामने बट बट के आती है। बहरहाल ये एक चीज बहुत टेक्निकल थी। ध्यान से जो श्रोता इस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, जाहिर सी बात है जिनका डांस से बहुत लगाव होगा उन्होंने बड़े ध्यान से इसे सुना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपकी उस दुनिया में आते हैं जो आजकल आपको घेरे हुए, या ये कह लें कि जिस दुनिया में आजकल आप मदमस्त हैं अपने नशे में, टीवी की दुनिया। तो ये टीवी की दुनिया में अब जहां तक मुझे ध्यान आता है कि मैं भी काफी समय से देख रहा हूं, मुझे लगता है जब से शुरू हुई है ये दुनिया, रियलिटी शोज का जमाना जब से शुरू हुआ है, चाहे वो डांसिंग शोज हो या सिंगिंग शोज हो, गाने तो विविध भारती के ही बजते हैं।
0: करेक्ट, बहुत सारे गाने, एक जो अभी जिसके एटलीस्ट 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, वो गाना भी पुराना गाना है। हाँ। जो मैंने नौरा के साथ किया वो ज्यादा हिट हुआ है। बहरहाल मतलब अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 मिलियन व्यूज हो चुके हैं।
1: कौन सा?
0: भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, वाला गाना
1: अजनबी।
0: हाँ, अजनबी वही गाना लेकिन मॉडर्न स्टाइल में। आज की तारीख में डांस बहुत आगे बढ़ चुका है, तो लोगों को ये मजा आता है कि एक पुराना गाना और फिर मॉडर्न कोरियोग्राफी, उसका एक अलग ही मजा आता है।

0: आप बात कर रहे थे कुछ ऐसे डांसर्स की कि जिनकी बॉडी लैंग्वेज में डांस नहीं होता,
1: करेक्ट,
0: लेकिन फेस पे आंखों से खेल जाते हैं। लेकिन आपकी नजर में कौन सी हीरोइन बहुत अच्छी डांसर है?
1: आज के जमाने में जो बहुत अच्छे हैं, मैं जरूर कहूंगा कि माधुरी जी बहुत अच्छा करती है। आजकल के तारीख में आज की जो नई पीढ़ी है सभी अच्छा डांस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो इंजॉय नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे माधुरी और गोविंदा जी ना, जब वो कोरियोग्राफी सीखते भी है ना, तो वो अपना एक एलिमेंट लेके आते हैं, उनको खुद को इतनी खुशी महसूस हो रही है और वो खुशी दिखती है। दूसरे लोगों में लगता है कि नहीं, हमें इसको एक परफेक्ट बनाना है, तो वो परफेक्शन के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि उनको एंजॉय भी करना है।
0: परफेक्शन के चक्कर में वो रोबोट हो जाता है।
1: हाँ, तो वो मेरे बाल ऐसे हैं, अच्छा मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, अच्छा ये पोस्चर सही है, हाँ क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, या मैं सुंदर लग रहा हूँ, या मेरा एटीट्यूड सही है, कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं। ऑल्सो दे आर टू ट्रैप्ड इन दैट यू नो की परफेक्शन, तो कहीं ना कहीं दे डोंट रियलाइज की एक मेटाफिजिकल चीज होती है एनर्जी एंड वाइब। आकार ओके इज अ फिक्स्ड रूप, फिजिकल रूप है, लेकिन एक चीज है एनर्जी और वाइब, वो फिजिकल नहीं होती, वो मेटाफिजिकल होती है, वो लोग भाप लेते हैं। तो लोग जब आप देखते हैं, हाँ रूप तो देख लेते हैं, लेकिन इसकी जो वाइब है ना वो नहीं आ रही,
0: आत्मा नहीं पकड़
1: सुंदर है लेकिन आत्मा नहीं, मतलब सब ठीक है, सब अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो वाइब नहीं आ रही है, क्योंकि वो इंसान ने उसको अपना नहीं बनाया। एंड दैट इज वन थिंग दैट माधुरी जी एंड इवन गोविंदा जी डू, एंड दैट्स द वन थिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट देम।

0: You said Ritik, Shahid, all very good dancers. Ranveer also is very good dancer. और बहुत मेहनत भी करते हैं. तो it's nice to see the young dancers. It's just that 19-20 का फर्क है, लेकिन वो बहुत बड़ा फर्क हो जाता है.
1: सही कह रहे हैं.
0: हाँ, दूसरे एक जमाने हुआ करते, अगर आप पूछना चाहते हैं कि कौन अच्छे डांसर नहीं हुआ करते थे, कैसे कोरियोग्राफर्स छुपाते थे, द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट बीइंग अ गुड डांसर इज मीना कुमारी जी. शी वॉज नॉट अ ग्रेट डांसर, लेकिन उनके फिल्मों में, पाकिजा में, उनको नाचना है. तो कई गानों में ना उनकी एक डबल हुआ करती थी. कल्पना अय्यर जी ने बहुत सारे टाइम उनका डबल, यू नो, डबल के रूप में घूंघट में अगर वो गाना देखा है, वो कल्पना अय्यर जी ने किया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. दैट इज वन. मीना कुमारी जी का एक खास बात थी कि जो ये शरीर नहीं कर पाता था,
1: फेस करता,
0: ये कर पाता था. तो अगर आप शॉट्स देखेंगे ना, तो वो सिर्फ आंखों से खेल रही हैं और वो आंखों से बहुत कुछ कह जाती हैं. उनको सिर्फ एक इतने शोल्डर से और ये आंखों को देखने में और वो फीलिंग के साथ जो वो कर रही है ना, उसी में पैसा है. उसको ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है. तो उन्होंने समझ लिया कि ये मेरी शॉर्ट कमिंग से. इवन विद रेखा, शी यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड. रेखा इज नॉट अ ब्रिलियंट डांसर. उमराव जी ने बहुत नचवाया है, लेकिन इफ यू सी इन कंपैरिजन, वैजयंती माला इज नेक्स्ट लेवल. हेमा मालिनी जी इज नेक्स्ट लेवल. और ये साउथ की एक्ट्रेसेस है ना, उनके संस्कृति में यह है कि पहले डांस सीखो. और पेरेंट्स जबरदस्ती लड़कियों को और लड़कियों को सिखाते थे. कमल हसन भी जी सबसे बढ़िया डांसर थे, उन्होंने भी भरतनाट्यम सीखा था. तो जो साउथ के जो हीरोज या हीरोइंस थे, उनको ऑलरेडी वो सीख कर आया करते थे. तो उनको समझ थी. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज, आई वुड से, इज वैजयंती माला जी, श्रीदेवी जी, हेमा मालिनी जी. वहीदा रहमान इज नॉट फ्रॉम द साउथ, बट शी वाज, आई वुड से, ये चार ऐसे कलाकार थे.
1: एक और नाम है पद्मिनी.
0: पद्मिनी वो इसकी बहन थी ना. वैजयंती माला की बहन थी ना वो पद्मिनी. सो दे वर बोथ क्लासिकली ट्रेन्ड. साउथ की थी वो. सो दे वर वेरी क्लासिकली ट्रेन्ड. और वो क्या करते थे ना सर, ये अभी शायद लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जब साउथ से आई थी वैजयंती माला, वो अपने कोरियोग्राफर को लेकर आई थी कि अगर मैं डांस करूंगी तो इनके साथ करूंगी. तो इट वॉज वेरी क्लियर कि मैं, मेरी पहचान डांस है, तो मैं अपने टीम को ही लेकर आऊंगी. वेयर एज अदर्स डिडंट नो हाउ टू डांस.

दोस्तों, आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का दूसरा भाग। तकनीक के सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारी आज की इस सभा में शेष रहे और शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11:05 पर आप सुनिए श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू। इसके सूत्रधार होंगे कुंज बिहारी बिरमीवाला। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम सुरबहार होगा दिन में 12:00 बजे से। 12:30 पर आप सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। इसमें हमारी आज की कलाकार होंगी श्रीमती छोटू देवी एंड पार्टी। 1:00 बजे आप सुनिए हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

रोजगार 5 मिनट पर महिलाओं के लिए होगा कार्यक्रम महिला जगत, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा गर्मी के मौसम में फटी एड़ियों के लिए घरेलू उपाय। एक और चर्चा होगी आंवले के मुरब्बे का सेवन कितना लाभकारी। चर्चा होगी ग्वार पाठे से दूर करें त्वचा की टैनिंग। अलावा इसके आप सुनेंगे कुछ व्यंजन विधियाँ। मिड डे न्यूज का प्रसारण किया जाएगा दिन में 2 बजे से। 2 बजकर 15 मिनट पर आप सुनिए दोपहर समाचार।

दिन में 2:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम तराने नई पुरानी। 3 बजे हमारी प्रातःकालीन सभा का समापन होगा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे कार्यक्रम टिप्पणी के साथ, जिसमें आज आप सुनेंगे कार्यक्रम शेखावाटी की धड़कन। चर्चा होगी विश्व रक्तदाता दिवस पर। एक और चर्चा होगी गर्मियों की पुरानी यादें, चौपाल, छत पर सोना, हाथ के पंखे आदि। 5:55 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। 6 बजे आप सुनेगा हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे 6:05 पर। इन समाचारों को हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 6:10 पर सुनिए देशभक्ति फिल्में गीत। शाम 6:20 पर सुन सकते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत में समाचार। शाम 6:30 पर हिंदी में और शाम 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर से रिले करेंगे। जयपुर से आप सुनेगा जिले की चिट्ठी। हमारे ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी शाम 7 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे चर्चा मृदा में जिप्सम की उपयोगिता। चर्चा होगी विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। एक और चर्चा होगी अज्वला पशुओं के लिए वरदान कैसे। बाजार भाव मौसम की जानकारी के साथ साथ कल के कार्यक्रम भी इसमें बताए जाएंगे। आप सुनेंगे कुछ लोक रचनाएं। रात्रि 8 बजे सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। समाचार संध्या का अंक होगा रात्रि 8:45 पर। 9 बजे आप सुनिए News@9। रात्रि 9:15 पर सुन सकते हैं राजस्थानी लोक संगीत। रात्रि 9:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। 10 बजे आप सुनिए अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम को हम दिल्ली से रिले करेंगे। सभा के अंत में यानी रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली से रिले करेंगे।

हम आपको पुनः याद दिला दें, शाम 7 बजे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी में चर्चा होगी मृदा में जिप्सम की उपयोगिता। सामूहिक चर्चा होगी विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। एक और चर्चा होगी कृषि में संचार क्रांति का योगदान। साथ ही साथ आप सुनेंगे अजोला पशुओं के लिए वरदान कैसे, इस पर भी चर्चा।

0: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू। सूत्रधार कुंज बिहारी बिरमीवाला, तकनीकी सहयोग गुलजारीलाल मीणा, प्रस्तुति विनोद कुमार हल्किया और संयोजक कमलेश मीणा। तो आइए सुनते हैं फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हेलो चूरू में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड किए हैं। हमारे नए पुराने श्रोता लगातार इस कार्यक्रम में जुड़ते रहते हैं। आज का ये कार्यक्रम भी बहुत खास है। सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ मैं कुंज बिहारी। करते हैं शुरुआत आज

0: कार्यक्रम की फोन इन कार्यक्रम हेलो चुगरू। कार्यक्रम हेलो चुगरू।
1: हाँ जी कुंज बिहारी जी नमस्कार, राजेश गोठवाल निवेदन कर रहा हूँ।
0: हाँ राजेश जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम हेलो चुगरू में।
1: जी सर शुक्रिया, धन्यवाद।
0: राजेश जी कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: सर गाना है आएगी बरसात कहाँ जाएंगे।
0: चलिए राजेश जी शुक्रिया फोन करने के लिए, सुना लिया आपका आपकी पसंद का गाना।
1: जी सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: नमस्कार सर, ग्राम केवलारी तहसील जिन्नाहा जिला छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश सर।
0: एमपी से बोल रहे हैं आप?
1: जी सर।
0: स्वागत है आपका। आकाशवाणी चोरू सुनते हैं आप?
1: जी सर, AIR से सुनते सर।
0: जी हाँ, बहुत एक अच्छा सिस्टम हमारी सरकार ने उपलब्ध करवाया है कि हमारे दूर दूर तक के श्रोता हमसे जुड़ सकें, हमको सुन सकें, हम उनको सुन सकें, जान सकें एक दूसरे के बारे में। क्या करते हैं आप?
1: सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, ये NTPTCL कंपनी में, मतलब बिजली विभाग में।
0: जी जी।
1: तो सर मुझे गाना सुनना था।
0: बताइए।
1: दामिनी फिल्म का सर, कोई भी गाना।
0: ऐसा कोई गाना होता है जो हमें बार बार पसंद आता है, इसका क्या कारण रहता है, कुछ आप बताएंगे? आज आपने जैसे दामिनी फिल्म का गाना सुना है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा? आप
1: कारण कुछ नहीं सर, मेरी जो विशेष का नाम है उसका नाम भी दामिनी है असल में, तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि वो फिल्म मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और गाना भी अच्छा लगता है दामिनी फिल्म का।
0: ये बात है
1: जी
0: तो
1: सर।
0: ये

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: सर मैं विनोद सहारण गांव भंबाड़ा राजगढ़ तहसील से हूं और फिलहाल दिल्ली से बात कर रहा हूं।
0: दिल्ली में क्या कर रहे हैं विनोद जी?
1: सर मैं रक्षा मंत्रालय में सीनियर ऑडिटर हूं और पूर्व सब इंस्पेक्टर को रिजाइन करके इस वाली जॉब में हूं। और आपके अभी मैंने फेसबुक पे देखा तो बहुत दिन बाद है कि चूरू आकाशवाणी में बहुत शिद्दत से सुनता था जब स्कूल के टाइम में था, जब लोकेश सारस्वत हुआ करते थे यहीं स्कूल से मैं अपनी फरमाइशें भेजा करता था चूरू आपके आकाशवाणी में। अभी याद आया तो मैंने कॉल लगाया और मुझे उम्मीद है कि ये शायद रिकॉर्डिंग में शामिल होगा।
0: जी हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। सोशल मीडिया पर हमारे इस वीडियो को देखकर कुछ पुरानी यादें आपके ताजा हुई?
1: जरूर सर, जरूर जरूर। उस वक्त बिरनीवाला सर थे, लोकेश सारस्वत सर थे, मतलब मैं बहुत दिन बाद जुड़ पाया हूँ क्योंकि अभी दिल्ली में हूँ तो आकाशवाणी की फ्रिक्वेंसी इतनी आती नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत बार मैं सुनता हूँ और कुमार सानू के गाने मुझे उस वक्त भी बहुत पसंद थे और अब भी बहुत पसंद है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक फरमाइश यहाँ से पूरी की जाए आपकी तरफ से। सर
0: जरूर जरूर बताइए।
1: कुमार सानू का एक बहुत अच्छा गाना है जो हमेशा मतलब सुनते हैं तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना। और मैंने उनके गाने सुने हैं और बहुत सारे गाने याद कर लिए रेडियो के माध्यम से।
0: अच्छा,
1: जब स्कूल के टाइम में था तो मैं साथ में गाने की कोशिश करता था, पापा बड़े ही थे तो उनके पास रेडियो हर वक्त चलता रहता था। आकाशवाणी चूरू की फ्रिक्वेंसी थोड़ी बड़ी तो अच्छी रेंज पकड़ने लग गया था हमारे गांव के आसपास, क्योंकि उससे पहले तो मैं चूरू पढ़ा हूँ 2-3 साल लगातार, तो उस वक्त तो सुनता था लेकिन गांव में फ्रिक्वेंसी की दिक्कत होती थी। तो खेत में रेडियो को थोड़े ऊंचाई पे ले जाके, रेत के टीले होते हैं, ऊंचाई पे ले जाके सुनना, मतलब 5 बजे वाला प्रोग्राम आता था युवाणी, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता था सर। जैसे ही मैंने देखा आकाशवाणी चूरू के नंबर और सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे पूरा रिकॉल हुआ पीछे का मेरा पूरा टाइम, बड़ा अच्छा लगा सर।
0: आज इस कार्यक्रम के बहाने, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे बहुत पुराने श्रोता से मिल रहे हैं जिन्होंने लंबे समय तक हमें सुना है, और आज अपनी व्यस्तता के बीच आपने हमें याद किया है, समय निकाल कर हमें फोन किया है, ये बहुत अच्छी बात है। विनोद जी, आपने बताया कि आपने आपको गाने का और गानों को मतलब सीखने का काफी शौक है, तो हम चाहेंगे कि जो गाना आपने दिल है कि मानता नहीं का पसंद किया है, आप इसको थोड़ा सा तरन्नुम में गा

0: के सुनाएं तो हम भी
1: जी जी
0: हमारे श्रोताओं तक
1: बिल्कुल,
0: आपकी आवाज को पहुंचाएंगे।
1: मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है।
0: बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत ही शानदार। और ये गाना साजन फिल्म से है और आपने पसंद किया है दिल है कि मानता नहीं, तो हम कौन सा गाना सुने हैं आपको?
1: अरे जी सर, मैं बिल्कुल उसमें पूरा बह ही गया भावनाओं में। बिल्कुल ये साजन का है और दिल है कि मानता हूँ, दोनों मेरे को सिमिलर लगते हैं गाने। ये बेहतरीन रहेगा सर, साजन वाला बेहतरीन।
0: चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गायकी के साथ अपने गाने की पसंद।
1: धन्यवाद सर, थैंक यू सर,
0: थैंक यू।

0: कार्यक्रम हेलो चूरू
1: जी, मैं ना पहचाना सोता बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, मैं ग्राम अकबरपुर तहसील सुरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश से।
0: जी विदिशा जिले से बोल रहे हैं आप?
1: जी आपसे पहली बार बात हो रही है।
0: हाँ हमें भी लग रहा है कि हमारे नए श्रोता आज हमसे जुड़े हैं, और हमने कुछ हमारे पुराने श्रोताओं से अनुरोध किया था कि वो आज फोन न करें ताकि हमारे नए नए श्रोताओं को मौका मिल सके।
1: जी जी
0: हारून भाई क्या करते हैं?
1: जी खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन बारिश का इंतजार कर रहे हैं, सोयाबीन और मक्का बोएंगे।
0: मक्का बोएंगे
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। देखिए मक्का की जो फसल है वो उसका एक अलग अपना काम होता है, उसकी अलग एक पहचान होती है और उसकी अलग डिमांड रहती है।
1: जी मक्के का इरादा है, थोड़ा बहुत बोएंगे सोयाबीन।
0: मक्का और सोयाबीन दोनों का आप काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए हारून भाई, आप अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ आकाशवाणी चूरू को सुनते हैं, हमें इतनी दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से, तो ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा।
1: हमें क्या फोन कार्यक्रम ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें जोड़ते हैं।
0: सही बात है, फोन इन का अपना मजा है, खुद की बातचीत और उस बातचीत के बाद खुद की पसंद।

0: गाना भी सुनने को मिलता है।
1: जी जी।
0: कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: फिल्म है अंदाज का, सुना देना।
0: अंदाज का गाने का बोल बताएंगे आप?
1: जी गाने का बोल है, आएगा मजा बरसात।
0: चलिए, आपको बरसात का इंतजार है और बरसात से जुड़ा ही ये गीत आपने पसंद किया है। फोन के इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चूरू।
1: हाँ नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं प्रशांत कौशिक बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी प्रशांत जी,
1: काफी दिनों के बाद सर कॉल मिली है सर, मैं बड़ा खुश हूँ। और मेरी फरमाइश जो है वो गाना मुझे सुना दीजिए, दैया दैया लाज मोहिला के।
0: आपकी आवाज बड़ी जोशीली आवाज आ रही है, बहुत तेज आ रही है आवाज हमारे तक।
1: अच्छा सर सॉरी, मैं काफी दिनों से ट्राई कर रहा था, एक्चुअली सर कॉल ही नहीं लग पाती आज, बड़ा भाग चाहिए तो बड़ी मुश्किल में कॉल लगी है।
0: हाँ थोड़ा लाइन बिजी रहती है हमारे, बहुत सारे देखिए अनगिनत होता है हमसे जुड़ना चाहते हैं, समय कम रहता है।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: उस चीज में कहीं ना कहीं कठिनाई रहती है।
1: हाँ
0: प्रशांत जी, अभी क्या चल रहा है दिल्ली में?
1: दिल्ली में सर बस आप तो जानते हैं, बरसात होकर नहीं दे रही, गर्मी बहुत पड़ रही है सर, अभी परेशान
0: उमस और गर्मी से हाल बेहाल है।
1: हाँ हाँ जी, हाल बेहाल है सर।
0: तो उससे बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप, कुछ थोड़ा बताएंगे?
1: एक्चुअली सर मैं प्राइवेट कॉलेज में लाइब्रेरियन हूँ जी, तो आज मुझे समय मिला था, मैंने कहा था अपने सर को कॉल करूं और अपनी फरमाइश आप तक पहुंचाऊं, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे गाना सुनवा दिया जाए।
0: जी चलिए, आपको ये गाना सुनवा रहे हैं।
1: हाँ जी,
0: फोन करने के लिए शुक्रिया।

0: कार्यक्रम हेलो चूरू।
1: सर मैं दूध अखाड़ा से परमेश्वर बोल रहा हूँ।
0: परमेश्वर जी आप तो चूरू के आसपास से बोल रहे हैं?
1: बिल्कुल सर, चूरू के लगभग 20-22 किलोमीटर के अंदर है।
0: और हवा का अगर हम देखें तो हवा की दूरी तो बहुत कम है वैसे भी।
1: बहुत बढ़िया सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है।
0: परमेश्वर जी क्या करते हैं थोड़ा सा बताएंगे?
1: सर मैं काम करता हूँ, जो मकान बनते हैं उसका चिजे का काम करता हूँ, चुनवाई का। और आपसे बातें करें सर बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा पहली बार कॉल लगा, पहली बार ट्राई किया है।
0: बहुत स्वागत है आपका परमेश्वर जी। ये जो
1: और आप बताइए सर आप कैसे हो?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। ये हमारी जानकारी आपको कहाँ मिली? फेसबुक के माध्यम
1: से? मैं एफएम सुनता ही रहता हूँ आपका, जो दूर आकाशवाणी है वो सुनता रहता हूँ। मैंने कभी फोन नहीं लगाया, बाकी कार्यक्रम जो आप प्रसारित करते हो सारे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा सुनता हूँ सर।
0: प्रोफेसर जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग के लिए कैसे पता चला आपको?
1: सर मैं अभी अभी गाना सुन रहा था, जो आपका डायबिटीज से लेकर 3 बजे तक आता है ना, नए पुराने तराने।
0: जी हाँ
1: ये सुन रहा था। इस पर आपको सूचना मिली थी, आपने दी थी कि 3 बजे रिकॉर्डिंग होगी हेलो चूरू के लिए।
0: अच्छा
1: सर मैंने नंबर आपको याद रख लिया, 253-015-253-644।
0: दो बार बताए थे हमने नंबर इसीलिए।
1: हाँ दो बार बताए सर।
0: और देखिए हमने फेसबुक पर पोस्ट भी लगाई थी, लेकिन बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो सोशल मीडिया पर नहीं है, वो सिर्फ रेडियो पर हमें सुनते हैं, तो उनके लिए
1: सर मैं तो रेडियो सुनता हूँ, सोशल मीडिया पर नहीं रहता हूँ। मेरे पास तो वो कीपैड वाला फोन है सर, बहुत ही सुनता हूँ रेडियो, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको जो प्रोग्राम प्रसारित करते हो बहुत अच्छा लगता है।
0: प्रोफेसर जी एक छोटी सी जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक मकान बनाता है अपना, उस मकान की उम्र कितनी होती है, कितने साल तक उस मकान का जो जैसे कहते हैं कि 100 साल की नींव होती है, तो क्या मानते हैं आप?
1: सर हमने तो बूढ़े बूढ़े से सुना है कि 100 साल की नींव रखी जाती है, रखते हैं, लेकिन सर पता नहीं अब वो जो ऐसा ही सामान आ रहा है इसमें लगाते हैं कितनी उम्र होती है क्या पता सर, लेकिन 100 वर्ष तो मान के चलते हैं।
0: नहीं आप मानते हैं ना कि अगर हम उसमें अच्छी सामग्री अच्छा मटेरियल अगर हम काम में लें तो?
1: अच्छी सामग्री लगे अच्छे जो मसाला लगे तो सर 100 साल तो होगा, 100 से ज्यादा भी हो सकता है। जो पुरानी इमारतें हैं वो तो जो 500-500 वर्ष से खड़ी है, उसमें न सरिया लगा है ना कोई सीमेंट की, पत्थर से चूने से बनी हुई है।
0: अद्भुत कलाकारी का उस वक्त एक अलग दौर था, और आज भी देखिए अगर हम

0: जो बनाने वाला भी अगर पूरी अपने मन से बनवाए और जो कारीगर है वो भी अपने मेहनत से अगर काम करे,
1: तभी होता है, मन से बनाते हैं, मन से अगला बनवाता है तभी होता है।
0: बहुत अच्छी बात है परमेश्वर जी। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गीत सुनना चाहता हूँ सर, अंधा कानून पिक्चर का है, हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना।
0: वाह बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा संदेश
1: जी की आवाज है, बहुत अच्छा लगता है सर।
0: थैंक यू परमेश्वर जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू।

0: कार्यक्रम हेलो
1: चलो। हेलो जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: भंवर सिंह मैडम बात कर रहा हूँ सर, अमेरिका से।
0: भंवर सिंह जी स्वागत है, लंबे अंतराल के बाद आपका फोन आया आज।
1: जी 7 फरवरी के बाद आज कॉल लगाने का टाइम मिला था मुझे।
0: अच्छा, समय भी नहीं मिला और शायद आपने
1: देखिए जी बिल्कुल गैप का तो मेरा रहता ही है कि भाई कॉल जो है वो एक गैप से किया जाए। जैसा आपने लास्ट टाइम बात हुई तब भी मैंने यही कहा था कि अगर रेगुलर गैप से कॉल होगा तो फिर कहने को भी कुछ होगा, बाकी जो अन्य श्रोता है उनको भी मौका मिलेगा।
0: सही बात है। देखिए, आपने फरवरी से जून में 4 महीने के अंतराल से फोन मिलाया है, एक बहुत बड़ा अंतराल है।
1: और इससे पहले जब फरवरी में लगा था वो भी लगभग 4 महीने हुए गैप के बाद ही लगा था।
0: इसका मतलब साल में 3-4 फोन लगते हैं आपके हैं।
1: हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल।
0: एक अच्छे प्रबुद्ध श्रोता हैं आप हमारे और हर बात को समझते हैं, तो हम इस बात के आपकी बात का और आपके विचारों का सम्मान करते हैं।
1: थैंक यू।
0: भंवर सिंह जी, अब तो बच्चों की छुट्टियां हैं वो भी खत्म होने जा रही है
1: जी,
0: और स्कूल की भी तैयारियां शुरू हो गई है, आप क्या कर रहे हैं इस समय?
1: अभी तो जो जनगणना काम चल रहा है तो उसमें अपनी जो जिम्मेदारी है वो मैं निभा रहा हूँ। वो काम अभी लगभग कंप्लीट किया है, नजीर नक्शा जमा करवाया है, तो वो काम उस काम में बिजी था इतने दिन। तो
0: अच्छा, तो इसमें कोई कठिनाई, कोई परेशानी, आपका कोई अनुभव बताएंगे?
1: सर काम करने का अगर मन से काम करते हैं तो बहुत आनंद आता है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर काम को मुश्किल समझेंगे तब दिक्कत आएगी, अगर एंजॉय करते हुए उसको और रिलैक्स मूड में अगर काम करेंगे तो अगर काम मुश्किल है तो वो भी इजी हो जाएगा, अपने लिए
0: आसान हो जाएगा।
1: जी जी जी।
0: देखिए, जनगणना का काम हमारे पूरे राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण से जुड़ा हुआ काम है और इतने महत्वपूर्ण काम में आपने अपनी सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है हमें जान के। कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: गीत की बात अपनी चली है तो मैं थोड़ा

0: सर अभी जैसे आकाशवाणी के 90 वर्ष जो है वो एक अपना प्रोग्राम चला था, तो उसमें जैसे अक्सर ये होता है कि आकाशवाणी का और मेरा जो रिलेशन है वो कैसा है, तो उसी पर थीम पर मैं कहूंगा ये गीत है, फिल्म सपने साधन कैसे है, और गाने के बोल है शिकवा करूं या शिकायत करूं पर मैं तुझी से मोहब्बत करूं।
1: वाह वाह वाह। देखिए शिकवा शिकायत किसी भी रिलेशन में हो सकती है और ये एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, और आकाशवाणी का जो प्रसारण है और हमारे श्रोताओं का भी एक आपस में एक ताना बाना है, एक इस तरह रिश्ता है, अनजाना सा रिश्ता है, और उस रिश्ते में भी कई बार जैसे किसी का नाम शामिल नहीं होता, किसी की फरमाइश पूरी नहीं होती, तो वो एक शिकायत सी रह जाती है, लेकिन आपने अपनी बात इस गीत के माध्यम से रखी है, अच्छा लगा।
0: जी सर, एक एक एक छोटा सा जैसे कहते हैं ना, अगर कहीं कोई मनमुटाव या कुछ ऐसी छोटी मोटी बात ना हो ना, तो इसका मतलब ये है कि वो रिश्ता जो है वो दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है।
1: सही बात।
0: और जहाँ दिल से रिश्ता निभाया जाएगा ना, तो वहाँ इस तरह की चीजें आती रहेंगी, उनको इग्नोर करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, और जो अपनापन है वो यूं ही बना रहेगा।
1: बहुत बढ़िया बात आपने कही, बहुत अच्छा संदेश, एक सामाजिक संदेश भी आपने दिया है इस बहाने। मोहम्मद सिंह जी, बात करके बहुत अच्छा लगा, सुनवा रहे आपको आपकी पसंद का ये गाना।

0: कार्यक्रम हेलो चोरू।
1: हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मुकेश कुमार बात कर रहा हूँ।
0: मुकेश जी कहाँ से?
1: लुट्टू गांव, लुट्टू से।
0: लुट्टू से बोल रहे हैं?
1: हाँ जी।
0: मुकेश जी कौन सा गाना सुनेंगे?
1: ये शेर, मैं शेरवान के आऊँगा सर।
0: दीवाना मुझसा नहीं।
1: हाँ, मेरा वादा है, मैं शेरा ये,
0: हमारा ये वादा है कि हम इस गाने को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: ये सर, आप जो भी कार्यक्रम आते हैं ना, वो हम जरूर सुनते हैं सर।
0: सभी कार्यक्रम सुनते हैं
1: आप आते हो उस कार्यक्रम को हम जरूर सुनते हैं। आपके मोबाइल पर फोटो देखिए सर।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने फोन किया, अपनी पसंद बताई।

0: हेलो,
1: हेलो चोरू
0: कार्यक्रम हेलो चोरू में आपका स्वागत है।
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं महेंद्र बोल रहा हूँ, गांव मोड़, तहसील तारानगर, जिला सूरत।
0: नाम यूं सुना सुना सा लग रहा है। महेंद्र जी, पहले भी फोन किया है आपने?
1: नहीं सर, ये फोन मिला ही नहीं कभी भी, आज पहली बार मिला है। 1998 की बात,
0: 27-28 साल की बात कर रहे हैं आप, बहुत पुरानी बात हो गई।
1: हाँ
0: है तो
1: बिल्कुल, मैं मतलब 8 क्लास में पढ़ता था, आकाशवाणी सुनता था, FM चूरू।
0: एक
1: उसके बाद में
0: हाँ महेंद्र जी, एक हमारे श्रोता के नाम हम शामिल करते थे मोरतल से, फांडन बोल के, तो
1: देवीलाल जी फांडन,
0: हाँ, मुझे याद आ रहा है कि हम उनके पत्र को शामिल करते थे। आजकल तो पत्रों का सिलसिला
1: सर मेरा भी कई बार मैं भी भेजता था पत्र। और देवीलाल जी हैं, वो अभी फौज से रिटायरमेंट हो गए और तारानगर रह रहे हैं,
0: तो उनको भी आप बोलिए ना कि आकाशवाणी चूरू वाले याद कर रहे हैं वे आपको।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: जब भी
0: देखिए
1: मिलेंगे मैं जरूर
0: हमारे
1: बोलूंगा।
0: श्रोता हमारे लिए बहुत कुछ हैं, और उन श्रोताओं से अगर हम फिर से जुड़ते हैं तो हमारे लिए भी एक फख्र की बात है, एक खुश होने की बात है।
1: बिल्कुल सर,
0: आप
1: सही
0: कह रहे हो
1: बात
0: कि
1: है।
0: आपने इतने लंबे समय तक हमसे बातचीत करने का इंतजार किया है, तो ये इंतजार कहीं ना कहीं आनंददायक हो सकता है। तो
1: कभी भी कॉल नहीं लगा, आज पहली बार लगा है।
0: महेंद्र जी, तब तो बहुत अच्छा सा गीत सुनेंगे आप।
1: गाना सुना दो, पंछी नदियां पवन के झोंके।
0: रिफ्यूजी फिल्म का ये गाना हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आप फोन इन के साथ साथ हमारे जो अन्य कार्यक्रम हैं उनको भी आप पूरा सुने, उनमें भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाएं।
1: बिल्कुल सर।
0: चलिए महेंद्र जी, शुक्रिया फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो शोरूम में आपका स्वागत है।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं जीशान वारसी बात कर रहा हूँ, जिला बरेली यूपी से।
0: नाम सुना सुना सा लगता है, क्योंकि जब भी आपकी फरमाइश हमारे जो कार्यक्रमों में आती है ये नाम अक्सर हम सुनते रहते हैं, और आज
1: बिल्कुल
0: आपसे बात भी
1: बिल्कुल
0: हो रही है।
1: बिल्कुल सर।
0: जीशान भाई, कब तक इस कार्यक्रम के लिए आप ट्राई कर रहे थे, कितनी देर से कर रहे थे?
1: सर मुझे टाइम तो तकरीबन मैं 3 बजे से लगातार ट्राई कर रहा हूँ, और उससे पहले भी अगर कहा जाए तो करीब 5-6 महीनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ सर।
0: तब तो काफी आपने एक बड़ा, यूं कहते हैं ना कि लकी ड्रॉ जीत लिया है आपने।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत खुशी हो रही है सर।
0: बहुत बढ़िया बात है। देखिए जिसन भाई, जो हमारे श्रोता है वो सबका नंबर आए, सब श्रोता हमसे जुड़े, ऐसी हमारी तमन्ना रहती है, ताकि जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का मजा है वो उसी प्रकार बना रहे।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल।
0: क्या करते हैं जीशान भाई, थोड़ा बताएंगे?
1: सर मैं टेलरिंग का काम करता हूँ, लेडीज टेलर हूँ, और साथ में आकाशवाणी केंद्रों से कनेक्ट रहता हूँ। आपके चुरू के अलावा भी बहुत सारे केंद्र सुनता हूँ मैं।
0: आकाशवाणी के कौन कौन से रेडियो सुनते हैं आप?
1: सर आकाशवाणी के यहाँ आकाशवाणी बरेली है, रामपुर है, देहरादून, नजीबाबाद, चोरू चोरू हो गया आपका, और अल्मोड़ा है, वृंदावन है, बहुत सारे केंद्र सर जिनका नाम ले पाना बहुत मुश्किल है।
0: अच्छा, काफी आप स्टेशन से जुड़े हुए हैं, तो इनको किसी स्टेशन का एक एक कार्यक्रम आप सुनते हैं, या मतलब जो आपको मन भाता है वही सुन लेते हैं, या कोई फिक्स कार्यक्रम होता है?
1: मैं आपको बताना चाहूंगा सर, एक टाइम में कई केंद्रों से बहुत सारे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं। तो सर जो ज्यादा प्रोग्राम सुनते हैं, जो ज्यादा हमारे मन को भाते हैं, उन्हीं प्रोग्रामों को सुन पाते हैं सर।
0: आकाशवाणी शुरू के कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप?
1: सर एक तो आप वो इंस्टा लाइव जो प्रोग्राम करते हैं,
0: इंस्टेंट फरमाइश,
1: बहुत जी जी जी, क्योंकि उसमें आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रहती है, प्रोग्राम में 4 चांद लगा देती है, और आपका जो मैसेज शामिल करने की जो स्पीड है वो कमाल धमाल है सर।
0: देखिए कमाल तो हमारे श्रोता डाते हैं, हमारे श्रोता, हम 5 मिनट पहले उस पोस्ट को रिलीज करते हैं, 2:30 बजे कार्यक्रम होता है, 2:25 पर वो पोस्ट आती है, और तुरंत हमारे श्रोता जुड़ जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, हम रियल टाइम चेक करते हैं उस कार्यक्रम के बहाने कि कितने श्रोता हमें उस वक्त लाइव सुन रहे हैं।
1: और सर मैं एक बात और कहना चाहूंगा
0: जी,
1: सर मेरे बड़े भाई हैं करूला मुरादाबाद से अयूब खान, और मैं सिंधौली मीरगंज जिला बरेली से जीशान भारती हूँ। हम लोगों ने दोनों ने एक बड़ा अच्छी मुहिम छेड़ रखी है, हम आकाशवाणी केंद्रों को बारी बारी से सम्मानित कर रहे हैं सर।
0: अच्छा,
1: क्योंकि आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे हुए हैं।
0: हमारे श्रोताओं का प्यार है, हम आपके सम्मान की बहुत कदर करते हैं, बहुत आपके लिए इस बात के हम थैंकफुल हैं। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर आज मुझे गीत सुनना है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और ये गीत डेडिकेट है आकाशवाणी चूरू और तमाम सुनने वाले रेडियो दोस्तों को।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जीशान भाई, आपकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी है और गीत भी आपने बहुत प्यारा सुना है, कि जो आकाशवाणी चूरू है उसके बिना हमारी पार नहीं पड़ने वाले।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: थैंक यू फोन करने के लिए।

0: कार्यक्रम हेलो चुरू।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं जबलपुर एमपी से अशोक जी बोल रहा हूँ। कुल बिहारी जी है
0: जी।
1: कैसे हैं सर आप?
0: बहुत बढ़िया है अशोक भाई।
1: मैं भी ठीक हूँ सर, बहुत दिनों बाद ही फोन लगाया।
0: अच्छा,
1: हो गया।
0: कितने दिन हो गए फोन लगाए आपको?
1: महीना हो गया सर।
0: बहुत अच्छी बात है अशोक भाई। देखिए, थोड़े थोड़े दिनों से हम बात करते रहे ना, तो हमारे कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है।
1: जी सर, ये इंस्टाग्राम वाला फेसबुक वाला कब तक आता है?
0: ये महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को आता है, दिन में 2:30 बजे से।
1: अच्छा,
0: थैंक यू
1: सर, बता दीजिए। गाना सुनवा दीजिए, टाइम आपका खत्म हो रहा
0: है। कौन सा गाना?
1: तू कितने बरस
0: सुनवा रहे हैं आपको? पसंद का गाना।
1: Thank you.

0: कार्यक्रम हेलो चोरू
1: जी नमस्कार, मैं सर से राकेश शर्मा बोल रहा हूँ। सर
0: राकेश जी, आज के इस अंतिम फोन में आपका स्वागत है।
1: जी सर धन्यवाद।
0: तो काफी देर हो गई ट्राई करते हुए।
1: जी 10-15-20 मिनट हो गए सर।
0: राकेश जी अक्सर बात करते रहते हैं, कौन से विभाग में कहाँ क्या काम करते हैं?
1: सर मैं तो नगर पालिका डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, संहिता पर काम करता हूँ, इसाऊ नगर पालिका।
0: तो राकेश जी ये जो नगर पालिका के काम होते हैं उसमें बहुत सारी सेवाएं पालिका प्रशासन से जुड़ी हुई होती है, और इन दिनों एक विशेष अभियान है शिविर का है, वो भी चल रहा है। तो क्या कुछ
1: वो सर कल से ही चालू हुआ है।
0: तो क्या कुछ

0: उसमें लोगों को लाभ मिल सकता है, क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता है वो इस बात से अनभिज्ञ भी हैं।
1: सर अभियान का मतलब ये है कि जैसे रोजमर्रा के अंदर जो पट्टों की रेट होती है ना,
0: जी
1: उस रेट में सरकार कुछ रिबेट देती है।
0: अच्छा
1: तो उस जैसे अभियान की अवधि में अगर कोई आदमी पट्टे के लिए अप्लाई करेगा या पहले से अप्लाई किया हुआ है तो राशि जमा पेंडिंग है उसकी, तो वो इस छूट के दायरे में आता है तो उसको ये छूट मिल जाएगी, तो उसको क्या है फायदा हो जाएगा।
0: जी सबसे पहले तो पट्टा
1: हाँ
0: जारी होता है, उसमें अगर आप आवेदक हैं
1: जी
0: और आप अपनी उस पूरी पात्रता को रखते हैं तो उसमें आपको पट्टा मिल सकता है।
1: हाँ जैसे अभी छोटे भूखंडों पर अच्छी 50% की छूट मिल रही है
0: जी
1: और उससे थोड़े बड़े हैं उस पर 40% मिल रहा है और ज्यादा बड़े उनको 25% की छूट मिल रही है।
0: सरकार का यही उद्देश्य होता है मेरे ख्याल से कि किसी अभियान के बहाने लोगों को लाभान्वित किया जाए, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, उनके अधिकारों को जो उन तक पहुंचाया जाए। राकेश जी बहुत अच्छी बात आपने बताई, और नगर पालिका में आप काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ साथ में आकाशवाणी चूरू से भी आपका पुराना प्रेम है, तो
1: जी
0: कौन सा
1: सर
0: गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: फिल्म बाजार 1982 की है एक फिल्म, उसमें तलत महमूद और लता जी का एक है गजल, फिर चिड़ी बात रात फूलों की।
0: तलत अजीज है शायद,
1: हाँ तलत अजीज साहब होंगे।
0: बहुत अच्छा गीत आपने राकेश जी पसंद किया है और फोन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनवा रहे आपको अपने
1: धन्यवाद
0: पसंद
1: सर।
0: का ये गाना।

श्रोताओ, ये था आज का कार्यक्रम हेलो चूरू। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर और हमारे ईमेल्स के माध्यम पर। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग रहा गुलजारी लाल मीणा और जय सिंह डोडी का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अमित कुमार सैनी। अब हमें दे अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम हेलो चूरू, सूत्रधार कुंज बिहारी बिरमीवाला, आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुरबहार।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीतों और गजलों का प्रोग्राम सुरबहार। कलाकार थे चंदन दास। हम आकाशवाणी के चूरू के अंदर से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कलाकार श्रीमती छोटू देवी एंड पार्टी।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: पॉलीथीन थैलियों के स्थान पर कपड़े एवं जूट के थैलों का इस्तेमाल करें, पर्यावरण बचाएं।
1: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
0: अशुद्ध जल को उबालने से उसको प्रदूषित करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं।

0: स्वामी विवेकानंद ने कहा था, कुछ सच्चे ईमानदार और ऊर्जावान पुरुष और महिलाएं जितना कोई भीड़ एक सदी में कर सकती है उससे अधिक एक वर्ष में कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का एक बजने वाला है। अब आप सुनेंगे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और किफायती बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद लोगों को इलाज की सुविधा मिल रही है, वहीं जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की कीमतें कम होने से मरीजों को लाभ हुआ है, साथ ही मेडिकल कॉलेजों और सीटों की संख्या बढ़ने से डॉक्टर बनने के अवसर भी बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि सरकार

0: स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आगे भी लगातार काम करती रहेगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। सुरक्षित रक्त के महत्व के बारे में जागरूकता लाने और स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं रखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। उन्होंने रक्तदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने भी लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान का आह्वान किया है। इधर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सामाजिक संगठनों की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीईटी 2026 आज आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे से शुरू हुई ये परीक्षा दोपहर 12 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद एंट्री दी गई। परीक्षा में कुल 1,26,600 परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। परीक्षा की निगरानी के लिए जयपुर में एक क्षेत्रीय केंद्र में विशेष कमांड सेंटर बनाया गया। वहीं संवेदनशील केंद्रों की निगरानी एआई आधारित सॉफ्टवेयर के मदद से की गई। जालौर जिले के एलाना गांव के पास बिशनगढ़ सायला रोड पर आज एक सड़क हादसे में एक महिला की मृत्यु हो गई और 5 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को जालौर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दौसा के आगरा बाईपास कट पर आज तड़के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जयपुर आ रही रोडवेज आगे चल रहे ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। ये दुर्घटना एक निजी बस के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुई। हादसे में करीब 40 लोग घायल हो गए। घायलों को भरतपुर और अन्य स्थानों पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। बस में सवार ये सभी लोग भरतपुर के रहने वाले थे और सौरोंजी जा रहे थे। राज्य सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर में एक फर्म पर कार्रवाई करते हुए 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की है, जबकि 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल मौके पर ही नष्ट करवाया गया। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों में कई उल्लंघन पाए गए, जिसके चलते फर्म के खिलाफ नोटिस जारी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

0: सभी श्रोता बहनों का स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में, और मैं हूं आपकी सखी मंजू,
1: और मैं हूं संगीता रोहिला। तो स्वीकार करें हमारा
0: नमस्कार बहनों। जीवन

0: की भागदौड़ में हम अक्सर अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखते रखते अपने स्वास्थ्य और अपनी देखभाल को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही जीवन को खुशहाल बनाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा मंजू आपने। खासकर मौसम बदलने के साथ हमारे शरीर और त्वचा को भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। गर्मियों का मौसम अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आता है। इसमें तेज धूप, गर्म हवाएं, त्वचा की रूखापन और शरीर में पानी की कमी जैसी समस्याएं इस मौसम में आम हो जाती है।
0: इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य और सुंदरता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण विषय पर तो आधारित है ही। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और उपयोगी उपायों की, जिन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपनी सेहत और त्वचा का बेहतर ख्याल रख सकते हैं।
1: जी बहनों, तो आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या क्या खास होने वाला है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्मियों के मौसम में पटी एड़ियों की समस्या और उससे बचने के घरेलू उपायों के बारे में। गर्मियों में पैरों की त्वचा को भी देखभाल की जरूरत होती है और छोटी छोटी सावधानियां हमें इस परेशानी से बचाती है।
0: इसके बाद हमारे कार्यक्रम में अगला विषय होगा आंवले के मुरब्बे का सेवन और इसके स्वास्थ्य लाभ। आंवला हमारा पारंपरिक खानपान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और इसके पोषक गुणों के बारे में हम सब जानते हैं और इसी की जानकारी हम साझा भी करेंगे।
1: जी बहनों, और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे ग्वार पाठा यानी एलोवेरा से त्वचा की टैनिंग को कम करने के उपायों के बारे में। गर्मियों में धूप का असर त्वचा पर दिखाई देने लगता है, ऐसे में त्वचा की सही देखभाल कैसे की जाए, इस विषय में आज हम चर्चा करेंगे।
0: तो बहनों, आज का पूरा कार्यक्रम स्वास्थ्य, सुंदरता और अपनी देखभाल से जुड़ी छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को समर्पित है, क्योंकि स्वस्थ रहना केवल बीमारियों से दूर रहना नहीं बल्कि खुद को बेहतर महसूस कराना भी है।
1: बिल्कुल बहनों, और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि महिला जगत के माध्यम से हम आपके लिए ऐसी जानकारी लेकर आए जो आपके रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी साबित हो।
0: तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे फटी एड़ियों की देखभाल, आंवला के मुरब्बे के फायदे और ग्वार पाठे से त्वचा की कैसे देखभाल की जा सकती है इस पर।
1: लेकिन उससे पहले बहनों, सुनते हैं एक सुंदर सा गीत जो आपके रविवार को और भी खुशनुमा बना देगा।

0: तो बहनों, आपने सुना एक सुंदर सा गीत। तो उम्मीद है ये गीत आपके मन में नई ऊर्जा भरकर लाएगा। अब बढ़ते हैं आज के पहले विषय की ओर। गर्मियों का मौसम आते ही जहाँ एक और तेज धूप और गर्म हवाओं से परेशानी होती है, वहीं दूसरी ओर त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं भी हमारे सामने आने लगती हैं। इन्हीं में से एक आम समस्या है फटी हुई एड़ियाँ।
1: जी मंजू, बिल्कुल सही कहा आपने। जो अक्सर हम चेहरे की त्वचा को बहुत ध्यान से रखते हैं, उसका ध्यान रखते हैं और पूरी देखभाल हम अपने चेहरे की करते हैं, लेकिन पैरों की देखभाल को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। गर्मी, धूल मिट्टी, शरीर में पानी की कमी और त्वचा के रूखेपन के कारण एड़ियां हैं वो फटने लगती हैं और फटी हुई एड़ियां हैं बहुत गंदी लगती हैं।
0: बिल्कुल। तो आज हम अपनी बहनों के साथ साझा करेंगे कुछ आसान घरेलू उपाय जिनकी मदद से पैरों की जो देखभाल है उसे अच्छी तरह से करा जा सकता है।
1: जी बहनों, अब बात करते हैं ये जो घरेलू उपाय हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले रात को सोने से पहले पैरों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं। एड़ियों पर नारियल तेल या कोई भी सरसों का तेल ले सकते हैं, या कोई अच्छा मॉइस्चराइजर है वो लगाकर आप अपने पैरों की हल्की मालिश करें। इससे त्वचा में नमी बनी रहेगी और एड़ियां फटेंगी नहीं।
0: बिल्कुल। और इसके अलावा जो और उपाय हैं वो उनमें एक ये भी हो सकता है कि गुनगुने पानी में थोड़ी देर पैरों को भिगोकर रखें। इससे जो त्वचा है वो मुलायम हो जाती है और सूखी मृत जो त्वचा है उसको हटाने में मदद मिलती है और उसे आसानी से आप हटा सकते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, इसके साथ ही एक और उपाय है जो हम बता देते हैं आपको, वो है एलोवेरा जेल। ये भी त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद कर सकता है। साफ एलोवेरा जेल को एड़ियों पर लगाया जा सकता है। इससे एड़ियां नरम मुलायम बनेगी और मुलायम और नरम रहेगी तो एड़ियां फटेगी कम।
0: बिल्कुल। जिस तरह से हम देखते हैं कि नारियल का जो तेल है वो बहुत उपयोगी होता है, ना सिर्फ बालों को बढ़ाने में बल्कि कई बार जब शरीर पर कहीं कोई फुंसी का दाग रह जाता है तो हम नारियल का
1: बिल्कुल
0: तेल इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहीं जल जाता है तो उस पर नारियल का तेल लगाया जाता है जिससे कि ठंडक मिले। तो उसी तरह से नारियल का तेल और शहद जो है, अगर इन दोनों को मिलाकर और जो एड़ियों की फटी हुई त्वचा है उस पर लगाया जाता है तो इससे क्या होता है कि शहद जो है वो नमी देता है और जो नारियल है, नारियल का तेल है, वो उस नमी को बरकरार रखने में मदद करता है। इसलिए इन दोनों को मिलाकर अगर एड़ियों में लगाया जाए तो जो एड़ियां फटी हैं वो कुछ धीरे धीरे, अगर लगातार हम इसे लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में सही हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बहनों, ये जो घरेलू उपाय है ये तभी कारगर होंगे जब हम अपने पैरों की सफाई की तरफ ध्यान देंगे। बाहर से आने के बाद पैरों को धोकर अच्छे से सुखाना चाहिए, क्योंकि अगर पैरों को नहीं

0: होते हैं तो धूल मिट्टी लगी हुई रह जाती है, और उसी धूल मिट्टी के कारण जो एड़ियां हैं वो फटने लग जाती हैं, क्योंकि धूल मिट्टी है वो त्वचा को रूखा बना सकती है। इसीलिए जैसे ही घर पर आए तो अपने पैरों को अच्छे से धोएं और उसको अच्छे तौलिए से साफ करें।
1: बिल्कुल। और ये चीज़ें तो हमने बता दी संगीता कि किस तरह से आप किन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कौन से तेल हैं या क्या मॉइस्चराइज़र, जैसे आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करके हम एड़ियों को नरम बनाए रखें तो वो कम फटेगी, लेकिन साथ ही साथ पैरों को आरामदायक और सही फिटिंग वाले चप्पल जूते पहनाने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार हमारी बहनें क्या होती है, जल्दबाजी में होती है तो चाहे उनके साइज़ की चप्पल हो ना हो उसे पहने रखेंगी, घर में रहती हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा एड़ियाँ फटने के बावजूद भी वो घर में चप्पल नहीं पहनती हैं। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें कि पैर जो है उसके लिए चाहे आप चप्पल जूता सैंडल कुछ भी जो भी आप पहन रहे हैं वो उसको आरामदायक फील कराना चाहिए, और साथ ही साथ इस तरह के जूते चप्पल पहनने चाहिए जो कि एड़ियों पर ज़्यादा दबाव ना बनाए।
0: बिल्कुल बहनों। और इसके साथ ही ये तो सारे उपाय थे जिसमें हम अपने जो एड़ियां हैं उनको सही कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो उपाय है वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, क्योंकि गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर में पानी की अगर कमी हो जाती है तो इससे त्वचा है वो रूखी हो जाती है, और रूखी होने के कारण वो बार फटने लग जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पानी, तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और अपने शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
1: और ये सारे उपाय अगर आप करती हैं तो जो सूखी हुई त्वचा या मृत त्वचा हम जिसको नाम दे रहे हैं जो निकलती है उसके लिए आप कम से कम हफ्ते में 2 बार हल्की स्क्रबिंग ज़रूर करें, जिससे कि वो जो सूखी त्वचा है पूरी हटाई जा सके और जो आपके पैर हैं वो ज़्यादा अच्छे से जो फटे हुए हैं एड़ियां हैं जो भी हैं वो फिर से रिकवर कर सकें।
0: बिल्कुल बहनों। रात में पैरों पर तेल या क्रीम लगाने के बाद कॉटन के मोजे पहन सकते हैं, जिससे नमी बनी रहेगी और इससे एड़ियां हैं वो बिल्कुल नहीं फटेगी। जब हम पूरे ध्यान रखेंगे इस तरह का तो एड़ियां नहीं फटने की गुंजाइश है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल। और अगर हम अपनी त्वचा की बात करते हैं, हमारी स्किन की बात करते हैं, हमने एड़ियों पे ऊपर से क्या हमें अप्लाई करना है उसकी बात कर ली, हमने ये भी बात कर ली कि किस तरह से सही जूते चप्पल सैंडल का चुनाव कर कर भी हम अपनी एड़ियों को फटने से, उनके ऊपर दबाव कम डाल के फटने से बचा सकते हैं, लेकिन कई बार ये जो समस्या होती है ये ऊपरी ना होकर अंदरूनी होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने खान पान पर ध्यान देना है, संतुलित आहार लेना है, फल लेने हैं, सब्जियां लेने हैं, और इन सब का जब आप भरपूर मात्रा में सेवन करते हैं तो आपकी जो त्वचा है, आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो त्वचा पर भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, उस पर भी जो आप खा रहे हैं उसका असर, कहते हैं ना कि जो हम खाते हैं उसका असर हमारे चेहरे पर ज़रूर दिखता है, तो अगर आप अच्छा खाते हैं तो उसी तरह की तासीर आपके चेहरे पर आती है, आपकी स्किन पर भी उसका ग्लो दिखाई देता है। तो जो हमारी एड़ियां है ये भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है, जिस तरह से चेहरे की चमक पर हम ध्यान देते हैं उसी तरह से हम एड़ियों के लिए भी अच्छा खान पान चुने, संतुलित आहार लें, फल सब्जियां खाएं, और अगर ये करते हैं और साथ में ही हम जो बाहरी हमारे रेमेडीज हैं उनको यूज करते हैं तो दोनों को मिलाकर हम देखते हैं कि अगर इस तरह की कोई समस्या गर्मियों में हो रही है तो वो खत्म हो सकती है।
0: जी बहनों, कई बार होता है कि हम ये सारे घरेलू उपाय भी अपना लेते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, उसके बाद भी एड़ियां हैं वो फट जाती हैं, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि गहरी दरारें आने लग जाती है, कई बार तो ऐसा होता है कि उनसे खून भी निकलने लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इसके लिए हम डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं ताकि हमें अगर कोई अन्य परेशानी हो तो उसका हमें इलाज मिल जाए।
1: बिल्कुल सही। छोटी छोटी सावधानियां और नियमित देखभाल हमारी त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं, और
0: तो बहन,
1: इसी इसी के लिए जरूरी है कि आप सिर्फ ये ना देखें कि मैंने अपनी स्किन पे क्या लगाया क्या नहीं लगाया, मैं इस तरह के शूज पहनती हूँ, इतने महंगे जूते पहनती हूँ, फिर भी एड़ियाँ सही नहीं है, हो सकता है उस वक्त कोई अंदरूनी परेशानी आपके अंदर चल रही हो, कुछ विटामिन्स की कमी हो या फिर कोई और समस्या, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करें।
0: तो बहनों आज

0: हमने जाना कि फटी एड़ियों की समस्या से बचने के लिए हमें सिर्फ महंगे उत्पादों की जरूरत नहीं है, बल्कि नियमित देखभाल और कुछ आसान आदतों की जरूरत होती है, जिन्हें अपनाकर हम अपनी एड़ियों को सुंदर और मुलायम बना के रख सकते हैं।
1: तो चलिए, हमने बात तो कर ली कि किस तरह से हमें जो इस समय अगर एड़ियां फटी हैं, कटी हैं, तो उनको सुधारना है। और अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको एक मीठा सा नगमा।

0: जरूरत होती है जिन्हें अपनाकर हम अपनी एड़ियों को सुंदर और मुलायम बना के रख सकते हैं।
1: तो चलिए, हमने बात तो कर ली कि किस तरह से हमें जो इस समय अगर एड़ियां फटी हैं, कटी हैं, तो उनको सुधारना है। और अब चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको एक मीठा सा नगमा।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: तो बहनों, आपने सुना एक सुंदर सा गीत, और गीत के बाद कुछ विज्ञापन, और अब हम बात करते हैं कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो भी हमारे स्वास्थ्य से ही जुड़ा हुआ है। और हम इसमें बात करेंगे कि कुछ चीज़ें हम खानपान में जो इस्तेमाल करते हैं वो स्वाद के लिए करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे घरों में परंपरा के रूप में यूज़ की जाती है, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे खाई जाती हैं, और उनका जो महत्व वो सिर्फ स्वाद से ही संबंधित नहीं होता है, बल्कि वो स्वाद के साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सर्दियों में अक्सर हमें गुड़, शक्कर, घी, इन चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है, तो उनका उस मौसम में खास उपयोग भी है, और उस मौसम में अगर वो खाए जाते हैं तो ज़्यादा गुणकारी भी होते हैं। इसी तरह से इन गर्मियों की बात करें तो अगर हम मीठे की बात करते हैं तो हमारे घरों के अंदर जो बूरा है या फिर चीनी को पीस कर उसे घी में मिलाकर खाने का जो ट्रेंड है वो चलता है, तो वो इस मौसम में हमें ठंडक देता है। इसी तरह से एक जो औषधि के रूप में एक फल होता है आंवला, और आंवला को अक्सर हम सर्दियों में भी खाते हैं, और जो आंवला है उसे अक्सर ये कहा जाता है कि हमेशा खाना ही चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तो वो इतना गुणकारी है कि उसे दोनों ही मौसम में खाने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब हम गर्मियों में इसे खाते हैं तो इसे कुछ अलग रूप प्रदान कर देते हैं, और सर्दियों में जब इसे खाते हैं तो किसी और रूप में खाते हैं। और गर्मियों में जो मोस्टली अप्रैल और मार्च अप्रैल के महीने में इसे खाने का महत्व बताया जाता है, तो कहा जाता है कि आयुर्वेद में माना जाता है कि उस वक्त हमारे जो शरीर में ब्लड होता है उसमें उसको प्योर करने के लिए अगर उस वक्त आंवला खाया जाता है तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक रहता है, और उस वक्त उसे मुरब्बे के रूप में खाया जाता है। आज भी अगर आप चाहें तो उसे मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं, वो मीठा भी होगा, पारंपरिक भी होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होगा।
4: जी बहनों, बिल्कुल सही कहा मंजू आपने कि आंवला है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, और आयुर्वेद में भी इसका महत्व है वो माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आंवले का मुरब्बा वास्तव में कितना लाभकारी है, इसका सेवन किसे करना चाहिए और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, इसकी चर्चा हम करते हैं।
3: बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आंवले का मुरब्बा क्या है। आंवले को मीठी चाशनी में तैयार करके बनाया गया मुरब्बा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे कई लोग सुबह के समय लेना पसंद करते हैं। आंवले में विटामिन सी, फाइबर और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी हो सकते हैं।
4: जी बहनों, आंवले का सेवन है वो शरीर की सामान्य प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बनाए रखने में मदद कर सकता है। बदलते मौसम में जब सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां बढ़ जाती है तो आंवले को अपने आहार का हिस्सा अगर हम बनाते हैं तो हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता है।
3: इसके अलावा आंवला त्वचा और बालों के लिए भी उपयोगी माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर को अंदर से स्वस्थ रखने में योगदान दे सकते हैं।
4: लेकिन बहनों यहाँ हमें समझना यह भी जरूरी है कि आंवले का मुरब्बा है वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह किसी बीमारी की दवा नहीं है। किसी भी स्वास्थ्य समस्या में हमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।
3: बिल्कुल सही। अब बात करते हैं कि आंवले का मुरब्बा किन लोगों के लिए लाभकारी हो सकता है। जो लोग सामान्य रूप से स्वस्थ हैं और संतुलित आहार लेते हैं वे सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। यह शरीर को कुछ पोषक तत्व प्रदान करता है, इसलिए इसे खाया जा सकता है।
4: बिल्कुल बहनों, इसके अलावा जिन लोगों को अपनी डाइट में प्राकृतिक चीजें शामिल करनी है वे भी इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। कई लोग इसे सुबह खाली पेट लेना पसंद करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, इसलिए अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार हमें इसका सेवन करना चाहिए। और जो ध्यान रखने वाली बातें हैं उसका ध्यान रखकर अगर इसका सही मात्रा में सेवन किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये हमें स्वास्थ्य लाभ देगा।
3: अब सवाल ये भी उठता है कि आंवले का मुरब्बा किन परेशानियों में मदद कर सकता है। तो बहनों, आंवला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, इसके अलावा पाचन क्रिया जो है उसको भी बेहतर बनाने में मदद करता है, और त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने और बालों को बढ़ाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।
4: बिल्कुल बहनों, लेकिन क्योंकि मुरब्बा चीनी से बनाया जाता है और इसलिए कुछ लोगों के इसका सेवन है वो सोच समझकर करना चाहिए। जैसे जिन हम बात करें, जिन लोगों को मधुमेह यानी शुगर की समस्या है, इन्हें सेवन करने से पहले डॉक्टर या जो विशेष सलाहकार है उनसे सलाह लेनी चाहिए, और अगर वो सलाह देते हैं इसके सेवन की तभी हमें इसका सेवन करना चाहिए, और वो भी सही मात्रा में।
3: जी हाँ, इसी तरह जिन लोगों को वजन नियंत्रित करने की ज़रूरत है उन्हें भी मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुरब्बे में मिठास अधिक होती है और ये आपके अगर आप अपना वजन नियंत्रित करना चाह रहे हैं तो उस वक्त एक रोधक कारण बन सकती है।
4: बिल्कुल बहनों, इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी विशेष बीमारी या हम कह सकते हैं एलर्जी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो कोई भी घरेलू चीज शुरू करने से पहले अपने जो डॉक्टर है या विशेष जो विषय विशेषज्ञ है उसकी सलाह जरूर लेनी चाहिए।
3: बहुत अच्छी बात कही आपने, और हमारी पुरानी परंपराओं में कई ऐसी चीज़ें शामिल रहती हैं जो आज भी उपयोगी हैं, लेकिन उन्हें सही मात्रा और सही तरीके से अपनाना ज़रूरी है।
4: तो बहनों, आज हमने जाना कि आंवले का मुरब्बा स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन इसका सेवन व्यक्ति की उम्र, स्वास्थ्य और ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए।
3: तो बहनों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अब हम बढ़ेंगे अपने कार्यक्रम के अगले हिस्से की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे गर्मियों में त्वचा की देखभाल और ग्वार पाठा यानी कि एलोवेरा से टेनिंग कम कैसे की जा सकती है। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक मधुर सा गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: तो बहनों, अभी सुना आपने एक मीठा सा गीत, और आप सभी जानती है कि कार्यक्रम है महिला जगत। और अब हम चलते हैं अपनी अगली चर्चा की ओर। जैसा कि आप सभी जानती हैं कि गर्मियों का मौसम आते ही तेज धूप, गर्म हवा और बाहर निकलने की वजह से हमारी त्वचा पर इसका असर दिखने लग जाता है, खासकर चेहरे, हाथों पर और पैरों का वो हिस्सा जो कि ढका हुआ नहीं होता है, उस पर टेनिंग यानी कि त्वचा का रंग हल्का सा गहरा हो जाता है आम त्वचा से, तो वो हमें दिखने लग जाता है। तो अगर इस तरह की समस्या आ रही है तो उसमें हमें क्या करना है, कैसे हम उससे बच सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करेंगे।
2: जी बहनों, और आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो हमारे घरों में बड़ा आसानी से मिल जाता है और जिसका नाम है ग्वारपाठा या एलोवेरा के नाम से भी इसे जानते हैं। यह अपनी ठंडक और त्वचा को नमी देने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। साथ ही में इसमें ये गुण भी है बहनों कि बड़ी आसानी से हर एक जगह उग जाता है और किसी विशेष देखभाल की आवश्यकता भी इसको नहीं रहती है।
1: तो सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्वारपाठा है वो स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उपयोगी माना जाता है। एलोवेरा के पौधे की जो पत्तियां होती हैं उसके अंदर पाए जाने वाले जेल जो होता है, कई लोग अपनी त्वचा की देखभाल के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जिससे ये त्वचा को ठंडक और नमी देने में मदद कर सकता है।
2: बिल्कुल बहनों, इसके अलावा कई लोग एलोवेरा को अपने भोजन में भी शामिल करते हैं। एलोवेरा जूस का सेवन कुछ लोग पाचन से जुड़ी परेशानियों के लिए करते हैं, लेकिन इसका सेवन हमेशा सही मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि कई बार ये दो तरह के होते हैं, कड़वे और मीठे होते हैं। कौन सा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, ये सब जानकारी लेने के बाद ही इसका उपयोग है वो हमें करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी प्राकृतिक चीज़ किसी बीमारी का इलाज नहीं होती, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली के साथ ये शरीर को कुछ लाभ पहुंचा सकती है।
2: अब बात करते हैं हम एलोवेरा को किन स्वास्थ्य समस्याओं में मददगार माना जाता है, क्योंकि कई लोग इसको अलग अलग तरह से इसका उपयोग करते हैं। त्वचा में रूखापन कम करने के लिए, छोटी मोटी जलन या धूप से हुई परेशानी में ठंडक के लिए और पाचन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं।
1: कुछ लोग एलोवेरा को कब्ज जैसी समस्या से भी में भी उपयोगी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नुकसान भी कर सकता है, इसलिए सेवन से पहले सावधानी ज़रूरी है।
2: बहनों, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को एलोवेरा का सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह है वो लेनी चाहिए।
1: अब आते हैं हमारे आज के मुख्य विषय पर कि गर्मियों में त्वचा की टेनिंग को कम करने के लिए एलोवेरा का उपयोग कैसे किया जाए। तेज धूप के कारण त्वचा पर काली परत जैसी दिखाई देने लग जाती है, और इससे बचने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं।
2: बिल्कुल बहनों, हम इसके लिए कर सकते हैं कि टैनिंग को अगर हमें दूर करना है तो ताज़ा एलोवेरा है उसका जेल निकालकर साफ त्वचा पर कुछ समय के लिए लगा सकते हैं, और उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लेंगे तो जो त्वचा को ठंडक मिलती है और इससे जो टैनिंग हो गई है सूर्य की किरणों से वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाती है।
1: एलोवेरा जेल में गुलाब जल मिलाकर लगाने से त्वचा को ताजगी महसूस हो सकती है, तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि गुलाब जल जब हम लगाते हैं तो वो कुदरती ताजगी देने वाला ही एक पदार्थ है, तो उसमें अगर एलोवेरा जेल को और मिला लिया जाए तो ये हमारी त्वचा को सुकून और ताजगी देती है।
2: बिल्कुल बहनों, एलोवेरा जेल में थोड़ा सा शहद मिलाकर लगाने से त्वचा को नमी मिल सकती है और जो हवा के कारण त्वचा फटने लग जाती है उससे भी निजात मिलती है।
1: बिल्कुल, एलोवेरा जेल में थोड़ा शहद मिलाकर लगाने से जिस तरह से आप नमी पा सकते हैं, उसी तरह से अगर आप धूप में निकलने से पहले त्वचा को आप जिस तरह से ढककर निकलते हैं या छाता लेकर निकलते हैं, या फिर सनस्क्रीन का उपयोग भी किया जाता है जिससे कि तेज धूप से बचा जाए, लेकिन अगर इन सब के उपयोग से पहले या फिर इन सब के उपयोग के साथ ही साथ एलोवेरा जेल को भी आप लगाएं और उसके ऊपर सनस्क्रीन लगाएं तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा, और आपके जो खुला पार्ट है चाहे हाथों का या चेहरे का जिस पे ज़्यादा धूप का इफेक्ट आता है वो कम रहेगा।
2: बिल्कुल बहनों, एलोवेरा जेल को ठंडा करके लगाने से गर्मियों में त्वचा को राहत मिलती है और ठंडी ठंडक मिलती है। और एलोवेरा के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर से हाइड्रेट रहने पर त्वचा बेहतर बनती है और जो सूर्य की किरणें हैं वो अपना प्रभाव कम डाल पाती हैं।
1: और जैसे कि कुछ सावधानियां भी होती है किसी भी चीज़ का, कि हम कहते हैं कि अगर अति होती है तो वो कई बार नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि रोज और हर समय आप एलोवेरा को ही अपने खुली त्वचा पर लगाते रहें, बार बार उसे अप्लाई करें। हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप अच्छे से लगाते हैं, और जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सनस्क्रीन लगा रहे हैं, उससे पहले उस जेल को लगाते हैं, तो भी ये आपके स्किन के लिए लाभदायक रहेगी और आपको टेनिंग से बचाएगी।
2: बिल्कुल बहनों, अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा संवेदनशील है तो पहले थोड़ी मात्रा में एलोवेरा जो जेल है वो लगाकर देख लें। अगर आपके किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है तभी आप इसका प्रयोग करें, अन्यथा आपको इससे दूर रहना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जब आप बाहर कहीं धूप से काम कर कर वापस आती हैं, तो घर पर आने के तुरंत बाद आप सीधे ही जेल लेकर और अपने हाथों पर, या जो ओपन आपका फेस और हाथ हैं आपके, उन पे अप्लाई करती हैं, उससे अच्छा है कि आप पहले उन्हें अच्छे से पानी से धो लें, साफ करें।

0: और उसके बाद में जेल लगाएं तो वो ज़्यादा ठंडक देगी।
1: बिल्कुल बहनों, एलोवेरा के साथ साथ हमें संतुलित आहार है उसको भी अपने दिनचर्या में शामिल करना है। फल सब्जियां, जो मौसमी फल और सब्जियां आते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें अपने भोजन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो गुण होते हैं, क्योंकि ये समय के सीजन के हिसाब से आते हैं और सीजन के हिसाब से इनकी तासीर भी उसी के हिसाब से होती है, तो उनको अगर हम अपने भोजन में शामिल करेंगे तो हमारी जो त्वचा है उसको अंदरूनी पोषण मिलेगा और अंदरूनी पोषण से त्वचा है वो खिलकर बाहर आएगी।
0: बिल्कुल, तेज धूप के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचें, क्योंकि टेनिंग से बचाव इलाज से बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप कोई बहुत ज़रूरी काम है और बाहर जा रही हैं तो टेनिंग होना तो होगा ही, क्योंकि आप बाहर निकल रही हैं। लेकिन अगर ज़रूरी ना हो तो कोशिश करें कि ज़्यादा तेज़ धूप में अपने किसी भी काम को करने ना जाएं, सुबह जल्दी अपने कामों को निपटाएं और जब शाम को थोड़ी कम धूप हो जाए शाम के समय तो आप बाहर निकलें, तो ये भी एक कारगर तरीका हो सकता है, आप टेनिंग से अपने शरीर को बचा सकती हैं।
1: बिल्कुल बहनों, एलोवेरा का उपयोग करके आप अपनी त्वचा को निखार सकते हैं और इससे आपकी त्वचा को नमी मिलेगी और नमी मिलने के कारण जो त्वचा है वो हमेशा खिली खिली रहेगी और एक मुरझायापन है वो नहीं दिखेगा। तो आप इसका उपयोग करें, अपने परिवार में भी जो भी इसका उपयोग करने के लिए तैयार हैं उनको भी इसकी सलाह दीजिए, ताकि आप और आपका परिवार है उसकी त्वचा चमकती दमकती रहे।
0: बिल्कुल, स्वस्थ त्वचा और स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है सही खान पान, पर्याप्त पानी, नियमित देखभाल और स्वस्थ आदतें।
1: बिल्कुल बहनों, आज का जो कार्यक्रम है उसमें हमने बातें की और बड़ी ही रोचक बातें हैं, लेकिन पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम महिला जगत में। और क्योंकि गर्मियों का मौसम चल रहा है और इन दिनों में ठंडी चीज़ें खाने, ठंडी चीज़ें पीने का बड़ा चलन है और वो ही है जो हमें बहुत राहत देती है, तो क्यों ना जो ठंडाई अक्सर हम बनाते हैं उसकी एक विधि हमारी बहनों को बताई जाए कि किस तरह से वो एक परफेक्ट ठंडाई बना सकती हैं।
1: बिल्कुल बहनों, ठंडाई एक ताज़ा ठंडा पेय है जो आमतौर पर गर्म मौसम में हम सबके लिए सर्व करते हैं। इसमें बादाम, गुलाब जल और अन्य मसाले वाले दूध का मिश्रण होता है और बड़ा ही ठंडक देता है। इसके लिए हम किस तरह से इसको बना सकते हैं, इसकी सामग्री बहनों हम आपको बता रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। 1 कप बादाम, 1 कप पिस्ता, 3 कप ठंडा दूध और स्वाद के लिए चीनी, 2/3 चम्मच इलायची पाउडर है वो इसका ले सकते हैं, और 2 बड़े चम्मच केवड़ा एसेंस, ये एक विकल्प के रूप में है, अगर आप लेना चाहें तो इसका उपयोग ले सकते हैं, 2 बड़े चम्मच गुलाब जल। और इसे बनाने की विधि बहनों आपको बताते हैं। बादाम और पिस्ता को अपने फूड प्रोसेसर में एक चिकनी कह सकते हैं कि जो बना सकते हैं इसका चिकना, जो चिकना बड़ा ही चिकना सा पेस्ट बना लें और इसको तैयार कर लें। और ऐसा करने से इसमें थोड़ा सा दूध हम इसमें बाद में मिला सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे पीसने से पहले बादाम के छिलके निकालना पसंद करते हैं, लेकिन बादाम के छिलके हैं उसमें कई पोषक तत्व होते हैं, तो अगर उसको साथ में पीसना चाहें तो भी वो नुकसानदायक नहीं होगा। दूध, चीनी, इलायची पाउडर, केवड़ा एसेंस, इन सबको लेकर और गुलाब जल को अच्छे से मिक्स कर लें, और इसके बाद इसे कांच के गिलास में आप सर्व करें। आप अपने जो घर परिवार के लोग हैं उनको पिलाएं, उनके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा और इसकी तासीर ठंडी होती है तो गर्मी में पीने के लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा।
0: बिल्कुल, और जिस तरह से आपने ये ठंडाई बताई है कि इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिलाकर पीसकर और दूध में मिलाकर और ठंडा दूध मिलाकर और उससे बना सकते हैं, साथ ही आजकल एक चलन और भी चल रहा है और वो ये है कि इन सभी चीज़ों को आप सूखे पीस लें, जैसे बादाम है, पिस्ता है, उसके अलावा जो भी आप इस ठंडाई में डालना चाहते हैं, चाहे गुलाब की पत्तियाँ हैं, इलायची पाउडर है, इन सबको आप सूखा पीस लें और उसको आप एक एयरटाइट डिब्बे में बंद रखें। जब भी आपका मन हो कि आप इसे पीना चाहती हैं तो आप ठंडा दूध लें और उस पाउडर को उसमें मिक्स करें और इंस्टेंट आपकी ठंडाई तैयार है। तो बहनों, कहा जाता है कि छोटी छोटी सावधानियां ही हमें बड़ी परेशानियों से बचाती है, चाहे बात त्वचा की हो, खान पान की हो या अपनी दिनचर्या की। थोड़ी सी जागरूकता हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: बिल्कुल बहनों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी को अपने लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ये स्वार्थ की बात नहीं है बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने की एक तैयारी है।
0: बिल्कुल, तो बहनों आज के कार्यक्रम से विदा लेने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते रहिए।
1: जी बहनों, तो कार्यक्रम से दे विदा संगीता रोहिला को
0: और मंजू को।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित पहले मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार।

0: Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped two clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership to be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे। यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया। श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे।
2: कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने

0: ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने

0: का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने। सबसे पहले सुनते हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण को। फिल्म का नाम है नाम गुम जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम को। फिल्म का नाम था मेरी सजना साथ निभाना। आइए अब सुनते हैं प्यार की जीत फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में प्यार की जीत फिल्म का गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू से कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम है अर्पण।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम तराने नए पुराने अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। इस समय दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे कार्यक्रम युवाणी के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 5 बज चुके हैं। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी के साथ हमारी आज की सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है।

जी दोस्तों, 100.7 FM पर हमेशा की तरह हम एक बार फिर आपसे रूबरू होने आए हैं कार्यक्रम युवाणी के तहत। आज का युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रेडियो साथी हरीश मोहन। युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट जो है वो आप सभी के लिए है, वह शेखावाटी की धड़कन। जी हाँ दोस्तों, आज जो है स्पेशल सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब गर्मियां जो है वो केवल मौसम ही नहीं होती थी बल्कि रिश्तों, अपनत्व और खूबसूरत यादों का एक उत्सव हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गर्मियों की पुरानी यादें, जैसे कि चौपाल, छत पर सोना और हाथ के पंखों की ठंडी हवा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गर्मियों का जो मौसम है वो आते ही आज के समय में जो है सबसे पहले एसी, कूलर, ठंडे कमरों की हमें याद आती है। लेकिन एक समय वो भी था जब गर्मियाँ सिर्फ तेज धूप और गर्म हवाओं का नाम नहीं थी बल्कि यह जो मौसम है ये रिश्तों, मेलजोल और सुकून और यादगार पलों से भरा हुआ होता था। उस समय के दौर में जो है सुविधाएं कम होती थी लेकिन जीवन में जो है वो अपनापन और खुशियाँ बहुत ही ज़्यादा थी। गांव की चौपाल, घरों की छत पर बिछी चारपाइयाँ और हाथ के पंखों की धीमी हवा, मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी और जो है तारों भरी रातें आज भी जो लोगों के मन में एक खूबसूरत तस्वीर की तरह बसी हुई है। पुराने समय की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गर्मियों की जो शाम है वो अपने आप में एक अलग ही एहसास लेकर आती थी। दिन भर जो की तेज धूप के बाद जब सूरज ढलने लगता था तो गांव की गलियों में जो है एक नई रौनक दिखाई देने लगती थी। लोग जो है वो अपने अपने काम पूरे करके घरों से बाहर निकलते थे और कोई जो है चौपाल की ओर जाता था तो कोई जो है अपने पड़ोसियों के साथ बैठकर बातचीत करता हुआ नजर आता था। उस समय जो है लोगों के पास एक दूसरे के लिए बहुत समय हुआ करता था। लेकिन आज जो है, आज की तरह हम देखें कि हर जो व्यक्ति है वो मोबाइल या फिर सोशल मीडिया की भागदौड़ में जो है व्यस्त रहता है। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। आपस में जो है लोगों का प्यार, तालमेल, मेलजोल जो है वो इतना ज़्यादा था कि लोग जो है वो एक दूसरे को अपना समय देते थे, बैठ कर बातचीत करते थे और सिर्फ सुख में ही नहीं बल्कि उनके दुखों में भी जो है एक दूसरे के भागीदार होते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि उस समय का दौर जो है वो इतना विशेष था कि उस समय सभी जो लोग हैं वो आपस में मेलजोल का भाव रखते थे। और गर्मियों के मौसम में भी जब हम देखते हैं कि आज जो है हम एसी के कमरे से या फिर यूं कहें कि ठंडी जगह से बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन उस समय जो क्या होता था कि शाम जब होती थी तो सभी जो है लोग घर से बाहर निकलते थे, कोई जो है चौपाल के ऊपर बैठकर आपस में जो है बातें करते थे या फिर बच्चे जो हैं वो अपने पारंपरिक जो खेल है वो खेलते थे, औरतें भी जो हैं वो अपने घर का कार्य जो है वो कर रही होती थी। तो कहने का मतलब यही है कि उस समय का जो माहौल है, उस समय का जो एक हम कह सकते हैं कि कल्पनात्मक जो सीन यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसकी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा उस समय माहौल रहता था। दोस्तों, जो चौपाल की मैंने बात की वो एक तरीके से जो गांव की जो आत्मा है वो उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि जो गांव की चौपाल है वो सिर्फ बैठने की जगह ही नहीं थी बल्कि वह पूरे गाँव की एक तरीके से धड़कन हुआ करती थी। किसी पेड़ की छांव में या फिर गांव के बीचों बीच जो बनी चौपाल है उसके ऊपर बुजुर्ग जो है वो चारपाई डालकर वहां पर बैठते थे। वहां जो है खेती किसानी, मौसम, परिवार और समाज से जुड़ी बातें हैं वो होती रहती थी। बुजुर्ग जो है वो अपने अनुभवों की बातें जो है वो एक दूसरे को सुनाते थे और नई पीढ़ी जो है उसे जीवन के तरीके के तौर पर जो है वहां पर सीखती थी। तो वहां पर जो है कह सकते हैं कि आपस में जो है काफी ज्यादा मेलजोल था और पुराने जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो अपने अनुभव है युवा साथियों के साथ साझा करते थे। चौपाल पर बैठकर जो है पुराने किस्से सुनना और अपने आप में एक बहुत ही परम आनंद का उस समय ये विषय था। और कोई जो है राजा महाराजा की कहानियां सुनाता, कोई अपने जमाने के संघर्षों की बात करता तो कोई जीवन की सीख दे जाता। बच्चों के लिए

जो है ये किसी कहानी की किताब से बिल्कुल भी कम नहीं था। और वे खेलते खेलते जो है बड़े बुजुर्गों की बातें भी सुनते रहते थे और उनकी जो बात है उनको अमल में भी लाते थे। चौपाल में सिर्फ जो है बातें ही नहीं होती थी दोस्तों, वहाँ जो है रिश्ते और ज़्यादा मजबूत होते थे। किसी के घर जो है खुशी होती तो पूरा जो गांव है वो एक साथ खड़ा नजर आता, और किसी के दुख में जो है पूरा गांव जो है उसी व्यक्ति का वहाँ पर सहारा बन जाता था। यही जो सामूहिक भावना जो है उस समय के जीवन में सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और ये जो चीज़ है दोस्तों आज के समय में हमको देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि हम जो है एक दूसरे को पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। बाहर के व्यक्ति की तो बात ही हम क्या करें दोस्तों, हम अपने परिवार को भी जो है पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों जब पुराने समय की तुलना जो है आज के समय में अगर हम करते हैं तो हम अपने आप को पाते हैं कि हम जो है बहुत ज़्यादा पीछे अभी भी हैं, क्योंकि वो जो तालमेल का जो अनुभव है या फिर यूँ कहें कि एक दूसरे के जो अनुभव जो उस समय साझा होते थे वो आज के समय में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। दोस्तों बातें आगे और भी जारी रहेगी, फिलहाल आपके लिए चलते हैं इस प्यारे से गाने की ओर।

था जब हम छत के ऊपर जो है रात को आराम करते थे। दिन भर जो है गर्म रहने के बाद शाम को जो है छत पर पानी का छिड़काव किया जाता था और मिट्टी और पानी की जो मिलीजुली खुशबू जो है वो पूरे माहौल को ठंडा और मन को शांत कर देती थी। फिर चारपाइयाँ बिछाई जाती थीं और परिवार के जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे सोने की तैयारी करते थे। छत पर सोते समय आसमान में चमकते तारों को देखना बच्चों का सबसे पसंदीदा काम हुआ करता था। दादी नानी जो है वो तारों के बारे में कहानियां सुनाती थी, तो कोई जो है वो ध्रुव तारे की बात करता, तो कोई जो है चांद में छिपी कहानियां सुनाता। उस समय जो है बच्चों की कल्पना और सपनों को जो है उड़ान देने वाली उस समय बातें होती थी। रात की जो हल्की हवा, दूर कहीं से आती जो है पंखों की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट और परिवार के लोगों की जो है बातचीत एक ऐसा माहौल बनाती थी जिससे कि जो है आज की आधुनिक सुविधाएं जो हैं वो भी पूरी तरीके से जो है उसकी परिपूर्णता नहीं कर सकती है। उसका हम कह सकते हैं कि छत पर सोने की जो पुरानी यादें हैं उनकी तुलना है हम आज से बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज गिने चुने लोग ही होंगे जो कि रात के समय छत के ऊपर सोते होंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे है हम आधुनिक युग की ओर बढ़ रहे हैं तो हम सभी जो है कंफर्ट जोन की ओर आने लगे हैं। हमको क्या चाहिए कि हमको ठंडी हवा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। तो उस समय जो है पुराने समय का जो मौसम है या फिर उस समय की जो यादें हैं वो आज के समय में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इसी तरह हाथ के पंखे की जो ठंडी हवा है जो कि उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था हाथ का पंखा, लेकिन आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि बिजली से चलने वाले पंखे और एसी जो है वो आम बात हो गई है, आपको हर घर में जो है एसी पंखे ये सब जो है आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन पुराने समय में जो है हाथ के जो पंखे होते थे उनका अपना अलग ही महत्व होता था। दोस्तों जब बिजली जो है वो चली जाती थी तो लोग है वो परेशान बिल्कुल भी नहीं होते थे, क्योंकि घरों में रखे जो है सुंदर सुंदर हाथ से बने हुए पंखे जो हैं वो निकाले जाते थे और बच्चे जो हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जो है उनसे हवा लेते थे। माँ जो है वो अपने बच्चों को हाथ से पंखा झलते हुए जो है वो सुलाती थी और दादी नानी जो है वो पंखा करते हुए उनको कहानियाँ सुनाई करती थी। उस समय हवा में भी जो है सिर्फ ठंडक नहीं होती थी बल्कि प्यार और अपनापन भी होता था। हाथ के पंखों की धीमी हवा जो है वो रिश्तों की गर्माहट है उसमें महसूस हुआ करती थी। और उस समय जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जैसे अब के समय जब बिजली चली जाती है तो हम बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि कि हम ये सोचने लगते हैं कि लाइट कब आएगी, क्योंकि हम जो है आज के समय में बिजली के बिना जो है अपने जीवन की कल्पना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन उस समय जो है हम बिजली के ऊपर इतना निर्भर नहीं थे, उस समय हाथ के पंखों के द्वारा भी जो है गर्मी के मौसम में हम अपनी गर्मी दूर लिया करते थे। लेकिन अभी अगर हम देखें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट जाते ही हमारे मन में यह होने लगता है कि लाइट कब आएगी और कब जो है हमें इस गर्मी से राहत मिलेगी। इसी तरह मिट्टी के घड़े और देसी ठंडक है उसका तो कहना ही क्या दोस्तों, क्योंकि गर्मी के जो है मौसम में मिट्टी के घड़े का पानी जो है वो किसी अमृत से कम नहीं माना जाता था, क्योंकि फ्रिज जो है उसकी ठंडक से अलग घड़े के पानी में मिट्टी की खुशबू और प्राकृतिक ठंडक जो है वो होती थी। खेत से लौटे किसान जो है वो उनके लिए घड़ों का ठंडा पानी जो है वो सबसे बड़ी राहत है उस समय हुआ करता था। और घर में बने शरबत, छाछ, लस्सी और आम का पन्ना जो है वो गर्मियों में जो है एक पेय पदार्थ के रूप में अपनी एक खास पहचान रखते थे। बाजार के ठंडे पेय पदार्थों की जगह घर में बने जो पेय पदार्थ है वो शरीर और मन जो है उनको बहुत ज़्यादा ताजगी देते थे और वो कह सकते हैं कि शरीर को भी उस समय काफ़ी ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाते थे, क्योंकि अगर हम देखें कि अगर हम नेचुरल जो है हम अपने घर में बना हुआ शरबत, छाछ या लस्सी पीते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है और उसमें जो है शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले तत्व बिल्कुल भी नहीं होते हैं। इसलिए जो है गर्मी के मौसम में पुराने लोग तो जो है इसी को प्रेफर करते थे, लेकिन आज के समय में अगर हम तो हम पाते हैं कि हम जो है बाहर की जो आइटम है जो कि हम प्रोसेस्ड फूड की जिनको कह सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जिनको कह सकते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। हम जो है जी युवा, खास तौर पर जो है युवा साथियों की अगर मैं बात करूं तो वो जो है ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, इनके ऊपर ज़्यादा बेस्ड हो गए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं। जबकि होना ये चाहिए दोस्तों कि जो हमको है गर्मी के मौसम में नारियल पानी, छाछ, शरबत, इनके ऊपर जो है अपना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है नेचुरल बूस्टर होते हैं और गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा जल्दी जो है और बहुत अच्छी तरीके से हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाते। जी बिल्कुल, और इसी

के साथ अगर मैं बात करूं कि उस समय की अगर बात करें तो रिश्तों में जो है सादगी जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी, क्योंकि पुरानी जो गर्मियों का मौसम होता था उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत यही थी कि लोग जो है वो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब रहते थे। पड़ोसी जो है वो परिवार का हिस्सा जो है हुआ करते थे उस समय, और बच्चे जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ खेलते थे और बड़े होकर जो है एक दूसरे के सुख दुख जो है वो बांटते थे और उनमें भागीदार भी होते थे। उस समय जो है साधनों का भी उस समय कह सकते हैं कि अभाव था, हम इतने ज़्यादा हाईटेक नहीं थे, लेकिन उस अगर साधनों का अभाव था लेकिन फिर भी जो है जीवन में काफ़ी ज़्यादा संतोष था। आज जो है हमारे पास आराम के बहुत सारे साधन हैं लेकिन समय जो है हमारे पास बिल्कुल भी कम हो गया है। पहले जो है लोग गर्मी में मिलजुल कर एक उत्सव की तरह इस मौसम को बिताते थे। छत पर सोना, चौपाल पर बैठना और हाथ के पंखों की हवा करना उस समय के व्यक्तियों की सिर्फ ज़रूरत ही नहीं बल्कि जीवन जीने का एक बहुत ही सुंदर तरीका था। दोस्तों, यादों की जो है ठंडी छाव है उस समय काफ़ी ज़्यादा रहती थी, क्योंकि अब समय है वो बिल्कुल बदल गया है। अब शहरों में ऊंची इमारतें बन गई हैं, बंद कमरे और आधुनिक सुविधाएं हैं वो हम सभी को मिलने लगी हैं, लेकिन जब कभी पुरानी गर्मियों की हमको याद आती है तो हमारा जो मन है वो फिर उसी दौर में जो है लौट जाता है जहाँ रिश्तों की मिठास हुआ करती थी, बातचीत की गर्माहट थी और जो है जीवन में एक सरल खुशी थी। गर्मियों की वे पुरानी यादें हमें याद दिलाती हैं दोस्तों कि असली जो सुख है वो बड़ी सुविधाओं ने में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों में छिपा होता है। चौपाल, छत पर सोना और हाथ के पंखे की हवा जो है वो हमारी संस्कृति की एक ऐसी अनमोल यादें हैं जो हमारे हमेशा जो है दिलों में ठंडी हवा की तरह बनी रहेंगी, और जब भी कभी गर्मियों के मौसम में और पुराने दौर की बात आएगी दोस्तों तो हमें जो है इन सब चीज़ों की या फिर यूँ कहें कि इन सब यादों की जो है कमी हमेशा खलती रहेगी।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है अभी प्रोसेसिंग के लिए, 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे,
7: RBI कहता है।
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जी दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में जब हम बात कर रहे हैं गर्मियों के मौसम की, तो गर्मियों के मौसम में जो है देसी खान पान और शरीर को जो है ठंडा रखने के लिए जो हम खाद्य पदार्थ हम ले सकते हैं गर्मी के मौसम में, उनके बारे में भी जो है आप सभी के साथ बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि गर्मी का जो मौसम है वो अपने साथ तेज धूप, लू, पसीना और थकान जो है वो लेकर आता है। और ऐसे में जो है सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने यही होता है कि आखिर जो है गर्मी के मौसम में हम अपने शरीर को ठंडा और स्वस्थ कैसे रखें दोस्तों। आज के समय में अगर हम देखें तो गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जो हैं वो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और तरह तरह के जो है पैक्ड जो पैकेजिंग किए हुए पेय पदार्थ होते हैं उनका सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो भी बिना इन सब चीज़ों के जो है गर्मियों को कैसे जो है इतनी आसानी से झेल लेते थे? उनका दोस्तों कारण यही था कि उनका जो खान पान है वो बिल्कुल देसी था और बहुत ज़्यादा शुद्ध था।

दोस्तों, हमारी जो है यहाँ पर एक कहावत कही जाती है कि जैसा मौसम वैसा भोजन, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है प्रकृति ने हमें ऐसी चीजें दी है जो शरीर को अंदर से ठंडक देती है। हमारे गांव में जो है लोग मौसम के अनुसार जो है वो भोजन चुनते थे, और यही कारण था कि उन्हें कम बीमारियां होती थी और शरीर में जो है ऊर्जा बनी रहती थी। जैसे कि मैंने पहले भी बात की कि मटकी का जो पानी है वो प्राकृतिक ठंडक जो है वो हमें प्रदान करता था, और सबसे पहले जो है हम इसी की बात करते हैं क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि फ्रिज का पानी जो है वो हर घर में है, लेकिन पहले जो है मिट्टी के घड़े का पानी ही सबसे बड़ी राहत है वो माना जाता था, क्योंकि मटकी का जो पानी है वो न ज़्यादा जो है ठंडा होता है और न ही शरीर को जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान अंदर से पहुंचाता है। गर्मी में प्यास बुझाने के साथ साथ ये जो है हमारे शरीर का संतुलन भी बनाए रखता है। मिट्टी की खुशबू वाला पानी सिर्फ प्यास ही नहीं बुझाता दोस्तों, बल्कि गर्मी में जो है शरीर को काफ़ी ज़्यादा राहत पहुंचाता है और हमको पीने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह जो छाछ होती है वो हमारे, हम कह सकते हैं कि पूरे गांव का जो है एक तरीके से प्राकृतिक एनर्जी ड्रिंक है, उसको अगर कहा जाए तो हम बिल्कुल यहाँ पर सही बात ये होगी, क्योंकि अगर गर्मियों में सबसे उपयोगी पेय की अगर बात करें तो दोस्तों वो छाछ का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, क्योंकि राजस्थान और शेखावाटी के क्षेत्र में दोपहर के भोजन के साथ जो है वो छाछ पीने की परंपरा जो है वो हमेशा से रही है। छाछ जो है वो हमारे पाचन को बहुत ज्यादा अच्छा बना देती है और शरीर में जो है पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देती। गर्मी के कारण होने वाली जो थकान है उसको भी काफी ज्यादा हद तक कम कर देती है। और आज जो है हम जिन एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और जिनके ऊपर हम बहुत ज्यादा पैसे भी खर्च कर देते हैं, उनका जो काम है वो छाछ वर्षों से करती आ रही है, और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है इसी के सहारे जो है उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। इसी तरह जो है एक स्पेशल पेय पदार्थ जिसको हम कहते हैं राबड़ी और राब, ये भी जो है शेखावाटी की एक अलग ही पहचान है दोस्तों, क्योंकि गर्मी के मौसम में बाजरे या फिर जौ से बनी जो राब होती है वो शरीर को काफी ज्यादा ठंडक पहुंचाने में मदद करती है। ये जो पेट है उसको हल्का रखती है और लंबे समय तक हमें गर्मी के मौसम में ऊर्जा देती रहती है। और ग्रामीण जो जीवन है उसमें खेतों में काम करने वाले लोग जो हैं वो इसे विशेष रूप से पसंद करते हैं दोस्तों। इसी तरह जो है अगर हम सब्जियों के बारे में अगर बात करें तो सलाद के रूप में खीरा और काकड़ी जो है वो गर्मी में किसी वरदान से कम नहीं है। गर्मी शुरू होते ही बाजारों में जो है खीरा और काकड़ी जो है वो हमको दिखाई देने लग जाती है, और इसमें जो है पानी की मात्रा दोस्तों इतनी अधिक होती है कि हमारे बॉडी में जितनी भी हमको पानी की मात्रा रिक्वायर्ड होती है उनका जो है उसकी जो पूर्ति है वो ये खीरा और काकड़ी एक बार में ही कर देती है, और इसे खाने से जो है शरीर में जो है नमी हमेशा बनी रहती है। कई जो लोग हैं वो भोजन के साथ सलाद के रूप में जो है इसका उपयोग करते हैं, और दोस्तों ये साधारण सी चीज़ें हैं लेकिन गर्मी में जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हमारे लिए मानी जाती है। इसी प्रकार तरबूज जो है और खरबूजे की अगर बात करें तो वो भी जो है गर्मी के मौसम में जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा राहत प्रदान करने वाले जो है फ्रूट्स होते हैं, क्योंकि फलों में जो है पानी, इन दोनों फलों में पानी भरपूर मात्रा में होता है और ये शरीर को ताजगी देते हैं। धूप में निकलने वाले लोगों के लिए विशेष रूप से ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं। और दोस्तों हमारे बुजुर्ग अक्सर ही कहते थे कि मौसम का जो फल है वो ही सबसे अच्छा फल होता है। जैसे कि गर्मी के मौसम में अगर हम बात करें खीरा, काकड़ी, आम, नारियल पानी, ये सारे जो है मौसमी जो है फल इनको कह सकते हैं हम, और इनका अगर हम गर्मी में सेवन करें तो हम जो है अंदर से पूरे हाइड्रेटेड रहेंगे और हमारे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी प्रकार बेल का जो शरबत है दोस्तों ये भी गर्मी के मौसम में किसी वरदान से बिल्कुल भी यहाँ पर कम नहीं है, क्योंकि पहले जो है गांव में गर्मी का मौसम जो है वो आते ही बेल का शरबत है वो बनाया जाता था, और यह जो है शरीर को ठंडक देने के साथ साथ पेट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आज भी जो है कई लोग इसे गर्मी का पारंपरिक पेय मानते हैं और इसका सेवन आज भी करते हैं। इसी प्रकार नींबू पानी की जो ताकत है दोस्तों उसको भी यहाँ पर कम बिल्कुल भी नहीं आंकना है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ये काम कर सकता है, क्योंकि कई बार जो है राहत जो है बहुत सी साधारण चीज़ों में ही छिपी होती है। हम नींबू को बहुत ही ज़्यादा साधारण मान लेते हैं लेकिन गर्मी के मौसम में जो है ये बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। नींबू पानी और थोड़ा सा जो नमक है, बस इतना सा मिश्रण जो है वो हमारे शरीर को तरोताज़ा कर देता है। गर्मी से में जो है बाहर से आने के बाद अगर हम नींबू पानी अगर पीते हैं तो वो आज भी जो है सबसे अच्छा और आसान और प्रभावी उपाय माना जाता है गर्मी के मौसम में अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने का।

इसी प्रकार अगर हम बात करें सत्तू की दोस्तों, तो पुरानी पीढ़ी जो है उसी से ये जो है सत्तू जो उसका सेवन है वो चला आ रहा है। आज के अगर हम देखें कि आजकल जो है सुपर फूड जो है शब्द बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे जो गाँव में जो है सत्तू जो है वो विशेष रूप से उपयोग किया जाता था और काफ़ी वर्षों से जो है इसका उपयोग किया जाता रहा है। सत्तू का जो शरबत है वो गर्मी में शरीर को काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देता है, यह जो है पेट को भरा हुआ महसूस कराता है और शरीर को भी जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडक पहुँचाता है। जी दोस्तों, गर्मी के मौसम में देसी खान पान की बातें जो है आगे और भी जारी रहेंगी। फिलहाल आपको लिए चलते हैं इस प्यारे से गाने की ओर।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में हम आपसे बात कर रहे हैं कि हमारे गर्मी के मौसम में जो हमारा देसी खान पान है उसके बारे में। दोस्तों, बात जब देसी खान पान की आती है तो गर्मी के मौसम में जो है प्याज का अलग ही अपना महत्व है, क्योंकि गांव में जो है पहले लोग जो है वो खेत जाते समय अपने साथ प्याज जो है वो ज़रूर रखते थे, क्योंकि कई बुजुर्ग मानते थे कि गर्मी और लू से बचाव में जो है प्याज जो है वो काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकती है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है यह परंपरा देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों जिसे हम साधारण समझते हैं कई बार वही सबसे असाधारण साबित होता है। हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में प्याज जो है वो क्या कुछ ही कर सकता है, लेकिन माना यह जाता है दोस्तों कि गर्मी के मौसम में अगर हम प्याज का सेवन करते हैं, अगर जैसे कि मैंने कहा कि राब के साथ अगर प्याज उसमें डाल के अगर हम उसका सेवन करें तो ये जो है लू से हमको काफ़ी हद तक बचा सकता है और हमको गर्मी से राहत दिलाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। दोस्तों, इसी प्रकार जो है अगर हम बात करें कि आज के युवा की, तो अक्सर जो है गर्मी में कोल्ड ड्रिंक और जो पैक्स्ड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ये आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन एक सवाल जो है हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या कुछ मिनट की जो ठंडक है वही हमारे लिए पर्याप्त है, या फिर ऐसा पेय पदार्थ जो है जो कि शरीर को वास्तविक लाभ जो है हमको पहुँचाए वो हमें गर्मी में पीना आवश्यक है भी या नहीं। दोस्तों, छाछ, सत्तू, बेल का शरबत और नींबू पानी केवल ठंडक ही नहीं देते बल्कि शरीर की जो ज़रूरतें हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा पूरा करते हैं, और इनमें जो मौजूद न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के को काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रखते हैं और हमको जो है बीमारियों से भी बचाने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होते हैं। दोस्तों, दादी नानी के नुस्खों में भी जो है एक तरीके से विज्ञान छुपा होता है, क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग थे दोस्तों वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनके पास जो है अनुभव था, वो अनुभव के काफ़ी ज़्यादा धनी थे। वे जानते थे कि गर्मी के मौसम में हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हल्का भोजन, मौसमी फल, पर्याप्त पानी और घर में बने पेय पदार्थ जो है यही उनकी गर्मियों की सेहत का राज था। आज का जो विज्ञान है वो भी संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी की महत्ता को जो है एक तरीके से स्वीकार करता है। दोस्तों, हम यही कह सकते हैं कि आधुनिक जीवन में सुविधाएं जो है वो हमारे सबके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहना उतना ही हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, गर्मी में हम कोशिश कर सकते हैं कि छाछ को हम भोजन का हिस्सा बनाएं, मौसमी फलों का हम सेवन करें, मटके के पानी का हम इस्तेमाल करें, बाहर का जो जंक फूड है या फिर जो इसको हम स्ट्रीट फूड कह सकते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा कम कर दें या फिर बिल्कुल ही अवॉइड करें। पर्याप्त पानी जो है वो गर्मी के मौसम में हम पीते रहें और घर के बने पेय पदार्थ जो है उनको हम सबसे पहले प्राथमिकता दें, क्योंकि दोस्तों ये छोटे छोटे बदलाव जो हैं यही है जो है बड़ा परिणाम ला सकते हैं और गर्मी के मौसम में जो है हमको सेहतमंद रख सकते हैं। दोस्तों, गर्मी से जो बचाव है वो केवल एसी और कूलर से ही नहीं होता बल्कि सही खान पान भी जो है वो उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पारंपरिक भोजन में केवल स्वाद ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य का ज्ञान भी छिपा हुआ है, इसलिए जब भी आपको गर्मी परेशान करे तो अपने देसी खान पान की ओर ज़रूर लौट आइए। दोस्तों, धरती ने

हर मौसम की दवा दी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और जो जुड़ा रहता है अपनी परंपराओं से, वह सेहत और सुकून दोनों पाता है। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आपको लिए चलते हैं इस प्यारे से गाने की ओर।

जी दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है युवाणी, और युवाणी कार्यक्रम में हम आप सभी के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो कि हमारे जीवन, हमारी हेल्थ, समाज और भविष्य से जो है वो सीधे सीधे जुड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं 14 जून है और आज जो है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व रक्तदाता दिवस। जी हाँ दोस्तों, यह दिन जो है उन लाखों लोगों को समर्पित है जो बिना किसी स्वार्थ के रक्तदान करके किसी अनजान व्यक्ति को जीवन देने का काम करते हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि जीवन सबसे ज़्यादा अनमोल है, लेकिन कई बार जो है किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए दवाइयों

या फिर मशीनों से ज़्यादा ज़रूरत होती है सिर्फ कुछ यूनिट रक्त की, और यही कारण है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है। दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो इसलिए भी मनाया जाता है कि ये जो दिन है ये युवा साथियों या जितने भी लोग जो है जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उनको जो है एक तरीके से मोटिवेट करता है। और इस दिन जो है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक करना और नियमित रक्तदाताओं का सम्मान एक तरीके से करना। दोस्तों, रक्तदान जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है हमारी लाइफ में क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि एक सड़क जो है वो दुर्घटना हुई है, किसी मरीज का बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, किसी महिला को प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव जो है वो हो गया है, या फिर किसी बच्चे को थैलेसीमिया जैसी बीमारी है जिसे नियमित रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों रक्त का कोई भी जो दूसरा है वो विकल्प नहीं होता है क्योंकि रक्त जो है वो किसी भी फैक्ट्री में नहीं बनता, यह जो है केवल एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर ही हो सकता है। तो दूसरों की सांसों को जीवन देना दोस्तों यही जो है इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन इससे जुड़े जो है कुछ भ्रम भी जो है हमको सुनने को मिलते हैं क्योंकि हम जो है सुनने भी मिल जाता है कि और कुछ लोग सोचते भी हैं कि रक्तदान करने से जो है वो शरीर में कमजोरी हो जाएगी, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इससे जो है स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि स्वस्थ व्यक्ति जो है कि शरीर में रक्त की जो पूर्ति है वो कुछ समय के लिए स्वाभाविक रूप से हो जाती है, लेकिन विशेषज्ञों की देखरेख में जो है किया गया रक्तदान जो है सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है। इसलिए अफवाहों की बजाय सही जानकारी पर भरोसा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत जो है उसका युवा वर्ग ही होता है, और आज के जो युवा हैं वो यदि नियमित रूप से रक्तदान के प्रति अगर जागरूक हों तो रक्त की कमी की समस्या जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है क्योंकि युवाओं में जो है ऊर्जा है, उनका स्वास्थ्य है वो सही है, और समाज के लिए जो है उनमें कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। और रक्तदान जो है वो ऐसा कार्य है दोस्तों जिसमें न कोई धन खर्च होता है और न ही किसी विशेष संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो किसी की जिंदगी जो है वो पूरी तरह बदल सकता है। दोस्तों एक यूनिट जो रक्त है वो किसी की ज़िंदगी जो है वो पूरी तरीके से बदल सकता है क्योंकि बहुत से लोग यह नहीं जानते क्योंकि रक्तदान के बाद जो है रक्त को विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्त जो है वो कई मरीजों के उपचार में उपयोगी हो सकता है। इसलिए आपका एक छोटा सा जो कदम है वो कई परिवारों के लिए उम्मीद बन सकता है क्योंकि रक्त की हर बूंद में छिपी होती है उम्मीद, और उम्मीद से ही जो है जीवन आगे बढ़ता है। दोस्तों इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि रक्तदान जो है वो क्यों ज़्यादा ज़रूरी है और नियमित रक्तदाता है वो क्यों ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आपातकालीन स्थिति में जो है वो स्थिति जो है वो कभी भी आ सकती है, और ऐसे समय में रक्त जो बैंक होते हैं जिन्हें हम ब्लड बैंक्स भी कहते हैं में पर्याप्त रक्त उपलब्ध होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए नियमित रक्तदाता जो होते हैं वो किसी भी स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत कड़ी माने जाते हैं। वे केवल रक्त ही नहीं देते बल्कि समाज को जो है सुरक्षा का भरोसा भी देते हैं। युवाओं की अगर हम बात करें तो अपने आसपास जो है आयोजित जितने भी रक्तदान शिविर है उनकी जानकारी उनको रखनी चाहिए, परिवार और मित्रों को भी उनको जो है मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी जो है अपना ब्लड डोनेट करें ताकि किसी की ज़िंदगी जो है वो बच सके। इसी के साथ दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस जो है हमें यह भी याद दिलाता है कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत जो है वो एक दूसरे की मदद करना ही है। कभी भी जो है किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए बड़े संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, और हमारी जो ये मानवीय प्रयास होते हैं यही जो है हमको आगे बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायक भी होते हैं क्योंकि ये जो वह प्रयास हो सकता है हमारा रक्तदान, जब हम रक्तदान करते हैं तो हम किसी व्यक्ति विशेष की जो है ज़िंदगी बचा रहे होते हैं। दोस्तों न धन का दान न वस्त्रों का दान, जीवन बचाए वो वही है रक्तदान। एक बूंद की नहीं बल्कि एक उम्मीद जो है आप रक्तदान की रखिए क्योंकि रक्तदान करके किसी को आप नई जिंदगी दे सकते हैं। दोस्तों इसी प्रेरक संदेश के साथ जो है आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपको जो है आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल एड्रेस रहता है youthexpresschuru@gmail.com। फिलहाल कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए, आपके रेडियो साथी हरीश मोहन को नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी FM 102.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण में आप जानेंगे हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। FM चूरू के स्टूडियो से आप सुन सकते हैं देशभक्ति फिल्मी गीत शाम 6:10 पर। संस्कृत में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से शाम 6:20 पर। शाम 6:30 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:40 पर और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं शाम 6:45 पर। किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, समय रहेगा शाम 7 बजे का। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता पेशे खिदमत होगा रात्रि 8 बजे। रात्रि 8:45 पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या। News@9 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। राजस्थानी लोक संगीत FM चूरू से सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। एक बार फिर से लुत्फ उठाइएगा फिल्म संगीत का रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10 बजे सुनिएगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर।

श्रोताओं को पुनः याद दिलाना चाहेंगे, फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे, और एक बार फिर से आप सुनेंगे फिल्म संगीत रात्रि 9:30 पर।

श्रोता भी सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में आपने जाना हमारे इस केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

FM 107.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: चार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 1.25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे देओक को हराया। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी।

0: श्रोता भी सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत FM 100.7 MHz पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुएल मैक्रोन इत्यनेन सह नीस नगरे प्रतिनिधि मंडल स्तरीयां वार्तां कृतवान्। अस्यां वार्तायां भारत फ्रांसयोः विशेष

आयोजित केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां।

0: समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में अन्य देशों के शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति और भविष्य को आकार दे रही हैं। प्रधानमंत्री ने भारत फ्रांस साझेदारी को ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के बाहर इस विशेष पहल की मेजबानी को फ्रांस के लिए सम्मान का विषय बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को न केवल अपार प्रतिभाओं से संपन्न देश के रूप में देख रही है, बल्कि नवाचार के देश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी शक्ति के रूप में भी देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने स्वतंत्रता के बाद से भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर भी श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इन दिनों राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 12 साल के विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विषय पर आयोजित प्रदर्शनी में सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सिरोही जिला मुख्यालय पर चल रही प्रदर्शनी का आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने अवलोकन किया। इस दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रहे। अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी का प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने अवलोकन किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।
2: देखो, जो मिलावट, गड़बड़, घोटाला रीड पेपर में, सब इंस्पेक्टर में, आरएस में, प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा। आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा। रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तार। कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए।
0: विकसित भारत संकल्प सम्मेलन के तहत आज बीकानेर में भाजपा की ओर से प्रबुद्ध जन सम्मेलन रखा गया। सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में भारत ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ काम किया है।
3: नल से जल की बात करो, हर घर बिजली की बात करो, बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो, इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा, ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा, भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू।
0: आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि यह उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविरों में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टरों को तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों की पोस्टिंग का अधिकार दिया है। 12 जून से शुरू हुए इन शिविरों के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्व विभाग ने प्रशासनिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है। जनता से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा करने और योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्राधिकार में नॉन फील्ड में कार्यरत तहसीलदारों तथा नायाब तहसीलदारों को तहसीलों या उप तहसीलों के खाली पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा भू राजस्व अधिनियम के तहत आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित किए जाने की जिला कलेक्टर की शक्तियां भी शिविर प्रभारियों को दी गई हैं। खातेदारों की भूमि से संबंधित मामले और अभिलेखों में गलतियों को ठीक करने के प्रकरण से संबंधित शक्तियां भी प्रभारियों को सौंपी गई हैं। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी भूमि बंटवारे और पंचायतों के सीमा ज्ञान की शक्तियां हस्तांतरित की गई हैं। सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन की उद्घोषणा की समय अवधि भी घटाकर 7 दिन कर दी है। राज्य में नमक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। नए नियमों के अनुसार अब नमक उद्योग के लिए भूखंड आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। पहले ये प्रक्रिया लॉटरी आधारित थी। जिन जिलों में नमक उत्पादन के लिए लवणीय भूमि उपलब्ध है उनमें अब सर्वे, सीमांकन और भूखंडों के मापन के बाद ही आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। पूर्व के नियमों में लीज समाप्त होने के 4 साल बाद नवीनीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं होने से राज्य की लगभग 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण से वंचित थी, जिसके कारण नमक उत्पादक काफी परेशान थे। राज्य सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को 6 महीने की एक मुश्त छूट प्रदान कर नमक उत्पादकों को राहत दी गई है। सरकार के इस फैसले से नमक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पाली में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए डे केयर सेंटर का आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने उद्घाटन किया। इस सेंटर में बुजुर्गों को उनके समय के सदुपयोग के लिए विभिन्न गतिविधियों के जरिए व्यस्त रखा जाएगा। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए समर्पित है।

सलुम्बर में किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की ओर जागरूक करने के लिए कार्यशाला रखी गई। जावर माइंस के सामुदायिक भवन में आयोजित कार्यशाला में सांसद डॉ. मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को रासायनिक उर्वरकों के बिना खेती करने और नवाचार अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। और अब मौसम। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राज्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों के साथ ही शेखावटी क्षेत्र के जिलों में आज कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर बना रहा। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद मौसम ने पलटा खाया और कई जगह बारिश हुई। बारिश के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इधर मौसम के सुहावना बने रहने से गर्मियों की छुट्टियों में प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर

0: रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में पिछले कुछ दिनों से घरेलू पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवक दर्ज की गई है। पर्वतीय पर्यटक स्थल आबूराज में इन दिनों राजस्थान के साथ ही पड़ोसी राज्य गुजरात से भी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंगम के एजबेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित बताया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां आयोजित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिलों के साथ कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से टोंक जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख क्षेत्रीय समाचार एकांश जयपुर की ओर से तैयार किया गया है। राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर टोंक जिला नवाबों की विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित ये जिला राजधानी जयपुर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और एक प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ पर स्थित बीसलपुर बांध राज्य में पेयजल का एक बड़ा स्रोत है। टोंक जिले की चिट्ठी में आज हम बात करेंगे पिछले महीने टोंक में हुई विभिन्न गतिविधियों के बारे में। ऊर्जा और टोंक जिला प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान श्री नागर ने देवली में दिव्यांगों को स्कूटी की सौगात दी। स्कूटी मिलने पर दिव्यांग जन के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम में कुल 59 स्कूटियों का वितरण किया गया। अपने संबोधन में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि स्कूटी मिलने से दिव्यांग जन का जीवन सुगम होगा, उन्हें रोजमर्रा के कामों में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। हाल ही में ग्राम विकास रथों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं को लेकर आमजन को जागरूक करने का कार्य किया गया ताकि एक भी पात्र व्यक्ति अपने हक से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने मालपुरा के नगर वन में जिला स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गंगा दशहरा से शुरू हुआ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संपन्न हुआ। इसका समापन समारोह आयोजित किया गया। जलदाय मंत्री ने नगर वन में पौधरोपण कर अधिकाधिक पेड़ लगाने और विकसित होने तक उनकी देखभाल करने का आह्वान किया और कपड़े के थैले वितरित कर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया। इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। श्री चौधरी ने पेड़ों पर परिंडे भी बांधे ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें जल, मिट्टी, शुद्ध हवा, भोजन उपलब्ध कराती है, इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि हम प्रकृति को संरक्षित रखें। श्री चौधरी ने बीते दिनों मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के चैनपुरा गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं और सुझाव उनके

0: के सामने रखे। श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीषण गर्मी के मद्देनजर पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाए रखने पर जोर देने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर टीना डाबी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका सहित अन्य आला अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला कलेक्टर ने लोगों से सही जानकारी देकर इस राष्ट्रीय महत्व के काम में सहयोग करने की अपील की है। इससे पहले स्वगणना का दौर चला, लोगों ने स्वगणना पोर्टल पर खुद अपनी जानकारी भरी। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। जगह जगह योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इसके तहत विद्यालयों, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी संस्थानों में योग अभ्यास का सिलसिला चल रहा है। इन कार्यक्रमों में नियमित योग अभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। अधिक मास के चलते इन दिनों जिले भर में धार्मिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जिले के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग कई तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते नजर आ रहे हैं। वहीं ईद उल अजहा का पर्व भी परंपरागत रूप से मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में लोगों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। इस अवसर पर कुर्बानी की रस्म अदा कर दावतों के दौर भी चले। टोंक जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। पहली आजरी खास खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसे विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण मत है आधारित बतायो। केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार रा 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रिया शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर माए लोगारी समस्यावारो मौका मात है समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज, पूर्वी और उत्तरी जिला रेसा के कई ठोड़ा मात है आंधी और बारिश। समाचार रे सागे मैं रचना पारिक और अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो आज नींस माए भारत इनोवेट्स कार्यक्रम रो भेला तौरू उद्घाटन करियो। भारत फ्रांस नवाचार बरस माए राख्या इन कार्यक्रम माए दूजा देशा रा शीर्ष नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता भी भेला विया। इन मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और फ्रांस रा मजबूत संबंधा रो जिक्र करियो। वणा कया के नवाचार प्रौद्योगिकी और भारत रा नौजवाना री आकांक्षावा देश रा विकास ने गति और भविष्य ने आकार दे रही है।
2: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
1: फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो भारत रे बारे इन विशेष पहल री मेजबानी ने फ्रांस खातर सम्मान रो विषय बतायो। वणा कया के दुनिया भारत ने अपार प्रतिभावां सु संपन्न नवाचार और प्रौद्योगिकी रा हलका माए एक क्रांतिकारी शक्ति रा रूप माए देख रही है। राष्ट्रपति मैक्रो आजादी रे पछे भारत रा सबू लंबा टेम ताई निर्वाचित प्रधानमंत्री बनबा माथे भी श्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। दोनों नेतावारे बीच शिष्टमंडल स्तरीय वार्ता जारी है। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ावा मात है चर्चा चल रही है जिनमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार भेड़ो है। केंद्रीय नरेंद्र मोदी सरकार 12 बरस पूरा हो बारे मौके आदिना राज्य भर में जागरूकता प्रदर्शनियां और प्रचार गतिविधियां चल रही है 12 साल विश्वास के विकास के जनकल्याण के विषय माथे राखी प्रदर्शनी में सरकारी उपलब्धियां और जनकल्याणकारी योजनाओं रो प्रचार प्रसार करियो जा रियो है सिरोही जिला मुख्यालय माथे चल रही प्रदर्शनी रो आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी जायजो लीनो इन दौरान स्थानीय सांसद लुम्बाराम चौधरी भी मौजूद रिया अलवर जिला मुख्यालय माथे लगाई जी प्रदर्शनी रो प्रभारी मंत्री डॉक्टर किडोरी लाल मीणा जायजो लीनो इन मौके प्रभारी मंत्री कया के राज्य सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रे चालता किणी दोषी ने बख्शियो नी जावेला खबर नवी सौ बातचीत में वणा कयो के कास्तकारा ने नकली खाद बीज बेच पावाला माथे कड़ी कार्यवाही जारी रहवेला
3: देखो जो मिलावट गड़बड़ घोटाला रीड पेपर में सब इंस्पेक्टर में आरएस में प्लस बीज में अगर संपूर्ण संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो मैं बड़ा कदम उठाऊंगा आरएस पेपर के बड़े आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करूंगा रीड पेपर के मगरमच्छ बचे हुए हैं उनकी गिरफ्तारी कोई व्यक्ति माना बचा है पर कोई बचता है तो उसमें भी पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए
1: इन कड़ी माए विकसित भारत संकल्प सम्मेलन रे तहत आज बीकानेर माए भाजपा कानून प्रबुद्ध जन सम्मेलन राख्यो गयो सम्मेलन माए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए लारला 12 बरस माए भारत विकास सुशासन राष्ट्रीय सुरक्षा सामाजिक न्याय और जन कल्याण हल्का माए घनी तरक्की करी है वे कया के मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास राम मंत्र रे सागे काम करियो है
4: नल से जल की बात करो हर घर बिजली की बात करो बिजली पहुंचने की बात हो और चाहे देश की रक्षा सुरक्षा की बात हो इसी कालखंड में देश ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा एयर स्ट्राइक देखा ऑपरेशन सिंदूर भी देखा और इसी कालखंड में धारा 370 समाप्त हुए भी देश ने देखा और जम्मू कश्मीर भी मुख्य धारा में जुड़ा भारत का संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू
1: आयुष मंत्रालय आज यूट्यूब माथे राख्या एक लाइव योग सत्र रे मार्फत नयो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनायो इन ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 435,072 लोग भाग लेना आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव कया के उपलब्धि दुनिया भर में योग री बढ़ती लोकप्रियता ने दर्शावे है बना लोगों योग ने आपरा रोजमर्रा रा जीवन रो हिस्सो बनावारी अरज करी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रो खास कार्यक्रम 21 जून ने कोल कोलकाता माए वेला ये समाचार आप आकाशवाणी राज जयपुर अजमेर केंद्रों सुन रिया हो राज्य सरकार प्रदेश माए राख्या जा रिया ग्रामीण सेवा शिविरा माए संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार री पोस्टिंग रो अधिकार दियो है 12 जून सु सरुविया इन शिविरा ने असरदार और चौकी तरीकाओं करबा खातर राजस्व महकमो प्रशासनिक शक्तियां बांट दीनो है जनता सो जुड़िया कामा ने टेम माथे पूरो करबा और योजनावारो फायदो हरेक जना ताई पुगाबा खातर सरकार यो कदम उठायो है अब संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर आपरा अधिकार खेतर माए नॉन फील्ड माए काम कर रिया तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने तहसीला या उप तहसीला माए खाली पद माथे नियुक्ति कर सकेला इनरे इतर भू राजस्व अधिनियम रे तहत आबादी विस्तार खातर जमी आरक्षित करिया जाबारी जिला कलेक्टर आरी शक्तियां भी शिविर प्रभारिया ने दी गई है खातेदारा जमी सु जुड़िया मामला और अभिलेखा माए गलतियां ने ठीक करवारा प्रकरण सु जुड़ी शक्तियां भी प्रभारिया ने सौंपी गई है तहसीलदार और नायब तहसीलदारा ने भी भूमि बंटवारा और पंचायतारा सीमा ज्ञान दी शक्तियां भी हस्तांतरित करी गई है सरकार भूमि आवंटन खातर आवेदन री उद्घोषणा री मियाद भी घटार 7 दिन कर दी है राज्य माए नमक उत्पादन ने बढ़ावो देबा खातर नियमा माए फेर बदल करियो गयो है नया नियमा रे मुजब अबे नमक उद्योग खातर भूखंड आवेदन ई ऑक्शन रे मार्फत करिया जावेला पहली आ प्रक्रिया लॉटरी आधारित ही जिन जिला माए नमक उत्पादन खातर लवणीय भूमि मुहैया है उन माए अबे सर्वे सीमांकन और भूखंडारा मापन रे पछे ही आवंटन री कार्यवाही करी जावेला पहली रा नियमा माए लीज खत्म हो बारे 4 बरस रे पछे नवीनीकरण करबारो कोई प्रावधान नहीं हो बासू राज्य री करीब 300 नमक उत्पादक इकाइयां लीज नवीनीकरण नहीं हो जिन वजह सो नमक उत्पादन घना परेशान हा राज्य सरकार कानियो इन भातरी इकाइयां ने 6 महीना री एक मुश्त छूट देर नमक उत्पादक ने राहत दी गई है सरकार इन फैसलाओ नमक

0: खलका माय निवेश बढ़ेला और रोजगार रा नया मौका वेला। पाली माय वरिष्ठ नागरिका खातर बनाया गया डे केयर सेंटर आरो आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत उद्घाटन किया। इन सेंटर माय बुजुर्गों खातर कई गतिविधियां चलाई जा रही है। इन मौके श्री गहलोत किया कि राज्य सरकार ठावा नागरिका रा कल्याण खातर समर्पित है। सलुम्बर माए कास्कारा ने जैविक और प्राकृतिक खेती री कानू जागरूक करबा खातर कार्यशाला राखी गई। जावर माइंसरा सामुदायिक भवन माए राखी जी। इन कार्यशाला माए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत और विधायक शांति देवी भाग लेना। इन मौके कास्कारा ने रासायनिक खाद रे बिना खेती और नवाचार करबाने प्रेरित करियो गयो। प्रदेश में प्री मानसून रो सिलसिलो तेज बह रियो है। पश्चिमी विक्षोभ रा असर उलारला 24 घंटा माए राज्य पूर्वी और पश्चिमी हल्का माए कुछ एक थोड़ा माथे बादल गरज बारे साके कटे कटे छितरायो में बरसियो। राज्य रा पूर्वी और उत्तरी हल्का रे सागई शेखावाटी खेतरा जिला माए कई थोड़ा माथे आंधी बारिश रो दौर चाल रियो है। राजधानी जयपुर माए दोपहर पछे मौसम पलट बसु कई थोड़ा माथे हल्को में बरस बसु दिन और रात रात तापमान माए गिरावट आई है। मौसम महकमो आज प्रदेश रा 9 जिला खातर ऑरेंज अलर्ट जारी करियो है। वठीने जैसलमेर अलावा सगला जिला में येलो अलर्ट ऐलान करियो गयो है। अठीने मौसम सुहावनो वेवासु गर्मियारी छुट्टियां रे चालता प्रदेश री सैर सपाटा री थोड़ा माथे रौनक देखी जा रही है। राजधानी जयपुर में लाला कुछ एक दिनाओं घरेली सैलानिया री तादाद बढ़ी है। पर्वतीय पर्यटन थौड़ आबूराज माए आदिना राजस्थान रे सागे ही पड़ोसी राज्य गुजरात भी बड़ी संख्या में सैलानी पुगरिया है। बत्ती जानकारी महाका सिरोही खबर नबी सो।
1: माउंट आबू में इन दिनों पर्यटकों की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक परिवार सहित माउंट आबू पहुंच रहे हैं और यहां के सुहावने मौसम का आनंद ले रहे हैं। प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में यहां का मौसम काफी राहत भरा बना हुआ है। रविवार को आसमान में बादल छाए रहने से मौसम और भी खुशनुमा हो गया, जिससे पर्यटकों ने विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत आपरा पहला मैच में पाकिस्तान रे सागे खेलेला। ग्रुप ए रो बकिंगम में एज वेस्टर्न माए भारतीय टीम रे मुजब सिंजा 7 बजे शुरू वेला। महिला टीम 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचा माए भारत हाल ताई पाकिस्तान ने 16 मई सू 13 मुकाबला माए हरा चुकियो है। विश्व रक्तदाता दिवस माथे आज प्रदेश भर में एक विधि राखी गई। सुरक्षित रक्तदान रा महत्व रा बारा माए जागरूकता लियाबा और स्वैच्छिक रक्तदान खातर प्रेरित कर बारा लगसू न्यारा न्यारा संगठन और संस्थाना री कानियो कार्यक्रम राखिया गया। अजमेरा जवाहरलाल नेहरू सपाखाना माए सम्मान समारोह राख्यो गयो। रक्तदाता जीवनदान विषय माथे वक्ता आपरा विचार राख्या। भीलवाड़ा माए रेड क्रॉस सोसायटी री कानियो राख्या कार्यक्रम माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधु रक्तदाता वारो सम्मान करियो। और अब है आखिर माए खास खबरां एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत फ्रांस साझेदारी ने आपसी विश्वास साझा मूल्य और भविष्य खातर समान दृष्टिकोण माथे आधारित बतायो। केंद्रीय री नरेंद्र मोदी सरकारा 12 बरस पूरा हो बारे मौके राज्य भर माए जागरूकता प्रदर्शनियां रखी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकारी उपलब्धियां गिनाई। राज्य में चल रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर में लोगारी समस्यावारो मौका माथे समाधान वैरियो है। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज। पूर्वी और उत्तरी जिला रे सागे कई थोड़ा माथे आंधी और बारिश। इन सागे ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन अठे पूरो भी मां को आगलो समाचार बुलेटिन कल सुमारे 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
2: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 7 बज चुके हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
3: पोता भूखी राबड़ी, दोयता भूखी खीर, मीठी लागे राबड़ीर, खाटी लागे खीर। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगले भाई बहना ने, टाबरा ने, बड़े बुजुर्गा ने, भाई अयूब खान गौड़,
4: राजकुमार का मोकला मोकला,
3: राम राम, राम राम राजू भाई, राम राम।
4: तो देखो जेठ को महीनो उतरन लाग गयो, मौसम है वो भी बदलन लाग गयो, और थेज की राबड़ी की बात करी तो राबड़ी तो देखो कह ई टेम मीठी लागे लागे। एक सग सग है जखी बाजरे का आटे की राबड़ी है, वह पौष्टिक भी हुआ है। अरे खुआ उतार ए जगह दो आर चलेड़ा है, तो ए बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से सोच के चलेड़ा है। तो अपन के एक अपने खान पान में और मतलब आ चीजा को ध्यान जो रखना।
3: देखो राजू भाई, आप है जगह आज को कार्यक्रम की शुरुआत है बा गृहस्थी से करी हो, और गृहस्थी की जब बात आवे तो राजू भाई गृहस्थी चलानो बड़ो दोरो काम है, क्यों गृहस्थी का मायने बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और जिम्मेदारी जब आप पूरी करा तो गृहस्थी की गाड़ी है बा देखो राजू भाई आज की सावल चाल जा। अब गृहस्थी की बात चाल गई है तो आप अपने घर के मायने सरकारी कर्मचारियों की आप बात करा तो दीतवार ने सह की छुट्टी होवे, कोई फैक्ट्री में लाग रहे है बाकी छुट्टी होवे, लेकिन आप गृहस्थी में माँ की बात करा तो देखो बा कदे ही है जिकी छुट्टी कौन करे। बा दिन के सौ पहला तो उठे और सौ बाद के मायने है बा सोवे।
4: भाई माँ की आप बात कराने तो माँ कहता है मुंह भरी जा, माँ से अगर आप खानो खा रहे हैं एक रोटी मांगा ने जना बा दो रोटी जलावे,
3: और माँ ने गिनती को नहीं आवे
4: क्योंकि बा यहां सोचे कि मेरे बेटो बढ़िया तरीके सिखावे, और कोई भी बेटी बेटे में बाप हर को नहीं समझे, सगले परिवार का सदस्य ने बराबर समझे। अब बात आवेगा आप और जगह रिश्ता है बग मायन की है कि पहली जी हम बात करा तो पुरुष को जिया नाम आवे, लेकिन माँ बाप को नाम लेना पहली माँ बाप को नाम।
3: बिल्कुल, देखो रजू भाई बहुत अच्छी बात करी हो कि भाई आप रिश्ता की आप बात करा तो शुरुआत आप दादा दादी से करा, नाना नानी से करा, काका काकी से करा हाँ, मामा मामी से करा हाँ, भाई भाभी से करा हाँ, भाई भाण से करा हाँ, देवर देवरानी से करा हाँ, और जेठ जिठानी से करा। जब माँ की बात आवे तो माँ और बाप, माँ को नाम पहला और बाप को नाम है जी को बाद में। तो देखो आपने समाज की परंपरा है, अपनी संस्कृति है, कभी माना अपा सबसे ऊंचो दर्जो है वो अपा देवा, और देनो भी चाहे जाए क्यों कि माँ अपनी जननी है, अपने जन्म दिए है, जन्म देनारी सबसे बड़ी माँ है, और माँ को मान सम्मान अपनो बहुत बड़ो कर्तव्य है। इनको आपा पूरी तरह निर्वहन करा और माँ के आंचल की छाया बस सदा अपने ऊपर है जी की बनेड़ी रहे।
4: बिल्कुल भाई, माँ को नाम जद आ जाए ने, जदि मान लो कि रिश्ता की जकी गरिमा है ने बा जाए

0: कि माँ को कर्ज आपा अगर आपने पैरां की आपा अपने शरीर की चमड़ी की अगर जूती बना के भी पहना दिया नहीं तो भी माँ को कर्ज है जो कोई उतरे।
1: बिल्कुल। तो माँ को कर्ज है, वो अपने पे जिंदगी भर रहेगो, और माँ को आपने मान सम्मान है वो पूरा करना। और देखो आपा कार्यक्रम में बात भी करी थी कि माँ ने गिनती को नहीं आवे। अगर आपा अपनी गृहिणी की बात करा तो मैंने पूछा कि एक रोटी तो बापा ने एक ही देवे, लेकिन जब माँ जब रोटी माँ से आपा रोटी मांगा तो एक रोटी मांगा तो बापा ने दो देवे। तो माँ को यो अपनत्व है, माँ को यो प्यार है वो औलाद के प्रति है। ए कर्तव्य ना अपने पूरी तरह से निर्वहन है वो करना। और देखो खेती और गृहस्थी को अपनो यो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम के मायने आपा जी को गृहस्थी की जब बात तेवड़ा तो माँ बिना है जी की गृहस्थी भी आधी अधूरी है।
0: भई देखो के रिश्ता का मायने जीता भी परिवार का रिश्ता है बांग उसे को आप आपकी जगह महत्व है लेकिन माँ को विशेष स्थान है। और आज देखो एक विशेष दिन भी है विश्व रक्तदाता दिवस।
1: बिल्कुल।
0: तो देखो के ओ जुको रक्त है वो कोई फैक्ट्री में कौन बने कोई मशीन इनको बना सके वो सिर्फ किया गया धमनिया में बने और मानव को रक्त है वो मानव के काम आ। तो मानव को जो को रक्त है वो भी के शरीर में बन सी। तो इसके लिए देखो के आज के दिन अपा बा लोगों ने याद करा जिसका बिना किसी स्वार्थ के और आपको रक्त दान करके जावे बाकी परिवार के मायने कोई विशेष दिन हुए कोई जन्मदिवस हुए या कोई विशेष दिन है कोई की पुण्यतिथि है तो बिक ऊपर या रक्तदान को शिविर रखें या रक्तदान यही करके जाएं तो बाल लोगों ने आज के दिन याद करना चाहिए।
1: बिल्कुल। देखो विश्व आज रक्तदाता दिवस है, 14 जून ना अपा हर साल है जी का ये दिवस ने मनावा। और ये दिवस को मोटो मनाने को उद्देश्य है राजू भाई आपनों ओ है कि आज की जी की भागम भाग की जिंदगी में बहुत सा जी का मजदूर है, मजदूरी कर रहे है, बा में थोड़ो सो जी के खून की कमी है, जेना आपा थैलेसीमिया कहवा हम रोग है यो, इमें रक्त की कमी और अल के रोगियां ने है जिको खून की जरूरत पड़े। और बठे बे लोग आकी खून है जिको दान करके जावे, जिका को कोई ब्लड रिलेशन को नहीं होवे, बांको कोई स्वार्थ को नहीं होवे, निस्वार्थ जान बचाने के खातर आपकी मर्जियों जिको रक्त है वो दान करके जावे, बांको उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए आपा हर साल 14 जून ने रक्तदाता दिवस के रूप में आपा मनावा। और जिका निस्वार्थ रक्तदान कर रहे है वह वीराना आपा अपने कार्यक्रम के माध्यम से है जिको बहुत बहुत धन्यवाद देवा। और अयल की प्रक्रिया वह जरूरतमंद की रक्त के रूप में अगर पड़े तो वह अगली लाइन के मायने आपा ने खड़िया मिले कभी मैं हाँ इन को जीवन बचानो अपनो है जिको धर्म है वो आपा धर्म निभाने के खातर रक्त जिको दान करके आपा आवा।
0: बिल्कुल। तो देखो रक्तदान महादान हुए तो इस बारे का मैंने देखो कि जका निस्वार्थ भाव से रक्तदान करे तो बन मोकली मोकली शुभकामना और बधाई देवा।
1: बिल्कुल। देखो और ये की शुरुआत देखो आधिकारिक रूप से है जिको WHO द्वारा 2004 में करी गई थी कि शुरुआत 2004 से लेके आज तक ऐसा पहला भी बहुत सा लोग है जिका ब्लड दान करता, लेकिन इनकी जागरूकता बढ़ाने के खातर WHO ने यो एक 2004 14 जून ने यो विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनानो शुरू करे है ताकि इमल जागरूकता बढ़े। जागरूकता बढ़ेगी तो एक अपने मन में एक भ्रांति है राजू भाई अपने समाज में, आप विशेष रूप से ग्रामीण अंचल का रहना रहा तो एक अब दिमाग में अपने आप बात आवे कि अभी खून दान करने से अपने शरीर का मायने है जी की कमजोरी आवे, अयल की धारणा अपने दिमाग में बनेड़ी है। ये धारणा ने दूर करने के खातर अयल का अपा जी का दिवस मनावा, जैसे कि वह के दिमाग में जी की गलत धारणा है वा बारे निकले और आप आगे बढ़ चढ़ की जिको हिस्सों लेवा कह को जीवन बचाने के लिए। और आजकल देखो अनेक प्रकार का राजू भाई रोग हो गया है, आपा डेंगू की आपा बात करा, आपा मलेरिया की आपा बात करा, तो विशेष रूप से डेंगू का जिका मरीज होवे है बना में प्लाज्मा की कमी होवे,

0: ब्लड देवड़ो है भी मस प्लाज्मा निकाल की और रोगी के चढ़ावे तो भी की जान है जा बचे। तो अपने जद भी अपन मौको मिले रक्तदान करने को भी मौके ना अपन चूकनो नहीं है। राजू मैं अपने एक बात और है कि जब अपने समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति होया करती बात धीरे धीरे आज अपने बहुत कम है बात देखने मिले धीरे धीरे जागरूकता ज्या ज्या फैलेगी अब भ्रांति भी अपने समाज में जी दूर हो जाएगी और जनहानि रोकने के लिए रक्तदान है वो अपा आगा आकी है जी को करने की शुरुआत कर चुका है और आने वक्त के मायने और भी आपा करेगा।
1: तो देखो कह थे बहुत बढ़िया सामूहिक चर्चा की करी और अब देखो कह ऊपरली पड़ा रही भाई खरीफ फसलों की बिजाई को टेम आ रही तो इस टेम की है कि आपने खेत को प्रबंध करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर मान लो आप इस टेम प्रबंध नहीं करियो तो आगे कद करांगा। तो भी के लिए देखो खेती का मायने एक तो किया गया खाद गिरानी खाद गिराने के साथ साथ खाद ने खिंडानी और खिंडा के भी कमाई ने पाड़ करवानी और जिखा भाई है जिखा पाड़ करवा रखी है तो बाकी लिए अगर वो परसों वालों में है अगर उग्यो तो बिजाई को टाइम भी बहुत बढ़िया चल रही है। इससे जुड़ेड़ी देखो एक चर्चा आप और करा कि भाई आप अगर आपने खेत को मृदा स्वास्थ्य कार्ड अगर बना रखे ने तो भी उनकी है कि आपने पतो लाग जाए कभी आपने खेत के मायने कौन सा पोषक तत्व तो भरपूर मात्रा में
0: कौन सा की कमी है
1: और बिक मायने आप देखा जना बिक मायने एक जमीन को या मृदा को और पानी को एक पीएच मान हुआ है बित्त पीएच मान से अगर ज्यादा है तो भी वो नुकसानदायक है और कम है तो भी वो नुकसानदायक है। अब आजकल किया है कि ज्या किसान ज्या ज्या जागरूक है ज्या ज्या तो वह किया गया भरपूर मात्रा का मायने यूरिया देवे लग गया और उर्वरक भी देवे लग गया। अब पण बिक मायने आ सोचनी में को नहीं आवे कि जमीन को जुको मृदा को जुको पीएच मान है वो बढ़ रहे धीरे धीरे और बढ़ने का पीछे कारण हो गयो कि वह जमीन है जिसकी या मान लियो इतनी पक्की हो जाए भाई आज के देखो 15-20 साल पहले आप मतलब या कहता के खेत का मान ज्यादा ज्यादा या कहता हीरो को डा दियो पलाऊ कटाने को डिस्क कटाने की ए बात को नहीं करता क्योंकि जब जमीन इतनी पक्की होती को नहीं जमीन मतलब एकदम बढ़िया होती भी टाइम में अगर ऊंटा से आप हल से अगर पाड़ कर देता तो भी पाड़ने भी बहुत बढ़िया मानता। अब क्या है कि जमीन इतनी पक्की पड़ गई कभी मृदा को पीएच मान है वो 8.5% से ज्यादा जावे लगे और सोडियम की मात्रा है जखी भी बढ़न लागी यानी 15% ज्यादा होने लागी तो आपन के करनो है कि इस जमीन के मायने आपा के करा कि जिप्सम को छिड़काव करा और जिप्सम को छिड़काव करने से की है कि आपनी मृदा को पीएच मान घटसी और मृदा है जखी उपजाऊ बनसी। अब क्या है कि अपा जमीन है तो जमीन का मायने देखो कि कोई भी चीज वो बाबी की मात्रा के हिसाब से गैर छाजना तो वो फायदा कर सी तो जिप्सम भी देख लियो कि 300 से 500 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर की दरू अगर आप काम में ले तो अपनी मृदा है वह स्वस्थ बन सके यानी वाह क्या है घुलनशील बन जा। अब देखो आप फसल की बात करा पौधे की बात करा तो बिक मायने जमीन बीज हवा पानी प्रकाश आ सगली चीजा को योगदान हुए तो सगली चीजा को योगदान जद उसी का जद के है कि वो पानी मृदा बीज भी कमाइन मतलब घुलसी तो ई वास्ता अपन के है कि जिप्सम को प्रयोग भी
0: कर लेना चाहिए। देखो राजू भाई थे कार्यक्रम में बात करी कि भी जमीन अपनी है जी की करडी होगी और बिना आप नरम बनाने के लिए जी का जिप्सम को आपा प्रयोग करा लेकिन कठिन कठिन राजू भाई बी का जिम्मेदार आपा यहाँ का जमीन ना आपा कर दी कर ली क्योंकि सिंचित क्षेत्र का मायना आपा पानी को अत्यधिक दोहन करके सिंचाई कर करके अपनी जमीन के जिकी पोषक तत्व ना आपा ही खत्म कर दिया। अब पोषक तत्व जब अपनी जमीन का खत्म हो गया तो उत्पादन है वो निश्चित रूप से घटके आओगे। अब उत्पादन घटके आओगे तो जन को पेड़

है वो बरगो को नहीं, तो जड़ को पेट भरने के लिए अपना किसान भाई है आपकी खेत की जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल अंधाधुंध करियो, उत्पादन आपा ने खूब मिलियो, पर आपा लेरने मुड़की को देखा अपनी जमीन है वह धीरे

0: स्वास्थ्य की जांच आपा करवा की और कृषि विशेषज्ञ की सिफारिश के अनुसार आपा उर्वरकों को छिड़काव करके अपने खेत की जमीन ने आपा उपजाऊ है वह बनावा। अब उपजाऊ बनाने के लिए देखो आपा पारंपरिक तौर तरीका तो राजू भाई सारा का सारा भूल गया का आपा अपने खेत ने जिको अपने घर जिका गाय भैंस और ऊंट और भेड़ और बकरी ए होया करती बीकी सारी की सारी देखो गोबर की खाद आपा एक जगह भेड़ी कर लेता और जब आपा खेती लाट लेता तो अब को छिड़काव आप अपने खेत में कर देता और गहरी जुताई है वह कर देता तो अगली जिके भी आप फसल लेता तो बा में सारा का सारा पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती। अब इतो बखत अपना गन हाथ को नहीं कापा आपा को भेड़ो करके आपा खेत में छिड़क देवा और भी की बान है वह करवा देवा क्योंकि साल में आपा दो दो तीन तीन खेती है वह लेवल आ गया इतो बखत मिलियो को नहीं तो अब जरूरत है का आपा ने अपने खेत की उर्वरा शक्ति मजबूत करने के लिए अपन देसी नुस्खा है जिको अपने घर का मायने अपन क्रिया करता गाय को गोबर अपने जो पेड़ पत्तियां की जिकी पेड़ा की पेड़ पत्तियां और ऐ सारा को सारो मिश्रण हो तो बेन अपा चोखी तरिया तैयार करके और आप अपने खेत के मायने छिड़क की बान करा दिया तो अपने खेत की उर्वरा शक्ति है वह मजबूत हो जाएगी। अब थे कार्यक्रम में जिप्सम की आप बात करी हो तो अपने बडेरा किसाना ने पतो ही को नहीं हो कभी जिप्सम भी आपा खेत में छिड़का जैसे केवल अपने जमीन को जिको खार आयो है वो दूर हो जाए तो क्योंकि पे टाइम देखो जिप्सम को इस्तेमाल हो तो ही को नहीं मोटा ढेर होता खेतांग मायने जिका अपना फसल को अवशेष पड़ो गल जा तो बाकी जरूरत शक्ति है वह आप ही बढ़ जाती। अब बखत के सागा आपा ने राजू भाई थोड़ो सो समझौता करके वापस अपनी पारंपरिक पद्धति की तरफ आपा बढ़ा तो अपने खेत को जिको अन्न है वो गुणवत्तापूर्ण आपने मिले
1: भाई भी कमाइन कारण हो गयो ने कि आपा दोनों फसल लेवल आ गया रबी की लेवल आ गया खरीफ की लेवल आ गया। अब इम के है कि ज्या आपा जमीन का मायने तिलनी फसल है बात तो खरीफ में ले ली और भी जमीन में तिलनी फसल है रबी में ले ली तो तिलनी फसल में क्या हुआ तेल की मात्रा आवे तो तेल की मात्रा हुआ तो बाकी जमीन को भी एकदम पूरो कस काट के छोड़े तो ई वास्ते अपन किया है बोई की टेम भी वो ध्यान रखना चीज है कि तिलनी फसल बोई है तो भी कमाइन बाद में दलनी फसल बो और एक साग साग है देखो जितनी भी जरूरी चीज है ना भाई अब जी पहले वाला किसान जी थे कहो जी के वह जानता तो को नहीं पर भाई इतो जरूर जानता का आ डेरी वाली जमीन है आ धोलती माटी वाली है आ कदी उतरे को नहीं आ बता का बड़ा जानकार होता अब जहां धोलती माटी की जिया मान लो चिकनी माटी की जमीन है तो भी माटी में कितनी सिंचाई करो बस पहाड़ करने की जरूरत है भी कमाई ने अपना आप ही मतलब उपजाऊ पर है जो आसी क्योंकि भी कमाई जिप्सम है
0: जिप्सम है जो उपजाऊपन है
1: अब पौधा के लिए फसल के लिए नत्रजन फास्फोरस पोटास और गंधक ऐ क्या है कि बराबर मात्रा का मायने मिले ने जड़ा क्या है बाकी बढ़वार भी अच्छी हो। अब कई बार यहाँ देखना मावा खेत का मायने कै बाजरी ग्वार मूंग पट गया तो बहुत लेकिन बाग मायन की है कि इतो ज्यादा फाल भी नहीं है तो ई वास्ते अपन की है
0: बिल्कुल देखो उम्मीद करा अपना इताड़ू है जिका आनारी बिजाई के मायने खरीफ को जिको वक्त अब देखो कई जगह तो बिजाई अपने किसान भाई है कर ली कह आखिर है ना बोले जेठा बेटा बाजरी बड़ भागी होए जेठ के मायने जिको अपना किसान है वो बाजरो बेच दियो और जद मानसून की बिरखा होगी तो देखो राजू भाई बा बाजरी अपनी ताल सुधा है बा जाओगी बातचीत आप और भी कर सा अपने तालवान अब ले चला गीत संगीत की ओर सुनावा एक मीठी सी लोक रचना।

तो सीमा मिश्रा और साथी गाड़ी लोक रचना आप सुनी और अब देखो आपनी चर्चा ने आगे बढ़ावा कि भाई आपनी खेतीबाड़ी में पशुपालन में

0: का नया नया नवाचार हुए है। बिक महीना बापा देखो के मिशन चर्चा करता रहा वहां कह सुके चारे सागे आ रहे हो चारो देव तो आपने की है चरी से अलावा कोई चीज ही नहीं भाई। अब जी आप
1: चरी भी जटा सिंची क्षेत्र है।
0: हाँ अब दूसरी बात यह रहेगी मौसम के हिसाब को वे कह इतनी तपती पड़े कह बचरी भी बढ़िया ढंग से कोनी हुए तो बिक लिए जिस हिसाब से आप जहाँ पोली हाउस बना के और जहाँ सब्जी उत्पादन करा जिस हिसाब से आप के करा के अपने मकान के मायन कह दो या घर के मायन कह दो एक इसी मतलब की है कि घास है अजोला घास जखी आपा लगास का तो यूं की है कि अजोला घास एक तो बारहमासी है दूसरी बात है कि पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है पशु एज का शौक से खावे इन और अजोला घास लगाने के लिए अपन कोई लंबी चौड़ी दूरी की जरूरत को नहीं कि जहां आप छोटी ट्रेस बनावा ना खेल बनावा तो भी हम जहाँ 6 मीटर लंबी बना लिया 1 मीटर चौड़ी बना लिया 0.3 मीटर गहराई कर लिया एक ही जहाँ आप खेल टाइप जिया बना ली बिक के बाद के मायने आप केक रहा कह एक ही कैरी के मायने 10 चूल्हे के 15 किलो ताड़ी उपजाऊ मिट्टी गेर दिया 2 किलो गोबर गेर दिया 30 ग्राम सुपर फास्फेट गेर दिया और कैरी ने किया गया 300 तक पानी उभर दिया। अब आज की क्यारी है एक मायने आप जोला का जहाँ बीज जगह गिर दिया तो आ के 6-7 दिन आऊ भर जैसी जद के करांगा आप ऊपर ऊपर जिस हिसाब से किएगा जगह जोला आइडा है बन के चूंट लिया और बन किएगा अपने पशु को जो आहार है पी का मायने सम्मिलित करा ये जोला घास की बताऊ विशेषता कै 1 किलो दाने के बराबर 1 किलो जोला मतलब फायदेमंद हुआ है। तो अपन किएगा अपने पशुधन ने अजोला घास देनो चीज है और दुग्ध उत्पादन की अगर बात करा तो 15 से लेके 20% ताड़ी दूध है जिसको बढ़े। अब कोई भी नयो काम है वो आप क्यों करा वो इसलिए करांगे बिक मायने अपन फायदो है तो अजोला घास देखो एक तो सस्तो है कहीं के मायने कोई लंबी चौड़ी जगह की जरूरत को नहीं आप यह मान लो कहीं थोड़ी सी जगह का मायने उत्पादित है जिसको
1: लेस का। देखो राजू भाई अपने अंचल के मायने अपने पशुआ ने देखो हरियो खाने की जिकी आदत आप सिंचित क्षेत्र के रूप में घास लियो हो। अब देखो 6-12 महीना थे कार्यक्रम में बात भी करी कि भाई तापमान है इतना बढ़ जावे कि भाई वे भी मुरझा जावे झुलस जावे तो वो एक नयो जिको अपना पशु पालक प्रयोग करो है अजोला घास को उत्पादन लेके आपा और अपने पशु के लिए हरियो चारे के रूप में आपा को इस्तेमाल कर लिया तो वो अपने लिए पशुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। अब जरूरत आ है कि भाई इनकी आपने उत्पादन किया लेनो है तो एक तो आपने छाया का मायने की है जिकी खेल है बा बनानी है और खेल भी आपको देखो तापमान और खेल ने छाया का मायने 35-40 डिग्री तापमान तक आपा है जिको एक मायने उत्पादन है वो लेस का और एक ही उजाला घास जब वो खेल में उग जावे तो बाकी पौधे की जिकी बढ़वार है बा 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर है वो इनकी बड़े है और लंबाई की 2 सेंटीमीटर चौड़ा जिका पत्ता हुए वह हुए तो एक तोड़ की पत्ता ऊपर ऊपर से और अपने पशु नापा सूखे चारे में मिला देवा एक बार तो अपने पशु है भी वो अन्ना कानी करे वो लेकिन भी ने धीरे धीरे आपने भी की आदत के मायने है जिको शुमार करना है कभी आदत डालो जहाँ कई बार आप बंटे में खुला दियो कई बार आप सूखे चारे में खुला दियो और कई बार मुंह में जिको घास कितरियां दे की और जीभ ने थोड़ा सो पंपोल देवा तो वो भी को स्वाद जब भी ना आने लग जाओगे तो वो पशु है वो दिन के रातन का है जिको आप ही है जिको मांगन लग जाओगे कि अजोला घास है वो अपने शरीर के लिए बहुत अच्छो है और पशु पालका के लिए यह अच्छो है कि वैसे दूध उत्पादन है वो अपने बढ़ के मिले तो एक मायने कार्बनिक पदार्थ भी होवे प्रोटीन भी होवे एमे रेशियो भी होवे एक मायने नाइट्रोजन भी।

0: एमें अम्ल भी हो, एमें कैल्शियम भी हो, एमें फॉस्फोरस भी हो, एमें पोटेशियम भी हो। तो देखो कितना हमें पोषक तत्व की पूर्ति है भाई, एक उजोला घास के रूप में अपने पशु के लिए फायदेमंद होवे है।
1: भाई देखो एक तो आ बात है कि पशु ने कोई भी चीज की आदत पड़नी जरूरी है। पहले आप क्या है कि पशुओं के लिए गुआर को बंटो देता, अब क्या है कि जिया खड़ देवा लग गया, तो खड़ ने जिया सुबह देनी है तो रात ने भेज दी, और रात ने देनी है तो सुबह भेज दी। अब खड़ा है जिसका खवा लग गया ना पशु, अब आने एक तरफ जिया मान लो बंटो मिलो और एक तरफ खड़ मिलो, खड़ ने जाता
0: की तरफ भाग सी।
1: तो इस तरीके से अजोला घास है जो बड़ो टेस्टी है, और अजोला घास 2 से लेकर 2.5 किलो ताणी मिलाने से 15 से लेकर 20% ताणी दूध है जो बढ़ जी। एक के वे कि जिया अपना दुधारू पशु है तो दुधारू पशुओं का क्या है कि कैल्शियम और वसा ए दो चीज बहुत महत्व रखे। कि कोई जिया डेयरी पर या आप दूध बेचने की बात करा तो बे के देख सी बे भी दूध का मायन वसा देख सी, कभी वसा कितनी गए और भी के हिसाब से आप पिसा बता सी भाई तार दूध की आ रेट मिल सी। तो इससे की है कि वसा बढ़े, वसा बढ़े। दूसरी बात का अपनो पशु है जो निरोग रहे। एक अजोला घास में अब भी चीज पाई गई है कि आज पशुपालक सामने बांझपन की बहुत बड़ी समस्या है कि पशु ब्यावे को नहीं, या मतलब कि है भाई देरी से ब्यावे। तो इसके लिए देखो कि अजोला घास के बारे में बताया जाएगा बांझपन निवारण के लिए बहुत उपयोगी है, दूध को उत्पादन से बढ़ा है, और दूध को उत्पादन जब पशुपालक का बढ़ी सी ने जना देखो फायदो तो भी हुई सी। एक सागे सागे देखो एक बात और है कि पशु के मायन कोई खून की या फास्फोरस की कमी है तो बा अजोला घास खिलाने से दूर हो सी, ये वास्ता अपन किएगा अजोला घास है जो खिलाना।
0: देखो रज भाई आप कार्यक्रम में दूध अपने पशुओं से उत्पादन की आप बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम अपने पशु को बहुत कम हो जावे, कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए देखो अजोला घास को भी बहुत बड़ो रोल होवे। अगर समय समय पर आप अजोला घास अपने पशु ने दे रहे हैं तो अपने पशु में कैल्शियम की कमी है वह बिल्कुल को नहीं होवे, और जब कैल्शियम की कमी नहीं हो सी तो निश्चित रूप से पशु का मायने दूध उत्पादन है वो आपने बढ़ की मिल सी।
1: और एक मायने अब भी है कि अजोला घास है जो सिर्फ दुधारू पशुओं के लिए नहीं बल्कि और जिया दूसरा पशु है जिया मान लो भेड़ पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, खरगोश है, बटेर है, गिन्नी फाउल है, तो आंख आहार में भी आप सम्मिलित कर सका। आ जरूरी को नहीं कि बडोड़ा जिया गाय भैंस है बानी सिर्फ अजोला खिलाओ, आप बकरिया ने भी अजोला खिला सका, भेड़ा ने भी अजोला खिला सका, यानी बाको भी शरीर निरोग रहसी, बाका भी दूध उत्पादन बढ़ गया आसी, तो अजोला घास एक फायदार चीज है।
0: दूसरो मोटो फायदो राजू भाई ओ है कि बहुत सा अपना किसान भाई आपके खेत में जी के बिजाई कौन करे, तो अजोला घास को उत्पादन आपके खेत में लेकी और वह अन्य पशुपालक ने है जिका बेच भी सके, बस एक बांका आय को साधन है वो बन जावे। तो जरूर है अपने पशुओं के लिए अजोला घास को उत्पादन है वो आपने लेना है राजू भाई। बातचीत तो आप अपने गीताड़ुआ से और भी करेगा, अब एक बार फिर ले चला गीत संगीत की ओर, सुनावा अब्दुल गनी को गायडो यो मीठो सो लोकगीत।

0: अभी आपा अब्दुल गनी की आवाज के मैंने अठावड़ी सी लोक रचना सुनी और अब देखो आपनी चर्चा आगे बढ़ावा के भी खेतीबाड़ी का मैंने जिया जिया नवाचार है तो बिया बिया के अगर नवाचारों को अपन पत्तो क्यों लगे वो लगे के संचार क्रांति के आज रेडियो को खेतीबाड़ी में बहुत बड़ो योगदान है। रेडियो के ऊपर ठावड़ी ठावड़ी चर्चा सुनने मिले, विशेषज्ञ के साथ भेंट वार्ता सुनने मिले, कणो मतलब के आज खेतीबाड़ी के मायने रेडियो को बहुत बड़ो योगदान है। एक सागे सागे जिया टेलीविजन को योगदान है, अखबार को योगदान है, पत्र पत्रिकाओं को योगदान है, कणो मतलब का संचार क्रांति आपने खेतीबाड़ी में एक नई जान डाल दी।
1: बिल्कुल, देखो रज भाई, आपने आज की बात जो बताई है कि खेतीबाड़ी के मैंने संचार क्रांति, रेडियो है, टीवी है, समाचार पत्र है, कृषि पत्रिका है, जो भी है, एक सागे सागे मोबाइल की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आज आप हर तरह का जिका खेतीबाड़ी से जुड़ा ऐप है वह आप डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद अपन पतो लाग जावे कि भाई जब मौसम की आप बात करा तो मौसम की भविष्यवाणी आप भी समय समय पर बताता रहा, समाचार में भी अपना किसान भाई सुनता रहे, और मोबाइल के मायने भी मौसम को ऐप है भी के मायने भी देखो पढ़िया लिखा किसान है, मौसम की अनुमान है वह लगा ले वे। तो मौसम को जब अनुमान लाग जावे तो कुछ हद तक अपना किसान भाई है मौसम से होना नुकसान की सुरक्षा है वह आपका स्तर के ऊपर कर ले। तो कृषि में जितो भी संचार क्रांति को योगदान हुए शुरुआत आप रेडियो से करा, सबसे सस्तो और सुलभ रेडियो है। अपने ही कार्यक्रम की आप बात करा तो गांव गांव ढाणी ढाणी तक अपना इताड़ो अपने कार्यक्रम ने सुने कभी खेतीबाड़ी के मायने रेडियो को बहुत बड़ो योगदान रहो है और रेडियो को योगदान आगे भी यही रहते रहोगो कि रेडियो के ऊपर कृषि विशेषज्ञ भी आके कृषका ने जी को सलाह देवे, स्वास्थ्य से जुड़ा चिकित्सक है वह भी आके है जी का सलाह देवे, पशु से जुड़ेरा जी का चिकित्सक है वह भी पशुओं से संबंधित रोगों से बचाव का तौर तरीका बतावे, टीकाकरण के बारे में बतावे। तो एक बहुत बड़ी

0: कृषि के क्षेत्र में क्रांति और कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े है, तो दोनों तरह को जिको फायदो अपने ने रेडियो के माध्यम से गांव गांव डाणी डाणी बैठे किसाना ने मिल रहे है। कोई है को शुल्क कौन लागे आजकल, तो देखो बड़ा रेडियो आया करता, बड़ा रेडियो से धीरे धीरे धीरे धीरे एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड है अपना किसान भाई है वो कर लियो, भाई आकाशवाणी चूरू सुनना चाहो तो वे सुन सके और दूसरा केंद्र का भी अगर कार्यक्रम वे सुनना चाहे तो वे भी अपना ऐप के माध्यम से जी का सुन सके है।
1: भाई थे जहाँ बात करी का बड़ो सारो रेडियो आया कर तो भी रेडियो की उपयोगिता अलग ही कह, पांच दस किसान है जगह भी का आगे बैठ जाता और इतना जहाँ चौपाल सजती तो भी टेम देखो चर्चा भी सुनता, लोग इतर लोग भजन भी सुनता एक बात। दूसरी बात कि पुरानी टेम का किसान है ने वह कई बात पर मनन करता, आपको दिमाग को लगाता, तो वो बांगो बहुत बड़ो योगदान हो भाई का। कोई भी बात है जहाँ मान लो अपन यहाँ दिख रही है वो गिल्लो है जिको 3 किलोमीटर जैसी आ गांव वासी एर एक गले के ऊपर मतलब गांव वासी 5 किलोमीटर पर आपा जा रहे भी 3 किलोमीटर पर यहाँ, तो इससे देखो के फायदो वो ई वास्ते देखो का अपना कृषि विशेषज्ञ जखी अपन सलाह दे बिक के हिसाब से अपन किया के सालनो बहुत जरूरी है। या नहीं का आज जिया बाजारीकरण की ओर चल रहे का किसान है जिसके ऊपर बाजार आवी हो रही, आज देखो कह बीज की आप बात करा तो कह बीज है जुको ओ बीज है जुको बढ़िया है आ खाद बढ़िया है ओ रसायन है कह ई रसायनों तो खरपतवार है जगह नष्ट हो जिसी तो भी नष्ट तो जी पण भी जमीन ना आप विषैली बना ली ने तो भाई विषैली जमीन है जो कितना दिन अपन देखो अन्न उपजार दे ली। ई वास्ते की है अपन कोई भी चीज है बिको सही गलत को पैमाना होना चाहिए अपने कने और संचार क्रांति है वह अपने मायने इको बहुत बड़ो योगदान है।
0: बिल्कुल, और संचार क्रांति को देखो अपने किसान भाई है फायदो भी उठाए के देखा आप यहाँ कार्यक्रम में आप बात करी उजाला घास की, अपना बडेरा किसान उजाला को नाम ही गुण सुनियो और आज देखो अपने उजाला को उत्पादन लेकर पशुओं का पौष्टिक आहार के रूप में इन आप है जी को शामिल करियो वो भी एक संचार क्रांति की देन है। तो रजू भाई आज आप खेती बाड़ी के मंजीता भी नया नवाचार करे है, संचार क्रांति को बहुत बड़ो योगदान है।
1: और एक सागे सागे देखो किसान कॉल सेंटर है तो किसान कॉल सेंटर पर भी आप देखो सुबह 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे ताणी आपने खेती बाड़ी से जुड़ेड़ी कोई भी समस्या है तो भी को समाधान ले इसका बैठे जगह बैठे है वह विशेषज्ञ कह रहा है का अपन अपनी भाषा में बात करेगा। अपन देखो लक्षण तो सही सही बताना पड़ेगा कभी अपनी फसल का मायने के रोग लाग रहे या के रंग की फसल हो रही है, जड़ गलन हो रही है, तना गलन हो रही है, बात तो अपन पूरी बतानी पड़ेगी तो वो भी एक प्रकार को संचार को साधन ही है।
0: बिल्कुल, देखो आपदा की जब आप बात करा तो गांव गांव ढाणी ढाणी तक आप है जी को अपने कार्यक्रम के माध्यम से सूचना भेज देवा कभी किसान भाई आज मौसम है वो खराब होगो, आंधी आओगी, ओलावृष्टि होगी, अतिवृष्टि होगी, तो क्या है का अपना किसान भाई है बाकी सुरक्षित जगह है जी की ढूंढ लेवे, आपको ढोर ढांडे ने भी देखो सुरक्षित जगह का मायने है जी का बांध देवे और समय समय पर आप बताता भी रहा कि भाई जब मौसम खराब हो जाए आंधी रोडो आ रहे तो आपने सुरक्षित स्थान की तलाश के मायने निकलने खुले में अपन बिल्कुल नहीं रहनो है, गलेड़ा कोई मकान है बेके नहीं बी के ओट में कदे नहीं खड़े रहने, पेड़ की नीचा अपन कदे नहीं खड़े रहने, तो अपन के एक संचार के माध्यम से आपा है जी का अपने ताड़वा तक पहुंचावा और संचार को साधन सबसे सस्तो और सुलभ अपनो रेडियो है। रजू भाई बातचीत तो आप और भी अपने ताड़वा से कर से आप मनडो कर रहे हैं कभी आथन को बखत है आथन के बखत में चौपाल जब गांव में स्टूडियो में जमे तो इताड़ू उड़ी करे कभी बातचीत के सागे सागे जी का मीठा मीठा लोकगीत और लोक भजन है तो सुनावा एक मीठी सी लोक रचना।

0: किसान भाई, अभी आपने सीमा मिश्रा और निर्मल मिश्रा को गायडो यो मीठो सो लोकगीत सुनियो, हिवड़े से दूर मत जाए लग जावे तावड़ियो। तो देखो राजू भाई, जेठ को महीनो चाल रहे है, जेठ के महीने में जब तावड़ो तपे है तो देखो मन है वो यहाँ मिचलावे। कभी गर्मी बहुत है, जे क्या करे ना के तातो पड़े है तावड़ो, तातो पड़े है भाई तावड़ो, और मरुधर पुग्या ठेठ, भला भली सिर ढक दे जबरो मीनो जेठ, जबरो मीनो जेठ। तो देखो राजू भाई, जेठ के मायने तो देखो क्या करे ना अपना बडेरा, क्या बोले जेठ घर बढ़ता ही बिनणिया है जीव घूंटो काट लेवे। तो ओ जेठ को मीनो चाल रहे, तो आप सड़किया पर भी देखा तो मानस है जिका आपको मुंह है जिका ढक्की चाल रहा है, कभी किया भी आप है जिको जेठ के तावड़े से है जिको बंचा।
1: भाई देखो के सिर ढकनो, पहले आला लोग है जगह देखो सिर पर पगड़ी बांधता। अब पगड़ी को प्रचलन तो कम हो गयो, लेकिन तावड़े से बचने के लिए सिर के ऊपर तौलियो तो बांधनी चीज है,
0: और बांधे भी लाग रहे,
1: बांधने भी लाग रहे। एक सागे सागे देखो के आज लू से बचाव का जगह तरीका है, वे भी अपनाओ, जहाँ खाटे की डोवे की राबड़ी पियो, छा पियो, एक सागे सागे नींबू पीनो, वो भी बहुत जरूरी है। एक सागे सागे ठंडी तासीर की जीती भी चीज आई, वह अपने आहार में किया पखाने में सम्मिलित करा।
0: देखो प्रकृति भी देखो, मौसम के अनुसार अपने खान पीन की जितनी चीजा है, वह ज्या थे कार्यक्रम में बात करी कि छा राबड़ी जेठ के महीने में गर्मी के मौसम में, और तरबूज की आप बात करा, और अपना किसान भाई भी को उत्पादन भी है वह भरपूर मात्रा में लेवे लाग रहे हैं। और देखो गर्मिया के महीने में ही देखो तरबूज है वह काफी मन सुकून है वह देवे। तो निश्चित रूप से देखो प्रकृति अपन मौसम के अनुसार जो खान पीने के लिए दे रही है भी को आप आनंद है, बड़ो चाव से लेवा
1: भाई, चाव से लेवा। एक बात और ने कि मौसम के हिसाब से फल है जो मत ही पक जाए। अब जहाँ तरबूज है, खरबूजा है, नींबू है, तो वह अपन भरपूर मात्रा मिले। अब अपन किएगा अपना आहार में बन सम्मिलित करना बहुत जरूरी। एक सागे सागे देखो पानी की व्यवस्था बनाई रखा, खेत जावा तो आलस नहीं करा, 2 लीटर वाली पानी की बोतल आपकी सागे हुआ गाबो सीढ़ी कपड़ो सीढ़ी, तो ठंडी बोतल खेत का मायने जटे भी आप काम कर रहे, किसानी को काम कर रहे, तो बटे जंटी की छया है जो बड़ सारो मटको रखनो, और जद भी 30 लागे तो 30 ने मारो मत प्यास लागते पानी।
0: बिल्कुल देखो अब क्या कर रहे हैं, जेठ दोपहरी देख ने, जेठ दोपहरी देख ने छुपकी शीतल छाव, लुआरियत लाई में झुलसे आखो गांव। तो देखो झुलसने की जब आप बात करा तो आपा भी है जिका बचेड़ा को नहीं, बातचीत तो आप और भी करना चाह रहे थे राजू भाई, पर बखत है वो अपन आगे जाने की इजाजत है वो नहीं दे रहे। तो आज को कार्यक्रम खेती और गृहस्थी बस अठाई तक, अयुब खान गौड़,
1: राजकुमार ने सीख
0: दो करा आपसे राम राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज चुके हैं। पेशे खिदमत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुदेश भोसले और दलेर मेहंदी के।

एफएम चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कुणाल गांजे वाला होंगे आपके रेडियो सेट पर फिल्म कृष के लिए।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोता इस वक्त FM चूरू से सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता।

0: कसम तेरी कसम। श्रोताओं, इस फिल्म में सुनते हैं सोनू निगम को।
1: रंजो गम के मेले
0: हैं। श्रोताओं, इस गीत के लिए संगीत है निखिल विनय का और शब्द रचना है सबा अफगानी और अब्दुल रब की।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: FM चूरू से श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। बेवफा सनम। श्रोताओं, इस फिल्म में आप सुनेंगे उदित नारायण की आवाज़।

मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले समाचार संध्या। न्यूज 8:09 का प्रसारण होगा रात्रि 9 बजे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ

0: फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रो ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी

0: डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं।

0: खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
1: स्पेशली द कंट्रीज लाइक आर्स।
2: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचीरस तालुका में महासवाड़ पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया। और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
4: गुड इवनिंग। This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron hold delegation level talks at historic Villa Carolos at Nice. Focus on expanding special global strategic partnership between two countries across key sectors. Both leaders jointly inaugurate Bharat Innovates event at Palada Expositions. India's space economy poised to grow from $9 billion to $45 billion in the next decade. In Maharashtra, 8 pilgrims die as vehicle falls in well in Solapur. All 14 Indian crew members rescued from a vessel off Oman coast after engine failure. And in cricket, India set a target of 171 runs for Pakistan in the group stage match of ICC Women's T20 World Cup in Birmingham. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron held delegation-level talks at historic Villa Carolos at Nice in France. The discussions between two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries across key sectors including defense, technology and trade. Prime Minister Modi was accompanied by the National Security Advisor Ajit Doval, External Affairs Minister S. Jaishankar, Foreign Secretary Vikram Misri and senior officials. President Macron was accompanied by French Minister for Europe and Foreign Affairs, Jean-Noël Barrot, and other senior officials.

श्रोता भी सुन रही थी सीमा मिश्रा को। इसी के साथ हमारा आज का राजस्थानी लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोता अभी FM चुरू से सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म अभिमान में। आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम है मेरा नाम जोकर।

एफएम चूरू से फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश। आवाज है लता मंगेशकर और मुकेश की। श्रोताओं, संतोष आनंद के शब्दों को आप सुनेंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों के साथ ही आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: सत्रहवीं राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के आज रात के प्रसारण में हम आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री जे एस श्रीराम का गायन। आज रात के इस प्रसारण में श्री जे एस श्रीराम के साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर वी एस पी गायत्री सिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: दिस इज आकाशवाणी। In tonight's broadcast of Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeeta Sabha, we bring you a vocal recital by Sri J.S. Sriram. He is accompanied on violin by V.S.P. Gayatri Sivani, on mridangam by Vidwan Peravali Jayabhaskar, and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: श्री जे एस श्रीराम एक प्रतिभाशाली कर्नाटक शास्त्रीय गायक हैं और आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। वे अपने आकर्षक और अभिव्यंजक शैली के लिए सुप्रसिद्ध हैं। ये प्रख्यात संगीतज्ञों के परिवार में पैदा हुए हैं। इन्होंने अपनी माँ श्रीमती जे चिद्रूपा लक्ष्मी जी की प्रेरणा से संगीत का अभ्यास प्रारंभ किया और बाद में विद्वान द्वारम सत्यनारायण राव और विद्वान अकेला मल्लिकार्जुन शर्मा जी के मार्गदर्शन में गायन में आगे बढ़े। श्री सूर्वारम प्रताप रेड्डी तेलुगु विश्वविद्यालय में एमए संगीत में स्वर्ण पदक हासिल करके अभी वही संगीत में शोध कार्य कर रहे हैं। ये कर्नाटक संगीत के साथ साथ नामसन कीर्तन में भी माहिर हैं और देश विदेश में मुख्य त्योहारों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक समर्पित अध्यापक बनकर उन्होंने कई विद्यार्थियों को संगीत प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षित किया है और आप ललित कलाओं को बढ़ावा देने वाली संप्रदाय जैसी लाभ निरपेक्ष संस्था में भी स्वच्छंद सेवारत हैं।
1: श्री जे एस श्रीराम इज अ वर्सटाइल कर्नाटिक वोकलिस्ट एंड एन ए ग्रेड आर्टिस्ट विद ऑल इंडिया रेडियो। He is known for his expressive and dynamic style of singing. He hails from a distinguished musical family. Sriram was initiated into music by his mother, Srimati J. Chidrupa Lakshmi. Later, trained under Vidwan Dwaram Satyanarayan Rao and Laya exponent

0: अब आप सुनेंगे श्याम शास्त्री की एक कृति जो राग पूर्वी कल्याणी तथा विलोम चापू ताल में निबद्ध है।
1: You will now listen to a composition of Shyama Shastri in the rag Purvi Kalyani set to Viloma Chapu Taal.

0: श्री जी श्री राम अपने गायन का समापन त्यागराज की एक कृति से कर रहे हैं जो राग शंकरावर्णम तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री जय श्री राम कंक्लूड्स हिज वोकल रिसाइटल विद अ कंपोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग शंकराभरणम सेट टू आदिताल।

0: ये था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जयभास्कर और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: That was तन्यावर्तनम played on मृदंगम by विद्वान पीरवली जयभास्कर and on घटम by श्री यम चंद्रकांत।
0: इसी के साथ आज की अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में

0: जीएस श्री राम का गायन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे वायलिन पर वीएसवी गायत्री शिवानी, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: विद दैट वी कंक्लूड द वोकल रिसाइटल बाई श्री जे श्रीराम इन द ब्रॉडकास्ट ऑफ रवि वास्त्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज अकंपनीड ऑन वायलिन बाई वी एस पी गायत्री शिवानी, ऑन मृदंगम बाई विद्वान पेरवली जय भास्कर and on ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeeta Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.

FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। श्रोता आप सुन सकेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार होंगे रात्रि 11:05 पर। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज

0: पहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचेरस तालुका में महसवाड पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the Inter-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation.